एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का

0: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले दो दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इस कार्यक्रम में लीजिए, पहले सुनिए देश वंदना समूह स्वर में।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए अब सुनिए मीराबाई का भजन। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सुधा मल्होत्रा की आवाज में गाया हुआ ये भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए खेती की बात। विषय है राहेर की खेती। वाचन स्वर रूपेश कंवर का।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रूपेश कुमार कंवर। खरीफ सीजन आते वैसे हमारे खेती सने के बूता काम भदरा थे। जो किसान भाई मन कर पल्लो के साधन है, सिंचाई के साधन हवा, ओमन महीना दिन पहली 15 दिन पहली के जौन खरीफ सीजन के हमारे जो बूता काम हवा, रोपाई बोवाई एक बूता काम अगवा के करत हवा। जैसे जैसे पानी गिरत हवा वैसे वैसे हमारे किसान भाई मन अपन अपन खेती से बूता काम लगे हवा। खरीफ सीजन में बात करी संगवारी हो तो हमारे किसान भाई मन धान पान के संगे संग ओन्हारी फसल घलो अपना थन और धान पान के संगे संग हमन तैयारी करत हवन ओन्हारी फसल के। आज हमन देखबो तो कतेक किसान भाई मन ऐसे हवे जेमन ओन्हारी फसल कति अभी ले खेती की तैयारी में लग चुके हैं। अब ओन्हारी की बात करी संगवारी तो अपन जानते हवा हमन बात करतन दलहनी और तिलहनी के। अगर अभी के बेरा हमन राहर के खेती करतन तो कहीं न कहीं हमन अवैया बेरा में राहर के खेती के माध्यम से दोहरा से दोहरा आमदनी हमन कमा सकतन। अब आए दिन अपन ला हमारे रेडियो के माध्यम से यही कथन जितके ज़्यादा होए हमन मोटा अनाज के अगर हमन खेती करत हन तो हमन ज़्यादा से ज़्यादा हमन पैदावार पा सकत हन। काबर कि अपन जानते हवा कि अगर हम राहर की खेती करत हन तो ज़्यादा हमला मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़े न पल्लो सिंचाई की आवश्यकता पड़े। तो आवा आज बात करी अपन कर खेती की बात में राहर के खेती के। राहर की खेती के तैयारी की बात करी संगवारी हो, सबसे पहले हमें ऐसा भूया के चुनाव करना चाहिए जेमा पानी की निकासी और सिंचाई आसानी रूप से हो सके। जैसे माटी की बात करी डुमर माटी है, बालुई माटी है, सबसे उपयुक्त रहते हैं। अभी बेरा जोन हवा जुलाई के महीना अभी हमन अच्छा से 2-3 बार अवार धुन करके जुताई कर लेना चाहिए। संगे संग कुपर हवा या कल्टीवेटर है, रोटोवेटर है, ओकर माध्यम से जो माटी हवा है माटी हमला भुरभुरा कर देना चाहिए। खाद की बात करी संगवारी हूँ, बुआई के 1 महीना पहले हमला 1 टन गोबर खाद प्रति एकड़ पाछू हमला छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक खाद की बात करी किसान भाई हो, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ पाछू हमला आवश्यकता पड़ते। बुआई के बेरा और तरीका की बात करी किसान भाई हो तो अभी के जो बेरा हवा है जुलाई के महीना ये सबसे उपयुक्त हवा। अभी अगर हमन राहर खेती के तैयारी करतन तो कहीं कहीं हमन अवैया बेरा में ज्यादा से ज्यादा हमन पैदावार पा सकतन। बीज दर की बात करी संगवारी हो तो 1 एकड़ के पाछू हमला 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के पाछू हमला आवश्यकता पड़ते। साधारण किस्म में जैसे बात करी लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधा की पौधा की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, संकर किस्म अगर अपन बोआत हवा तो लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर, पौधा की पौधा दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर। गहराई की बात करी किसान भाइयों 4 से 5 सेंटीमीटर हमला रखना चाहिए। कोनो भी बीजा लावा थन बाजार हाट ले तो सबसे पहले हमला ओला उपचारित कर

0: के ही बुवाई करना चाहिए। उपचारित कथन का फायदा ये होते कि वह कोनो प्रकार के रोग व्याधि नहीं आए और संगे संग जड़ ला गांठ बने में बड़का सहायता घलो मिलते। एक बार अपन ला राइजोबियम कल्चर टाइकोडर्मा ले उपचारित करना चाहिए। सिंचाई घानी हमला विशेष करके चेत करना चाहिए कि ओमा ज्यादा पानी ठहराव झन हुए। बुआई करथन संगवारी हो तो बुआई ले हमला करीबन 20 से 25 दिन बाद पहली निंदाई हमला करना चाहिए। और निंदाई करत हमला ये बात के सावधानी रखना चाहिए कि राहर के जो पौधा हवा उला कोनो प्रकार से नुकसान झन हुए। जितके ज्यादा हुए हमन ओमा बन दुबी हवा ओला हमन साफ सफाई करी तबे जो राहर के पौधा हवा ओकर बढ़त वार होही। तो राहर के संगे संग अपन मिश्रित खेती घलो कर सका था जिससे मूंग है उड़द है सोयाबीन एकर खेती अपन करा था तो कहीं न कहीं हमन राहर के खेती में दोहरा से दोहरा हमन आमदनी पा सकतन। तो संगवारी हो अभी के बेरा हवा राहर के खेती की तो अगर हमन ए बेरा में राहर की खेती करतन तो कहीं न कहीं अवैया बेरा में हमन राहर के खेती के माध्यम से दोहरा आमदनी हमन कमा सकन। सरकार भी चाहता है जितके ज्यादा हो हमन मोटा अनाज ला प्राथमिकता दी मोटा अनाज के खेती करी। अगर हमन मोटा अनाज के खेती करतन राहर के खेती करतन दलहनी तिलहनी की खेती करतन तो हमन ला पानी के लागत भी कमाते मेहनत भी कमाते और पैदावार घलो ज्यादा होते। तो आओ संगवारी हो अभी बेरा में हमन करतन राहर के खेती।
1: राहर की खेती इस विषय पर खेती की बात अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। 6:35 होने वाले हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य स्वर है भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह के। सतीश भाटिया का संगीत संयोजन है।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही देख है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हट उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। स्वर दिया था भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह ने। सतीश भाटिया का संगीत संयोजन था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए फ्लैगशिप कार्यक्रम नव विहान। श्रोताओं, आज कार्यक्रम नव विहान में चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना।

श्रोताओं, एक आम इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है उसका खुद का एक मकान, और इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना की शुरुआत सन 2015 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य हमारे देश में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को अपना खुद का एक घर देना, जिनका पहले से अपना कोई भी मकान नहीं है।

श्रोताओं, इस योजना के तहत गांव में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को सरकार की तरफ से 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जब वे आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो इसके बाद पैसे उनके बैंक खाते से उनके पैसे बैंक खाते में सीधे आ जाते हैं। साथ ही साथ शौचालय बनाने के लिए सरकार की तरफ से अलग से पैसे मिलते हैं। शहर में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को भी अपना घर खरीदने या बनवाने के लिए होम लोन की सुविधा दी जाती है। लोन लेने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है, जिसके कारण लोन की ईएमआई यानी कि मासिक किश्त की राशि कम हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 95 दिनों का रोजगार भी मिलता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, एकल महिला और दिव्यांग जनों को इस योजना

में प्राथमिकता दी जाती है। श्रोताओं, महिला सशक्तिकरण के तहत इस योजना में मालिकाना हक परिवार के किसी महिला के नाम पर या संयुक्त नाम पर ही होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवास निर्माण हुए हैं। 2025 और 26 के दौरान मात्र 10 महीने में 5 लाख से अधिक पक्के मकानों का निर्माण हुआ है। आवास निर्माण की इस गति से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। इस योजना के माध्यम से हजारों महिलाएं लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भर हुई हैं, साथ ही साथ समर्पण करने वाले नक्सलियों और ग्रामीणों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। श्रोताओं, इस योजना के तहत आवेदन करते समय आपके पास अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज जिस पर घर बनवाना है, वेतन पर्ची, आपके पास कोई पक्का मकान नहीं है इस बात का शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। श्रोताओं, और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी सेवा केंद्र, ब्लॉक ऑफिस या इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी बातें अच्छी तरह से जान सकते हैं। ये तो थी श्रोताओं जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना की।

प्रधानमंत्री आवास योजना, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे फ्लैगशिप कार्यक्रम नव विहान। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। 7:05 पर आप सुनते हैं प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह गांधी चर्चा। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे आज सुबह 7:20 पर। आज विषय होगा खादी प्रेम। 7:30 पर सुनिएगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से। इनसे मिलिए, इस कार्यक्रम को हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज 8:30 पर। इस कार्यक्रम में आज कथा लेखन के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित घनश्याम साहू से भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। भेंटकर्ता होंगे रमाशंकर। 9:55 पर और 11:55 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। गूंजे स्वर गांव के, इस कार्यक्रम के तहत आज आप सुनेंगे पंडवानी। प्रसंग होगा पांडव का धृतराष्ट्र के पास जाना। कलाकार होंगी विदुषी तीजनबाई और साथी। बैगा कर्मा में सुनेंगे चेपटी ताल, बिसाहू राम बैगा, आतुराम सुख सिंह बैगा और साथी से। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनते हैं दिन के 11:00। श्रोताओं, अब एक नज़र शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा शाम 5:05 पर। 5:35 पर सुनिएगा युवा जगत। इसमें आज की बात के तहत चर्चा का विषय होगा नेल्सन मंडेला एक बहुमुखी व्यक्तित्व, और साथ ही सुनिएगा युवा पसंद। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने हम आपके लिए लेकर आएंगे 6:20 पर, और इसका शेष भाग सुनिएगा शाम 7:00। ग्राम सभा में बेरा की गोट के तहत विषय होगा होम हर्बल गार्डन

इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 7:20 पर। आज 7:30 पर फोन इन कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार साहू कृषि महाविद्यालय कोरबा श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। विषय होगा खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। 8 बजे का समय होगा सुगम संगीत का। आज आप सुनेंगे मिताली सिंह को। कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचारों के लिए अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजीत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातक स्तरीय चिकित्सा दंत चिकित्सा आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11 लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाह सिलीगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि-एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारतदलं चतुर्स्तोभैः पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रूपये से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाखाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया।

इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले दो दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देशभर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: संस्कृत और हिंदी में समाचार अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह। स्वागत अभिनंदन आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम आज सुबह में। स्वीकार कीजिएगा मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, बदलते वक्त के साथ न केवल मौसम में बदलाव आते हैं बल्कि हमारी जिम्मेदारियां भी बदलती हैं। इन दिनों तापमान में लगातार वृद्धि हो रही थी, गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी और आज हमारे बिलासपुर में भरपूर पानी बरस रहा है। पहले गर्मी का प्रकोप केवल मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित रहता था, अब धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी पड़ने लगी है। श्रोताओं, जो स्थान कभी हरियाली और ठंडक के लिए जाने जाते थे वहाँ भी तापमान में वृद्धि हो रही है। ये बदलाव इंसानों के साथ साथ वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं, पक्षियों और पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। कुछ प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं तो कुछ विलुप्त होने की कगार पर। प्राकृतिक जल स्रोत भी सूखने लगे हैं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। श्रोताओं, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब समय है कि हम कुछ पहल करें। कुछ योगदान हम घर से भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में पर्याप्त जगह है तो पेड़ लगाएं। पेड़ 10 से 20 प्रतिशत तक ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। यदि आपके घर में जगह ना हो तो गमले में छोटे छोटे पौधे लगाएं। ऊर्जा और जल संरक्षण के लिए वो सभी काम करें जो ज़रूरी है। प्लास्टिक पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं। कपड़े की थैली, मिट्टी, कांच या स्टील के बर्तन या फिर बांस से बने सामानों का उपयोग करें। श्रोताओं, रसोई से निकलने वाले कचरे से खाद तैयार करें और उसका उपयोग पौधों में करें, इससे कचरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर हर व्यक्ति साल में एक या दो पेड़ भी लगाए तो उसका बहुत बड़ा सकारात्मक असर आने वाले समय में दिखेगा।

श्रोताओं, आपके हाथों से लगाया गया एक छोटा सा पौधा कल बड़ा होकर राह चलते लोगों को ठंडी छाया देगा, नन्हे नन्हे पक्षियों का घर बसेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा देगा। और चलिए कार्यक्रम आज सुबह को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये छोटा और प्यारा सा गीत।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है संभावना।

0: सुविधाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था।
2: नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर पांडे। लीजिए प्रस्तुत है प्रतिदिन की भांति आपका अपना रोचक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। आपका स्वागत है। शहर बिलासपुर, गांव बिलासपुर या जिला बिलासपुर, सर्वत्र यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, इसी प्रकार हमेशा सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हमेशा सड़कों में संयम रखें, गति में नियंत्रण रखें और यातायात के नियमों के अनुसार चलें। क्योंकि सड़क में आप जिस भी वाहन के साथ हैं, आपकी थोड़ी भी चूक वाहन चालक के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए आफत बन सकती है। मित्रों, ये सच है कि हर स्तर पर हर संभव प्रयास है कि सड़क दुर्घटनाएं ना हो, किंतु यह भी सच है कि अनेकों प्रयास के बाद भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मारे भी जा रहे हैं। भारत में औसत प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बढ़ती मृत्यु संख्या के उच्च स्तरीय विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति जिसका प्रथम 1 घंटा स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, उसे तत्काल चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पाती। लोग मदद करने से डरते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर न्यायालय या थाने के उन्हें चक्कर काटने पड़ेंगे, परेशान होना पड़ेगा। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए हमारे देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक विशेष आदेश जारी किया गया है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल ले जाने में किसी भी प्रकार से मदद करने वाले व्यक्ति को थाना या न्यायालय नहीं जाना होगा, यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्भर करेगी। ऐसे मददगार व्यक्ति को गुड सेमिटन या नेक इंसान कहा गया है। ऐसे गुड सेमिटन व्यक्ति को शासन स्तर पर सम्मानित एवं पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है। इसलिए प्रयास हो कि दुर्घटना ना हो, किन्हीं कारणों से सड़क दुर्घटना हो भी गई तो घायल की निसंकोच मदद करें। हाल ही में माननीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने ऐसे मददगारों को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: अभी आप सुन रहे थे बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था। श्रोताओं, हम कभी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहां न्याय न हो। न्याय यानी कि जस्टिस, ये सिर्फ कोर्ट कचहरी की बात नहीं है, ये हमारे हक की बात है, बराबरी की बात है और एक सुरक्षित कल की बात है। श्रोता मित्रों, अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी अपराध का साथ देने जैसा है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज 17 जुलाई के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का जन्म हुआ था। ये अदालत एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। इस अदालत का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग शहर में है। इस अदालत का काम दुनिया के बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ना और आम इंसान को उसका हक दिलाना है। श्रोताओं, ताकत चाहे कितनी भी बड़ी हो, इंसाफ से बड़ी नहीं हो सकती। आज के दिन आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपने आसपास किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे और अन्याय होने वाले के साथ खड़े रहकर उसका भरपूर साथ देंगे।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आज सुबह समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज सुबह प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है गांधी चर्चा। आज का विषय है खादी प्रेम।

गांधी चर्चा सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज की इस गांधी चर्चा में 6 अगस्त 1925 को यंग इंडिया में छपे उत्कट खादी प्रेम का उल्लेख है। खादी में मेरी आस्था है, इसके हेतु को मैं सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट देखता हूँ। ये जीवन में सादगी भरती है और इस तरह उसे शुद्ध बनाती है। ये सेवा सूत्र से हमें गरीबों के साथ जोड़ती है। गरीबी से बचने का ये एकमात्र उपाय है, उस गरीबी से जो इस राष्ट्र के शरीर और आत्मा को घुन की तरह खाती जा रही है। आत्मा को इसलिए कि जहां तक करोड़ों अशिक्षित लोगों का संबंध है, स्वस्थ शरीर के बिना आत्मा के विकास का प्रश्न ही नहीं उठता। जिन्होंने भोग को साध लिया हो और जो उनकी साधना में लगे हुए हो, वे भले ही शरीर के बिना आत्मा की बात करें, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए शरीर के बिना आत्मा की बात करना एक विडंबना मात्र है। और अंत में चरखे का एक बहुत बड़ा गुण यह है कि आज यूरोप जिन हिंसात्मक सामाजिक विस्फोटों के कारण रक्तपात और उन्मादपूर्ण कृत्यों की लीला स्थली बना हुआ है, उनसे बचने का भी एकमात्र उपाय यही है। चरखा विशिष्ट वर्गों और जनसाधारण को जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है, और जब तक ये साधन भारत को स्वीकार है, तब तक बोल्शेविज्म और ऐसे ही अन्य हिंसात्मक विस्फोट इस देश में असंभव है। इन बातों को देखते हुए मुझे सहज ही मानना पड़ता है कि चरखा एक अत्यंत आवश्यक चीज है, लेकिन कठिनाई सिर्फ एक है। क्या यह चल सकता है? क्या यह सफल हो सकता है? क्या हम एक बार फिर चरखे को घर घर में उसका पुराना पवित्र स्थान दिला सकते हैं? क्या बहुत देर नहीं हो चुकी? आपके जेल जाने से पहले मैं ऐसे प्रश्न कदापि नहीं करता, तब आशा रखने की गुंजाइश थी, लेकिन अब स्थिति उतनी आशाजनक नहीं रह गई है। बंटेड रसेल जैसे

व्यक्ति का कहना है कि उद्योगवाद प्रकृति की एक शक्ति के समान है और हम चाहें या न चाहें अंततः भारत को भी इस युग प्रवाह में बहना होगा। हाँ, ऐसे लोग ये अवश्य कहते हैं कि हमें उद्योगवाद का कुछ अपना समाधान ढूंढना चाहिए। उनकी बात में सच्चाई है। उद्योगवाद आज सारे संसार को प्लावित कर रहा है और इस प्लावन के बाद लोग अपना कुछ न कुछ समाधान ढूंढ रहे हैं। यूरोप को ही लीजिए। मैं नहीं मानता कि यूरोप ध्वस्त हो जाएगा। मानव स्वभाव में मेरी पूरी आस्था है और देर सवेर वो उसका समाधान ढूंढ ही लेगा। तब क्या भारत चाहकर भी सारे संसार से अपने को अलग रख सकता है? क्या वो प्रयत्न करके भी उद्योगवाद की चपेट में आने से बच सकता है? ये खादी प्रेमी भाई न चाहते हुए भी लाचार होकर जिन तर्क जाल में फंस गए हैं, ये शैतान की पुरानी तरकीब है। जब हम किसी सत्कार में प्रवृत्त होते हैं तो वो आधे रास्ते तक हमारे साथ चलता है और फिर अचानक युक्तिपूर्वक हमें सुझाता है कि अब इसके आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं, और फिर हमारा ध्यान अधिक आगे बढ़ने की झूठी और ऊपरी असंभाव्यता को उसकी ओर दिलाता है। वो सद्गुणों की प्रशंसा करता है किंतु दूसरे ही क्षण ये भी कह देता है कि उन्हें प्राप्त करना मनुष्य के वश की बात नहीं है। इन भाई के सामने जो कठिनाई आई है वो सभी सुधारों को सामने कदम कदम पर आती है। क्या समाज असत्य और कपट से भरा हुआ नहीं है? किंतु तब भी जो लोग मानते हैं कि अंततः सत्य की विजय होगी ही, वे सफलता की अखंड आशा लिए हुए सत्य के मार्ग पर आरूढ़ ही रहते हैं। सुधारक समय के प्रवाह को अपने खिलाफ सफल नहीं होने देता, क्योंकि ये उस पुरातन शत्रु का डटकर सामना करता है। निसंदेह उद्योगवाद प्रकृति की एक शक्ति के समान प्रबल है, किंतु मनुष्य भी तो प्रकृति और प्रकृति की शक्तियों पर विजय पाने की शक्ति से संपन्न है। उसकी गरिमा इसी बात में निहित है कि भारी से भारी कठिनाइयों के सामने भी ये निश्चय और संकल्प से काम ले। हमारा दैनिक जीवन इसी तरह के संघर्ष और विजय की कहानी है। एक किसान तो इस बात को और भी अच्छी तरह जानता है, और उद्योगवाद विशाल जन समुदाय पर मुट्ठी भर लोगों का प्रभुत्व तो नहीं तो और क्या है? इसमें न तो कोई आकर्षण है और न ही कोई ऐसी चीज है जिसके कारण इसे असंभावी माना जाए। अगर बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों की चिकनी चुपड़ी और बहकाने वाली बातों पर सिर्फ न कहने का इरादा कर ले तो अल्पसंख्यकों में कोई दुष्टता करने की शक्ति रह ही न जाए। मानव स्वभाव में आस्था रखना अच्छी बात है। मैं इसलिए जीवित हूं कि मुझमें वो आस्था है, लेकिन उस आस्था के कारण मैं इस ऐतिहासिक तथ्य की ओर से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता कि यद्यपि अंत में सब कुछ ठीक ठीक ही होता है, किंतु अतीत में व्यक्तियों का नाश तो हुआ ही है और राष्ट्र नाम से पुकारे जाने वाले जन समाज भी विनाश को प्राप्त हुए हैं। रोम, यूनान, बेबीलोन, मिस्र और अन्य अनेक राष्ट्र इस बात के ज्वलंत प्रमाण है कि अपने कुकृत्यों के कारण अतीत में राष्ट्रों का नाश हुआ है। इस हालत में आशा यही की जा सकती है कि अपने तीक्ष्ण और वैज्ञानिक बुद्धि के बल पर यूरोप इस साफ सीधी बात को समझ सकेगा और अपने कदम वापस ले लेगा और नैतिक पतन के गर्त में ले जाने वाले इस उद्योगवाद के जाल से निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसका मतलब पुनः उस पुरानी नितांत सादगी की ओर लौट जाना ही होगा, लेकिन समाज का ऐसा पुनर्गठन तो अवश्य करना होगा जिसके ग्राम्य जीवन को प्रमुखता प्राप्त होगी और पार्श्विक और भौतिक शक्ति आत्मिक शक्ति के अधीन रहेगी। और अंत में हमें गलत उदाहरणों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। यूरोपीय लेखकों की एक कठिनाई ये है कि उनके पास अनुभव और सही जानकारी नहीं है। यूरोप के उदाहरण भारत की परिस्थिति में चारों कोने चुस्त नहीं बैठ सकते, क्योंकि यूरोप में और इसमें रूस भी शामिल है, भारत की जैसी परिस्थिति नहीं है। इसलिए यदि यूरोपीय लेखक यूरोप के उदाहरणों के बल पर कोई सामान्य निष्कर्ष निकाल ले तो एक खास सीमा के बाद उनसे हमें मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। अतः कोई जरूरी नहीं है कि जो बात यूरोप पर लागू हो वो भारत पर भी ठीक ही बैठे। हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग व्यक्तित्व होता है। भारत की भी अपनी अलग विशेषताएं हैं, अपना अलग व्यक्तित्व है, और अगर हमें उसकी अनेक व्याधियों का सही उपचार ढूंढना है तो हमें उसकी विलक्षण विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही कोई उपचार बताना होगा। मेरा दावा है कि यूरोप में
उसके अर्थ

में भारत का उद्योगीकरण करने की कोशिश करना एक असंभव काम करने की कोशिश करना है। भारत ने बहुत से तूफान झेले हैं, ये सच है कि ऐसा हर झंझावात उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया है, लेकिन तब भी उसने सर्वथा अतृतीयत रहकर अपनी विशेषता को कायम रखा है। भारत दुनिया के उन चंद राष्ट्रों में से है जो स्वयं अक्षत रहे हैं और जिन्होंने अनेक सभ्यताओं का उत्थान और पतन देखा है। भारत विश्व के उन गिने चुने राष्ट्रों में से है जिन्होंने अपनी कतिपय प्राचीन संस्थाओं को भी सुरक्षित रखा है। यद्यपि उन पर अंधविश्वास और प्रमाद की काई जम गई है, लेकिन वो अब तक इस प्रमाद और अंधविश्वास से अपने आप को मुक्त करने की अपनी सहज क्षमता का परिचय देता आया है। उसकी करोड़ों संतानों के सामने जो भारी आर्थिक समस्या उपस्थित है उसे हल करने की उसमें क्षमता में जितना ज्वलंत विश्वास मुझे आज और विशेषकर बंगाल की स्थिति का अध्ययन करके लौटने के बाद से है उतना पहले कभी नहीं रहा। गांधी जी के इस विचार के बाद आइए अब सुनते हैं उनका एक प्रिय भजन।

0: भजन के साथ ही आज की गांधी चर्चा यहीं संपन्न हुई। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, विषय था खादी प्रेम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम छलिया। कमर जलालाबादी के शब्द पर संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। पतिता इस फिल्म का गाना अब आप तक पहुंच रहा है। स्वर है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के। हसरत जयपुरी के शब्द पर धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

भाई भाई इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के शब्द, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों के झरोखे से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। शैलेंद्र के लिखे गाने पर स्वर दिया है किशोर कुमार ने, फिल्म का नाम ज्वेल थीफ और संगीतकार हैं SD बर्मन। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोखे से, बम्बई का बाबू। लीजिए सुनिए इस फिल्म में आशा भोसले और मोहम्मद रफी को, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, एसडी बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे बरसात फिल्म का ये तराना। शैलेंद्र के शब्द शंकर जयकिशन का संगीत था और इसी के साथ कार्यक्रम यादों के झरोखे से यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
2: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री

0: मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा।

0: होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल

0: मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कन्नडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से कन्नडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है 2 नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत

0: examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: समाचार अभी रिले किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8:30 हुए हैं, इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम को अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें आज सुनिए भेंट वार्ता। कथा लेखन के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से सम्मानित घनश्याम साहू से भेंट करता है रमाशंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, संगीत और नाट्य, इसका अलग ही स्वरूप होता है। नाटक किसी भी व्यक्तित्व का चित्रण करने का बहुत ही उत्तम तरीका होता है। नाटकों का इतिहास काफी पुराना है। नाटक, थिएटर, ये जो है हमारे समाज का आईना होते हैं और इनसे ही हम प्रदर्शित करते हैं हमारी उन समाज की रीतियों, कुरीतियों, अच्छाइयों, बुराइयों को। और श्रोताओं, ऐसे ही एक युवा आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है घनश्याम साहू, जिन्होंने नाट्य लेखन के क्षेत्र में 2025 का बिस्मिल्ला खां राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त किया है। तो घनश्याम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, आभार।
0: तो घनश्याम जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि नाट्य के क्षेत्र में आप कब से जुड़े हैं और ये जो नाट्य लेखन, जो एक काफी कठिन काम होता है, और यहां तक पहुंचने में आपको कितने समय लगे?
1: सर, मेरे थिएटर की प्रारंभिक शिक्षा तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से हुई। थिएटर की उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त निर्देशक डॉक्टर योगेन चौबे जी का सानिध्य मिला। मैं खैरागढ़ विश्वविद्यालय सर 2012 में जब गया तो मैं थिएटर के लिए नहीं गया था, मैं गायन सीखने के लिए गया था। क्योंकि मैं पहले गीत लिखता था, गुनगुनाने की कोशिश करता था, तो एक हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गायक है नीलकंठ वैष्णव भैया, जिनके आप गाना सुने होंगे, जोल टू राम सतरंगी रे, उन्होंने मेरे गाना को सुने तो बोले कि यार तुम इधर उधर मत भटको, अभी सीधा खैरागढ़ चले जाओ, खैरागढ़ में पढ़ो, वहीं से बढ़िया पढ़ाई करो, वहां से निकलो, फिर अच्छा काम करो। तो मैं सीधा निकल गया खैरागढ़। मैं घर से भाग के गया सर खैरागढ़ 2012 में गायन सीखने के लिए।
0: जी जी।
1: लेकिन वहां जाकर पता चला कि गायन में सिर्फ गायन सीखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत स्टोरी भी लिखता था।
0: जी।
1: तो पता किया थिएटर विभाग में जाकर, तो थिएटर में जाकर पता किया तो थिएटर में चौबे गुरुदेव मिले, जो मेरे गुरुदेव हैं डॉक्टर योगेन्द्र चौबे। तो गुरुदेव ने बताया कि थिएटर में सब सब्जेक्टों को पढ़ना पड़ेगा, सब चीज सीखने को मिलेगा, आपको गायन भी सीखने को मिलेगा, डांस भी सीखने को मिलेगा। तो मैं सोचा कि क्यों ना थिएटर ही ले लूं, तो फिर मैं थिएटर लिया सर 2012 में। मैं फिर थिएटर शुरुआत किया और आप लोग के आशीर्वाद से, प्यार से ग्रेजुएशन मास्टर दोनों का गोल्ड मेडलिस्ट हूं और अभी निरंतर थिएटर में ही काम कर रहा हूं, थिएटर और फिल्म में। नाट्य लेखन सबसे पहले मैं शुरुआत किया नाटक अघनिया से, छत्तीसगढ़ की रियल स्टोरी जो देवार परंपरा है उन पे बेस्ड है नाटक अघनिया। फिर राजदू पट्टा किया, चैती किया, पहाटिया किया। पहाटिया जिसका निर्देशन डॉक्टर योगेन्द्र चौबे जी करते हैं और इसका लगभग देश के हर कोने में लगभग 100 मंचन हो चुका है। अभी भारंगम रायपुर में एक नाटक हुआ था बिरसा, तो वो नाटक में ही लिखा था बिरसा नाटक।
0: तो घनश्याम जी, हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर संगीत के लिए राजकुमार इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय है, जो हमारे 36

0: करके जो ऐसे लोग हैं जिनके इस क्षेत्र में रुचि होती है, संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, तो कितना आवश्यक है हमारा ये राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय?
1: देखिए, आर्ट की फील्ड में अगर आपको कुछ सीखना है या कुछ करना है तो खैरागढ़ सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो ऐसा एक यूनिवर्सिटी है सर जहां आपको गायन भी मिलेंगे, वादन वाले भी मिलेंगे, डांस वाले भी मिलेंगे, तो एक संपूर्ण जो कलाकार का जो क्षेत्र है सर वो आपको खैरागढ़ में मिलेंगे। जैसे मैं नाटक अगर कर रहा हूँ, कोई सा भी नाटक मैं कर रहा हूँ, तो मैं लोक संगीत डिपार्टमेंट से भी कलाकार उठाता हूँ, कथक डिपार्टमेंट से भी कलाकार लेकर आता हूँ, और प्रॉप्स सेट डिजाइन करने के लिए पेंटिंग डिपार्टमेंट्स हो गए, ग्राफिक्स वाले हो गए और डिजाइनिंग वाले हो गए, तो सारे फील्ड मतलब सारे जो डिपार्टमेंट है सर वो मिलकर काम करते हैं और एक नाटक तैयार करते हैं
0: जी।
1: तो वो आपको बाहर से कलाकार खोजने की या फिर लाने की दिक्कत नहीं होती है सर, तो वहां सब कलाकार मिल जाते हैं आपको, लोक संगीत वाले मिल जाएंगे, डांस वाले मिल जाएंगे, पेंटिंग वाले मिल जाएंगे, सारे डिपार्टमेंट वाले मिलकर काम करते हैं
0: जी जी।
1: ये वहाँ की एक सबसे बड़ी खासियत है सर।
0: नाट्य लेखन के क्षेत्र में राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय का क्या योगदान है?
1: देखिए, अब मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो वहीं से हुई है, तो मैं पूरा श्रेय तो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी को ही दूंगा, खास करके हमारे नाट्य विभाग और मेरे गुरुदेव डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी को
0: जी।
1: जब मैं एक ठेठ गांव से आया तो एक कच्चा मिट्टी बनकर आया, आज मुझे जो आकार मिला है वो नाट्य विभाग और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ और मेरे गुरुदेव डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी की देन है
0: जी। जी जी। तो घनश्याम साहू जी, जैसा कि हमने बताया कार्यक्रम में, बिस्मिल्ला खां युवा राष्ट्रीय पुरस्कार आपको 2025 का प्रदान किया गया
1: जी
0: है, 2026 में
1: जी सर।
0: तो इसके बारे में बताएं कि यहाँ तक पहुँचने में आपको कितने समय लगे और इस उपलब्धि तक पहुँचते पहुँचते आपने कितने नाटकों का अभी तक लेखन कर चुके हैं?
1: सर देखिये, नाट्य लेखन और निर्देशन तो मैं अघनिया किया, लाल दुपट्टा किया, चैती किया, पाटिया किया और बिरसा किया सर। राष्ट्र प्रस्तुति में जैसे देखा जाए तो आदि पर्व रायपुर, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के माध्यम से जो किए थे हम लोग 2014 में, फिर चक्रधर समारोह किए 2013 14 15 में, फिर ये चंडीगढ़ नाट्य महोत्सव होता है सर, ये TFT शीतकालीन राष्ट्रीय महोत्सव, फिर समकालीन संस्कृति मोहनामुखी नाट्य महोत्सव कोलकाता में किए, शहीद भवन भोपाल में नाटक पाटिया किए, आदि रंग महोत्सव खैरागढ़ NHD से ही 2019 में किए, अभिनव रंगमंडल का 36वां राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव उज्जैन में किए 2022 में, 22वां भारत रंग महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में किए, फिर उसके बाद हम लोग CCRT न्यू दिल्ली में भी पार्टियां किए सर, बाबा योगेंद्र राष्ट्रीय नाट्य समारोह 2023 किए, बेंगलुरु भारत रंग महोत्सव किए, ये खैरागढ़ भारत रंग महोत्सव किए, अभी रायपुर भारत रंग महोत्सव किए जिसमें बिरसा किए। मैं नाट्य लेखन और निर्देशन के साथ साथ अभिनय भी करता हूँ सर, तो मेरे जिस अभिनय किए हुए जिस नाटक है, बाबा पाखंडी हैं, बड़े भाई साहब, सत्य हरिश्चंद, गधों का मेला, स्मरण मुक्ति बोध, भगवत अजुक्कम, लाल दुपट्टा, अघनिया, बाबागिरी, राम की शक्ति पूजा, बिट्रे, किस्सा कल्पनापुर, उर्ज वक्र राजा तीन डकैत, एक था गधा उर्फ अलादात खां, पाटिया और छिक। नाट्य लेखन के साथ साथ मैं शॉर्ट फिल्म और टेली फिल्म भी करता हूँ, तो जैसे मैं जब 2012 में थिएटर की पढ़ाई शुरुआत की तो मैं थिएटर के साथ साथ फिल्म बनाना भी वहां शुरू किया सर। मेरे सीनियर लोग रहे, सपोर्ट किए कि नहीं, यहां से निकलने के बाद थिएटर के साथ साथ अपन फिल्म में भी काम कर सकते हैं, तो मैं शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया सर। उसमें जैसे द मिस्ट्री सबसे पहली फिल्म बनाई, उसको स्पेशल जूरी अवार्ड मिला, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अब आगे कर सकते हैं इस फील्ड में काम
0: जी, जी।
1: तो द मिस्ट्री के बाद फिर क्वेश्चन किए, इनसेन किए, रॉन्ग नंबर किए, पगली किए, स्लम बॉय किए, झिंगूर, बस्ता, बाई, मोरमाटी, एक छत्तीसगढ़ का पहला OTT प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मैं 10 फिल्म किया, 10 शॉर्ट फिल्म किया, जिसमें बाई, आजाद, भाई साहब चाय, खेला, फुग्गा, सेंडल स्कैंडल, ये सब है।
0: तो घनश्याम साहू जी, जब हम नाटक की बात करते हैं तो नाटक जो है एक जो समाज का दर्पण होता है, जिसमें हम समाज की बुराइयों, कुरीतियों, अच्छाइयों और जो भी समाज में जो अच्छा होता है या बुरा होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं, तो किस तरह देखते हैं आपकी नाटक जो है कितना आवश्यक है? क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे लोगों के पास समय बहुत कम होता है, इस तरह सोशल मीडिया में जो कंटेंट होते हैं वो कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक के होते हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि जहाँ पे आज सोशल मीडिया मनोरंजन के लिए एक दो मिनट के कंटेंट्स के सहारे इतने लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइबर बनाते हैं, वहां नाटक जो कम से कम 15 मिनट से 1 घंटे का भी हो सकता है, तो उसकी क्या अभी स्थान है समाज में?
1: देखिए सर, नाटक तो एक जीवंत है
0: जी,
1: आपको रिटेक की इसमें जरूरत ही नहीं है, जब आप एक बार मंच पर उतर गए जब तक नाटक न खत्म हो तब तक आप जीवंत हैं। हर प्रकार के आपको करेक्टर को जीने का

0: मौका मिलेगा सबसे पहली बात
1: जी।
0: और क्या करते हैं सर, देखिए नाट्य लेखन की आप बात कर रहे हैं तो अभी के लोग पढ़ना लिखना छोड़ दिए हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक नए कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आएंगे
1: जी।
0: नए कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आएंगे तो हम नया काम कैसे करेंगे। तो आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे और जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे
1: जी।
0: तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं, चाहे कोई भी राइटर हो, चाहे वो नाटककार हो, चाहे कहानीकार हो, चाहे व्यंग्यकार हो, चाहे वो शायर हो, हर प्रकार के मैं लोगों को पढ़ता हूँ। और मेरे नाटक में ज्यादातर मैं रियल स्टोरी बेस्ड पर काम करता हूँ। इसका ताजा उदाहरण है, चाहे आप देख लीजिए घनिया, देख लीजिए लाल दुपट्टा, देख लीजिए चैती, देख लीजिए पहाटिया, देख लीजिए पहाटिया तो ये स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित नाटक है जो देश में काफी सराहना मिली हम लोग को। डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी के सानिध्य में हम लोग करते हैं, मेरा लिखा हुआ नाटक है पहाटिया। ये मूल रूप से मिर्जा मसूद जी का रेडियो नाटक है, उसको हम लोग नात रूपांतरण किए हैं, फिर करते हैं। और अभी बिरसा की सत्य घटना पर आधारित ये भारंगम 2025 रायपुर में जो हुआ था ना, वो मेरा लिखा हुआ नाटक है। मैं कोशिश करता हूँ कि नाटक के माध्यम से लोग समझें। अभी क्या करते हैं, रील का माध्यम है, आप एक मिनट दो मिनट में आप दिखाना चाहते हैं, कुछ समय चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। लेकिन नाटक एक ऐसा चीज है सर, जीवंत है, आपको उसमें जीने का मजा आएगा। कितने बड़े बड़े लोग हैं जो आज भी थिएटर करते हैं, क्योंकि अभी रघुवीर यादव जी का भी नाटक था सर, हम लोग देखने आए थे यहाँ बिलासपुर में पियानो। अब उस देखिए उस लेवल पे फिल्म करने के बाद वो थिएटर कर रहे हैं, तो कुछ तो खासियत है थिएटर में। थिएटर जीवन है, उसको जीने मजा आएगा, इसीलिए थिएटर के प्रति आज भी रुचि है सर।
1: तो नाटक की अपनी अलग शैली होती है, नाटक का अपना अलग महत्व होता है,
0: अलग महत्व सर, अलग वातावरण है
1: जी,
0: अलग भाषा है
1: जी,
0: अलग देश काल है
1: जी,
0: आपको अच्छा लगेगा सर नाटक
1: जी जी। तो घनश्याम जी, कार्यक्रम में हम और आगे बातें करेंगे, आपसे जानेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार जो आपको प्रदान किया गया, कैसा माहौल था, कैसा लगा, इसके बारे में हम आपसे और बातें करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का हम एक गीत सुने,
0: चांद सी महबूब सर
1: जी जी। तो आइए सुनते हैं घनश्याम साहू जी की पसंद का ये गीत।
2: Yeah.

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे घनश्याम साहू जी से, जिन्हें हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है नाट्य लेखन के क्षेत्र में। ये हमारे साथ है। तो घनश्याम जी, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और अब हम जानना चाहेंगे ये पुरस्कार आपको कहाँ प्रदान किया गया, ये पुरस्कार मिलने की जो श्रेणी होती है उसमें क्या क्या अनुभव होने चाहिए और क्या क्या इसकी पात्रताएं होती है।
1: सर, ये पुरस्कार तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी से ही उस्ताद बिस्मिल्ला योखा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार 2025 में नाट्य लेखन के लिए पूरे इंडिया से दो लोग को मिला सर, एक नॉर्थ ईस्ट के हैं एक और एक मैं हूँ, 2025 में जिनको मिला है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी गर्व की बात है सर, थिएटर के लिए, हमारे नाट्य विभाग, हमारे यूनिवर्सिटी के लिए। इसका ऐसा है कि वो लोग देखते हैं कि आप राष्ट्रीय लेवल पर क्या कर रहे हैं, मतलब आपका फील्ड कैसा अलग है, आप अलग किस लेवल पे काम कर रहे हैं उसको देखा जाता है। मेन कैसा अलग है, मतलब किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या उठा रहे हैं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं और आप कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है। तो लोग देखते हैं सर कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आप अलग क्या कर रहे हैं, अपने फील्ड में आप क्या कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से आपका चयन किया जाता है।
0: तो घनश्याम जी, अगर हम इतिहास में जाएं और आपसे हम जानना चाहें कि ऐसे कोई नाटककार जिनकी साहित्यिक कृतियां काफी मशहूर रही, तो ऐसे किस नाटककार के बारे में कि आपके कौन सबसे ज्यादा आप जिन्हें पसंद करते हैं?
1: मोहन राकेश जी। जी, उनका नाटक है सर आषाढ़ का एक दिन है और आधे अधूरे हैं, तो वो जीवंत लिखते हैं सर। जो कहानी है वो कहानी के माध्यम से आपको जीवन दर्शा देते हैं कि आप ये हैं। छोटी छोटी कहानियों को लेकर कैसे सीन बाय सीन पिरोते हैं, कैसे हर सीन में आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि नहीं ये समाज है और इस समाज का आप हिस्से हैं, वो आपको डिटेल से देखने को मिलेगा सर। मोहन राकेश जी का नाटक आप देखिए आधे अधूरे, आपको पहले पढ़िए सर, आपको पढ़ने मजा आएगा जी। पढ़ने के बाद आपको देखने का अगर मौका मिलता है, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे अगर हम होंगे या कहीं से आप व्यवस्था हो जाएगा तो आप देखिए आधे अधूरे। नाटक में सर मैं आपको सीधी बात बोलूं तो पैसे कम है, तो कई लोग तो थिएटर करते हैं लेकिन वो फिल्म के माध्यम अपना लेते हैं सर, क्योंकि फिल्म में पैसा है। थिएटर करते हैं, थिएटर में पैसा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा नहीं है। थिएटर में मान सम्मान इज्जत पैसा शोहरत सब है, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। आपको जूझना पड़ेगा, आपको डटे रहना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर समय मांगता है सर, ऐसा नहीं है कि एक बार में चमत्कार हो जाए।
0: घनश्याम जी, जैसे कि आपने बताया नाटक, तो आपके जीवन का कोई वो महत्वपूर्ण नाटक आपको लगता हो कि उस नाटक से ही आपको एक मंच मिला और आपकी आधारशिला वहीं पर बनी, तो वो नाटक कौन सा है?
1: सर दो नाटक है, मतलब नाटक तो सब है लेकिन दो तीन ऐसे नाटक हैं सर जो मेरे बहुत करीब हैं। जैसे नाटक अघनिया है जो एक रियल स्टोरी बेस्ड पर है, जो देवार परंपरा है उन पे आधारित है कि वहां की एक लड़की है वो उड़ना चाहती है लेकिन उस उड़ने के पीछे उनको कितने लोग खींचने वाले हैं वो लड़की समझ ही नहीं पाती है। वो एक बड़ा अच्छा नाटक, नाटक अघनिया। और एक नाटक है लाल दुपट्टा, थर्ड जेंडर है उनकी पीड़ा को दर्शाया गया उस नाटक पे सर। वो मेरा दिल के बहुत करीब बहुत बेस्ट नाटक है। और एक नाटक है पहाटिया स्वतंत्रता संग्राम की 1857 से, लेकिन 1857 से पहले हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1824 में वीर गेंद सिंह जी हुए, 1795 में हिमुरिया विद्रोह हो गए थे, हमारे छत्तीसगढ़ से भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े गए हैं। अब भी नारायण सिंह देख लीजिए, गुंडाधुर देख लीजिए, ध्रुवराम देख लीजिए, राम साहब देख लीजिए, ये सब उस नाटक में हम लोग पिरोए गए सर, जितने नायक लोग हुए हैं सबको।
0: घनश्याम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा राष्ट्रीय पुरस्कार आपको अभी 2025 से प्रदान किया गया है, इसके पूर्व भी आपको कई सम्मान प्रदान किए गए हैं, उसके बारे में बताएं।
1: जी सर,

0: थिएटर की पढ़ाई के दौरान ही मुझे ग्रेजुएशन मास्टर में गोल्ड मेडल मिला है, बीए थिएटर गोल्ड मेडल 2015 और एमए थिएटर गोल्ड मेडल 2017 और एक फिल्म हम लोग किए थे सर, स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था द मिस्ट्री 2015 में ही। इसके साथ ही भारत सरकार नई दिल्ली सीसीआरटी द्वारा राष्ट्रीय युवा छात्रवृत्ति पुरस्कार भी मिला है 2017 में और वक्ता मंच एक मंच है सर यहाँ, उसके माध्यम से मुझे रचनाकार सम्मान भी मिला है और कलमकार सम्मान भी मिला है 2018 और 2019 में।
1: कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल और लेंगे और आपसे चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
0: मेरी माँ के लिए है जी, लाडला फिल्म गाना है तेरी उंगली पकड़ के चला।
1: श्रोताओ आइए सुनते हैं घनश्याम साहू जी की पसंद का ये गीत।

0: श्रोता, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे घनश्याम साहू जी से, जिन्हें हाल ही में 2025 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चूंकि आप नाट्य लेखन से जुड़े हुए हैं, अभिनय भी करते हैं आप, तो नाटक में जो स्क्रिप्ट होती है या स्टोरी हम जिसे कहते हैं, उसमें कैरेक्टर को बांधना काफी कठिन होता है, तो उसके लिए रिहर्सल से लेकर के आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है?
1: बहुत कठिन है, अभी की स्थिति में तो बहुत कठिन है, क्योंकि अभी थिएटर करने वाले लोग नहीं मिलते। सब लोग फिल्म करना चाह रहे हैं, सब लोग रील बनाना चाह रहे हैं
0: जी।
1: तो थिएटर करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, और जो लोग मिलते हैं बहुत अच्छे लोग मिलते हैं
0: जी।
1: तो ढूंढना पड़ता है, जो पात्र होते हैं ना वही आपका नायक है, वही खलनायक है। तो उसी माध्यम से आपको नाटक लिखना है, क्योंकि एक कहानी है, उस कहानी को छोटे छोटे धागों में पिरोना है अपने को। तो वो जो पात्र जो होते हैं ना, पात्र के माध्यम से ही कहानी लिखा जाता है
0: जी।
1: कि एक नायक है, उस नायक के आसपास में उनकी नायिका है, उसके आसपास में खलनायक है, उसके आसपास में ही समाज है, उसी ताना बाना को लेकर आपको एक कहानी बनाना है जो दर्शकों को पसंद आए
0: जी जी।
1: तो फिर एक नाटक तैयार कर, पहले सबसे पहले तो एक नाटक बनाने के लिए आपको एक कहानी तैयार करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहानी तैयार करते हैं, कोई सा भी कहानी तैयार करते हैं, तो कहानी तैयार करने के बाद फिर उस कहानी में कितने पात्र हैं, उस पात्र के हिसाब से फिर वो डिटेलिंग, जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले बोल सकते हैं सर, स्क्रीन प्ले जैसा, उसको डिटेलिंग फिर लिखते हैं। डिटेलिंग लिखने के बाद उसका देशकाल, वातावरण, रहन सहन, हाव भाव, परिदृश्य सब उसमें तैयार करके एक नाटक तैयार करते हैं। नाटक तैयार करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिस्ट ढूंढना। आर्टिस्ट ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हालांकि अभी तक हम लोग जितने नाटक तैयार किए हैं लगभग खैरागढ़ में किए हैं, तो सारे आर्टिस्ट रूम में ही रहते हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। रूम में ही खाना पीना रहना हो जाता है, और रिहर्सल के लिए जगह मिल जाती है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस दिक्कत होती है कलाकारों को इकट्ठा करना, क्योंकि खैरागढ़ से पास आउट होने के बाद सभी लोग अपने अपने फील्ड में चले जाते हैं, बाकी ज्यादा कठिन नहीं है।
0: तो घनश्याम साहू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप छत्तीसगढ़ के बाहर जाते हैं, वहां नाटकों का मंचन होता है, तो आपने पहला आपका नाटक का मंचन हुआ था जो छत्तीसगढ़ के बाहर हुआ था, कहां हुआ था, और कोई एक ऐसा नाटक तो आपको लगा हो कि जिसकी सराहना काफी ज्यादा मुझे मिली हो?
1: पार्टियों भोपाल में किए, उज्जैन में किए, और हम लोग यहाँ खैरागढ़ में भी किए। पहाटिया ऐसा नाटक है जिसको हम लोग देश के लगभग बड़े मंच में किए हैं, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो मुंबई हो, उज्जैन हो, सभी ने तारीफ की इसकी। इस ऐसा सब्जेक्ट को उठाकर नाटक करना वो चैलेंजिंग काम है
0: जी, जी।
1: उस चैलेंजिंग को हम लोग चौबे सर के साथ मिलकर बहुत आसानी से मंच पर प्रयोग करते हैं, और बड़ा प्यारा नाटक है। जैसे तीजन माँ है, उनको देखे हैं, बचपन से देखते आए हैं, गोविंद निलकर जी हैं, उनको बचपन से देखते आए हैं, हमारी अभी हमारे फील्ड के अनु शर्मा दादा हैं, उनको देख रहे हैं, तो चाहत होती है सर कि अच्छा काम करें, अच्छा नाम कमाएं, अच्छा सम्मान मिले, ताकि हम लोगों के लिए अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कुछ कर सकें
0: जी जी। और चलते चलते हम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं कि नाटक समाज का आईना होता है, इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे?
1: सर देखिए, कोई भी हम नाटक लिखते हैं तो समाज से उठाकर लिखते हैं, मतलब जो भी हम नाटक लिखते हैं सर, वो समाज के लिए लिखते हैं, चाहे वो नाटक बुरा हो चाहे अच्छा हो, हम समाज के पात्रों को उठाकर ही हम नाटक करते हैं। तो ये तो है, मतलब नाटक एक ऐसा माध्यम है कि हम, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, चाहे मंच के नाटक के माध्यम से हो, हम समाज को रूबरू कराते हैं कि ये देखिए ये सच्चाई है। तो हम नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए ये हमारी सच्चाई है, और हमें इस प्रकार से जीना है।
0: तो श्रोताओं, इनसे मिले कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे घनश्याम साहू जी से, जो छत्तीसगढ़ से हैं, और हाल ही में इन्हें 2025 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया नाट्य लेखन के क्षेत्र में। तो घनश्याम जी, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं से जो अपने अनुभव और अपनी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, थैंक यू, आभार।
0: इनसे मिले कार्यक्रम से हमें यही अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। कथा लेखन के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से सम्मानित घनश्याम साहू से भेंट करता थे रमाशंकर।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसे हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 9 बजे हैं अब से लेकर 9:55 तक आप सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में चलिए लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक।

कृष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाजों में। नासिर फराज ने इसे लिखा था और राजेश रोशन का संगीत था। बंटी और बबली फिल्म का गीत आपको अब सुनवा रहे हैं सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें। गुलजार की गुलजार

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में बंटी और बबली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाजों में फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। समीर ने इसे लिखा था, हिमेश रेशमिया ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं

0: हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
0: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थीं बेआवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

चानन देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आईं, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज़ जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की धड़।

शिवानंद देवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र से ही कर ली। वो दौर मूक फिल्मों का था। मूक फिल्मों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई, जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी ऐसी अभिनेत्रियों में भी अग्रिम पंक्ति में आती हैं, जो पर्दे पर खुद के लिए गाया भी करती थी।

0: तकरीबन चार दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में करती रहीं। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कानन देवी ने उस समय कोलकाता के मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया। इसके पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रहीं, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।
1: अबुआ की डाले डाले झूम रही है लाले, अबुआ की डाले डाले झूम रही है लाले।
2: मैं पीकर मद की प्याली, यूं चाल चलूं मतवाले। मैं पीकर मद की प्याली, यूं चाल चलूं मतवाले।
1: अबुआ की डाले डाले झूम रही है लाले, अबुआ की डाले डाले झूम रही है लाले। मतवाले मतवाले मतवाले
2: मतवाले मतवाले।

0: रही है आली, अम्मा की डाली झूम रही है आली, अम्मा की डाली।
1: यहाँ कानन देवी के सफलता के किस्से सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया। 22 अप्रैल 1916 को

पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

इतने छोटे सी उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रहीं जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमिनोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थीं।

भी अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और अपना एक बैनर शुरू किया जिसका नाम रखा श्रीमती पिक्चर्स।

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रहीं। उनकी कुछ ऐसी ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्या। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ, जिनके साथ उनकी कई फिल्में आईं।

देवी संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थी। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्लाह रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

कानन देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक ओर लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

कानन देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रहीं। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थीं, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थीं, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

कानन देवी ने अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ तो उन्होंने उस ओर कोई न कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त, प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

कानन देवी के प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी रिले किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 9:55 होने वाले हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार अब अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इनमें रायपुर रेलमंडल के बालोद और सोरोना स्टेशन भी शामिल हैं। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन, कल सदन में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम पारित हुआ और आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। इनमें रायपुर रेलमंडल के बालोद और सोरोना रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और यात्री केंद्रित बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरोना और बालोद रेलवे स्टेशनों के उन्नयन से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। यह सत्र 13 जुलाई से शुरू हुआ है। सत्र के अंतिम दिन आज विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सदन में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम पारित हो गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम आधारित और विश्वास आधारित बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य उद्योगों और कारोबार की स्थापना तथा संचालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक अनुपालनों को कम करना तथा विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्यम अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करना है। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा। 17 जुलाई से 21 जुलाई तक जिला स्तर पर विद्यालयवार आरटीई के रिक्त सीटों के बारे में बताया जाएगा। 22 जुलाई से 5 अगस्त तक पात्र पालक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी और 17 अगस्त से 25 अगस्त तक लॉटरी में चयनित बच्चों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया जाएगा। इस अंतिम चरण में केवल वे ही पात्र बच्चे आवेदन कर सकेंगे जिन्हें पूर्व के किसी भी चरण में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग द्वारा आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर युवाओं की भागीदारी को मजबूत करना, संस्थागत समन्वय को बढ़ाना और युवा नेतृत्व वाले राष्ट्र निर्माण के लिए भविष्य के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार देर शाम नीट यूजी के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मूकबधिर दिव्यांग युवाओं के लिए रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित विशेष रोजगार कार्यालय में आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा द्वारा आज कुलीपोटा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और रायपुर रेलमंडल के अंतर्गत भाटापारा हथबंद स्टेशनों के बीच संपार डाउन लाइन स्थित ट्रैक में मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके कारण कल 18 जुलाई को सुबह 8 बजे से 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक इस मार्ग पर सड़क यातायात बंद रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के

0: अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इनमें रायपुर रेलमंडल के बालोद और सरोना स्टेशन भी शामिल हैं। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन कल सदन में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम पारित हुआ और आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। दिन के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गूंजे स्वर गांव के। इस कार्यक्रम में आज आप पहले सुनेंगे पंडवानी। प्रसंग है पांडव का धृतराष्ट्र के पास जाना। कलाकार हैं विदुषी तीजन बाई।

0: हाँ। ये सारे खेल हकीबे नहीं तो कृष्ण के सवा दूसरा काकरो नहेगा।
1: अच्छा,
0: कृष्ण के जरियत ले भीमसेन मन है जिंदा हवे, पांचों भाई सदा जीवित भये। सबो भाई कारो मन नास हो गे कहे अंधा, तोरे दिही के दिया बुताए के खाती कृष्ण जी नगर द्वार का ले आए रही सेवा। ये बात ले अंधा के पास में सुंदर गोठियावत रहे, वही वक्त में का करे।

0: मुरलीधर कन्हैया कहने लगे धृतराजन धा, ये सब खेला हमर कह के बदनाम ला मत बोझा लगा। काबर ये सारी खेल राजा दुर्योधन के हुई से।
1: अच्छा,
0: अरे जब मैं पांच गांव मंगाए के आस लगा के लगे दरबार में जब पहुँचे गुरु द्रोणा भीष्म पितामह ये सब राजों के बीच बीच में, यंतना देवो राजा की के कही तब के दरी मैं मन में सोच के और पांच सने

0: जी के पांडव मन बर परन करे रही सवे पांडव मन के करनी नो है न मोर करनी नो है दादा मोर फोकट के कलंक मत लगा।
1: अच्छा
0: ये तो राजा दुर्योधन के करनी है। ये बात ले सुनकर बड़ा

0: में दादा मोर फोकट के कलंक मत लगा।
1: अच्छा,
0: ये तो राजा दुर्योधन के करनी है।
1: हाँ?
0: ये बात ले सुनकर बड़ा प्रेम के साथ धृतराज अंधा ले और आत्मा में ज्ञान हो जावे। शिर तोन बातें मोरे बेटा, ये बात ला ध्यान नहीं दीस।
1: हाँ?
0: समझाए भीष्म पितामह गुरु द्रोणाय और कृष्ण जी भी समझाई, पर काकरो वचन में ध्यान न लगाईस।
1: हाँ?
0: ये कहकर यंधा धृतराज के मन में आनंद आ गए।
1: अच्छा,
0: वह वक्त बड़ा हर्ष होके कहने लगे, भैया।
1: हाँ?
0: कृष्ण जी, मोर पांचों जने बेटा ला मैं सदा पुत्र के समाज

0: है बेटा। अरे मैं जत का भी अपन मन में क्रोध करे रहे जिधर में राज, ये तबला दूर करके आज मोर गले के पास में आकर मिल जा।
1: अच्छा,
0: ये बात ला सुने तो पांचों भाई बड़ा सुंदर अकन दौड़ के चले।
1: हाँ।
0: तब गले ले लगावा।

युधिष्ठिर धर्म राज बड़ा खुशी के साथ बोलने लगे हैं। यंधाले दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, पिताजी जब कभी

0: के सूचना देख के गंधारी अलग बिलाप कर कर के मन में क्रोध भरी वाणी और घुसा के साथ आँखी ललियावत हवे वो गंधारी के जब आँख लाल हो गए पांडव मल्ला शराब दे के नाश कर डर मुकी के वही समा का हो जाते
1: अच्छा
0: हाथ कमंडल उठा हाथ में कमंडल उठा के

0: कंधा के पास ले मिल के और ये पांचों भाई
1: अच्छा
0: कृष्ण के सही और धीरे धीरे बड़ा प्रेम के साथ माता संग मिले भर चले हैं
1: भाई।
0: अरे सौ भाई कारों के नाच सुनने वाली गंधारी
1: हाँ?

0: पिता जी के कहे हुए वचन ले सुनकर गंधारी या मन में हर्ष तो यवस मनाई रहे काका, पर मन ही मन सोच के कथे का करो ब्याज जी।
1: अच्छा
0: मोला यही बात के गजब दुख लागेगा। काके भीमसेन के करनी ला तो जरा देख ली, वो अनर्थ लड़ाई करी। राजा दुर्योधन के जंघाला ये टोरे के मौका नहीं रही। वह समय भीमसेन पर उठा कर गदा, भीमसेन मार

अभी आप सुन रहे थे पंडवानी, विदुषी तीजन बाई और साथियों की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं बैगा कर्मा, चेपटी ताल। कलाकार हैं बिसाहू राम बैगा, आतू राम, सुख सिंह बैगा और साथी।

अभी आप सुन रहे थे बैगा कर्मा चेप्टी ताल। कलाकार थे बिसाहू राम बैगा, आतुराम सुखसिंह बैगा और साथी। गूंजे स्वर गांव की ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पंडवानी। कलाकार हैं विदुषी तीजन बाई, प्रसंग है धृतराष्ट्र से क्षमा मांगना।

0: पति लमार पकड़ के लाकर नग्न तैयारी करे रही।
1: अच्छा
0: वो समय मना द्रौपदी ला नग्न बिठा हूँ की के बार बार जंगल ठोके रही से दाई। जब हम लोग 13 वर्ष के बनवास आए सो समय में परन कर रहे हो। अरे दुर्योधन मीज मोर नारी लता है नग्न बिठाए बरते है जांग तो कथा मौका ले पा के तोर जांग ला तोर हूँ की के मोर की आया परना।

0: बेटा
1: हाँ?
0: अनर्थ में दुदासन के तब भूजल कबर उठा रहे भीमसेन
1: हाँ?
0: मैं क्या करूं दाई लगे दरबार में लाके नग्न तैयारी करी तो दुर्योधन के जांगला तोड़ रहे हाँ? वो इसने दुदासन के तक वो
1: अच्छा
0: मोर नारी राजा सोलर रही सब
1: हाँ?
0: अरे वो इसने हालत लगा

0: के दरबार में टेकाई तब उतरे वही दसाला देख के दाई मैं दुदासन पर परन कर रहे हूँ तपा के तोर भुजा लग उखाड़ हूँ की
1: अच्छा
0: मोर किए हुए परन में मैं भुजा लग उखाड़ के और सारी पाप के बोझला मोर सर में लगाए ये भीमसेन के बात ले सुनकर क्रोध वसाने वाली गंधारी और मन में शांत करने लगी सही बात
1: अच्छा
0: राजा दुर्योधन के करे हुए काम के बाद में पांडव मन करे ही
1: हाँ?
0: कहे बेटा धर्मराज तय कहाँ हस वह समय धर्मराज दोनों हाथ जोड़कर

0: क्षमा दे दाई, मैं तो सौजन है पुत्र, बा नाती पोता भाई बंधु सबला मैं ना कर डरी हूँ।
1: अच्छा।
0: और मोरे जरिए से होई दाई, तोर पास में आकर मैं क्षमा मांगत हूँ पुत्र, समझ के क्षमा देना। या धर्मराज के मधुर आवाज ला सुन के गंधारी क्षमा करके और मन में शान करके चर्चा करने लगी, बेटा नकुल और सहदेव बेटा कहाँ है।
1: अच्छा।
0: ये नकुल और सहदेव ले कहकर भड़क के जब बोले वो दशा लदे के कहा। नकुल और सहदेव बेचारा मन चुप रही, गंधारी या समय कोई शराब तो ना दे देवे, ये मन में डर रहे। अभी गंधारी कहने लगी, कहा

0: में आंसू भरिया वेक का पाचो भाईले सुंदर हर्ष मनाने वाली गंधारी और माता कुंती ले बुलाए के इच्छा करने लगी हो। ये पाँचों जने मोर बेटा के साथ में मिल गए हाँ। इसने मोर मन हाँ कुंती के संग माही
1: अच्छा?
0: बोला सुंदर

अभी आप सुन रहे थे पंडवानी। कलाकार थीं विदुषी तीजनबाई और साथी। इसी के साथ कार्यक्रम गुंजेश्वर गांव के यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद का पहला गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म है नमक हलाल। अनजान के शब्द, बप्पी लहरी का संगीत और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं देवरी भाटापारा से कन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानीश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या रजक, कुमारी टानिया रजक, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, बहादुरा आकार हाइट्स नागपुर से आप हैं वैशाली, शैलेश, सुमित, कुमारी, ध्वनि और इनके साथी नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज़ आप हैं लूतरा खमरिया से। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत के, ओवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, मीणा साहू, नेहा साहू, मोनिशा साहू ने इसी गीत को पसंद किया है और ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से आप हैं रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी

0: में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। फिल्म है बेताब, गीतकार आनंद बख्शी, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथियों के नाम हैं भाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज नारायण, यदु लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू। भाटापारा मारवाड़ी कुआ से आप हैं सियाराम, अश्विनी पांडे, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ और वंदना कुमार, ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। पोटिया कला दुर्ग से आप हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। शनिचरी बाजार भिलाई से आप हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, शौर्य जैन, सौरभ जैन, शुभम जैन और सिया जैन। ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से कमलेश साहू, हरेंद्र साहू और सुशील। तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम आपकी पसंद को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था।
1: नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर पांडे। लीजिए प्रस्तुत है प्रतिदिन की भांति आपका अपना रोचक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। आपका स्वागत है। शहर बिलासपुर, गांव बिलासपुर या जिला बिलासपुर, सर्वत्र यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, इसी प्रकार हमेशा सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हमेशा सड़कों में संयम रखें, गति में नियंत्रण रखें और यातायात के नियमों के अनुसार चलें। क्योंकि सड़क में आप जिस भी वाहन के साथ हैं, आपकी थोड़ी भी चूक वाहन चालक के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए आफत बन सकती है। मित्रों, ये सच है कि हर स्तर पर हर संभव प्रयास है कि सड़क दुर्घटनाएं ना हो, किंतु यह भी सच है कि अनेकों प्रयास के बाद भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मारे भी जा रहे हैं। भारत में औसत प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बढ़ती मृत्यु संख्या के उच्च स्तरीय विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति जिसका प्रथम 1 घंटा स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, उसे तत्काल चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पाती। लोग मदद करने से डरते हैं क्योंकि ऐसा करने पर न्यायालय या थाने के उन्हें चक्कर काटने पड़ेंगे, परेशान होना पड़ेगा। इन्हीं तथ्यों को देखते

0: हमारे देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक विशेष आदेश जारी किया गया है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल ले जाने में किसी भी प्रकार से मदद करने वाले व्यक्ति को थाना या न्यायालय नहीं जाना होगा। यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्भर करेगी। ऐसे मददगार व्यक्ति को गुड सेमिटन या नेक इंसान कहा गया है। ऐसे गुड सेमिटन व्यक्ति को शासन स्तर पर सम्मानित एवं पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है। इसलिए प्रयास हो कि दुर्घटना ना हो। किन्हीं कारणों से सड़क दुर्घटना हो भी गई तो घायल की निसंकोच मदद करें। हाल ही में माननीय श्री नितिन गडकरी जी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने ऐसे मददगारों को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये तो थी श्रोताओं बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। लगान फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलका याग्निक, उदित नारायण और सुखविंदर की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के शब्द पर संगीत तैयार किया है A.R. रहमान ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं हटरी बाजार भाटापारा से मोतीलाल देवदास, श्रीमती गौतम देवदास, मुकेश देवदास, पवन गोलू देवदास, ग्राम दामन बोर्ड से कुमार यादव, श्रीमती अमृत यादव, कामदेव यादव, लेखुराम यादव, लच्छनपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, तेलीपारा बिलासपुर से आप हैं रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, अनीता श्रीवास, छन्नूलाल श्रीवास, रिंगनी छत्तीसगढ़ से विनेश वर्मा, करुणा वर्मा। इसी गीत के लिए हमें पत्र मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और अमनदीप का। कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, भाटापारा से श्याम रतन रचनाकार, भाटापारा से ही आप हैं बबला यादव, रिखी राम यादव, श्रीमती कमलेश्वरी यादव, बिलगहना शक्ति बहरा से श्याम शंकर विजय, रागिनी गीता देवी, कुसुम काशीपुरी, राधा मनीष प्रकाश और इनके बहुत सारे साथी। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, ग्राम बुड़गहन से आप हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद हम यहीं पर समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11 बजे हैं, लीजिए

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टि बाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओ, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
3: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
3: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
3: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
2: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
3: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
3: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी

0: audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है।

0: हिम का ताज,
1: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
0: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
1: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
0: कैसे बना हिमालय।
1: आज रिद्धि,
0: नव्या
1: और रिदित
0: सब बहुत खुश है
1: क्योंकि उनका परिवार
0: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
2: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
3: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
2: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
3: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
2: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
3: बहुत मजा आएगा।
1: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
0: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
1: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
0: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
1: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
0: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
1: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
1: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
1: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
1: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
1: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
1: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
1: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
1: देखो विशाल और शांत महासागर, ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ

0: माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथित सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
3: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
3: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
3: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथित सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथित सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
3: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
4: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
5: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा?
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर चार चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
4: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
3: बोलो
4: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
3: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
4: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
3: अरे नहीं नहीं,
4: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
4: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
3: अच्छा।
4: राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा।

0: दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
1: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
2: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
0: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
2: दो शेर राजम पर झपटे थे,
1: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
0: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
2: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
1: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
0: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
2: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
1: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
0: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
2: अच्छा।
1: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
2: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
1: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 11:30 होने वाले हैं। अब से लेकर 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आइए आप सुनते हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में ये गजल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए, ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, अवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है ये आवाज कहां से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है।
6: भूपेन हजारिका की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार साहब की ये रचना।

ये आवाज थी भूपेन हजारिका की। और आइए अब सुनते हैं कैलाश खैर की आवाज में ये ओगार फिल्मी गीत।

स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इनमें रायपुर रेल मंडल के बालोद और सोरोना स्टेशन भी शामिल हैं। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन आज विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित किया

0: नीट यूजी के परिणाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। इनमें रायपुर रेलमंडल के बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और यात्री केंद्रित बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरोना और बालोद रेलवे स्टेशनों के उन्नयन से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। यह सत्र 13 जुलाई से शुरू हुआ है। सत्र के अंतिम दिन आज विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। युवा मामले और खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग द्वारा आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर युवाओं की भागीदारी को मजबूत करना, संस्थागत समन्वय को बढ़ाना और युवा नेतृत्व वाले राष्ट्र निर्माण के लिए भविष्य के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार देर शाम नीट यूजी के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा। 17 जुलाई से 21 जुलाई तक जिला स्तर पर विद्यालयवार आरटीई की रिक्त सीटों के बारे में बताया जाएगा। 22 जुलाई से 5 अगस्त तक पात्र पालक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी और 17 अगस्त से 25 अगस्त तक लॉटरी में चयनित बच्चों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। इस अंतिम चरण में केवल वे ही पात्र बच्चे आवेदन कर सकेंगे जिन्हें पूर्व के किसी भी चरण में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने मुख्यमंत्री सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ जयंत वैष्णव को आगामी आदेश तक मुख्यमंत्री सुरक्षा का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। यह आदेश पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने जारी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जशपुर में वन विभाग की अभिनव पहल ट्री एटीएम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मोबाइल ट्री एटीएम के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे निशुल्क वितरित किए जाएंगे। बस्तर का प्रसिद्ध गोंचा महापर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छेरा पहरा रस्म के बाद कल भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के 22 विग्रहों को तीन रथों में विराजमान कर रथयात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर विग्रहों को गुंडीचा मंदिर में 9 दिनों के लिए स्थापित किया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के सम्मान में तुपकी चलाने की 619 वर्ष पुरानी रियासतकालीन परंपरा भी निभाई गई। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इनमें रायपुर रेलमंडल के बालोद और सरोना स्टेशन भी शामिल हैं। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन आज विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित किए नीट यूजी के परिणाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ दो या तीन डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहेम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या

0: भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ खास गीत। जी हाँ, आज जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब का जन्मदिन है, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में हमने जरीना वहाब की फिल्मों से ही कुछ गीत चुने हैं, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सावन को आने दो गीता फिल्म का नाम, जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा था गौहर कानपुरी ने और धुन बनाई थी राजकमल ने। और ये आवाज है रूना लैला की, फिल्म का नाम घरौंदा, नक्श लायलपुरी की रचना और जयदेव की धुन।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: कार्यक्रम का अगला गीत, यशुदास की आवाज में फिल्म चितचोर से हमने लिया है। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

यशोदास की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म चितचोर का ये गीत। और लीजिए अब सुनिए एन दत्ता का संगीत, पंडित भरत व्यास की बोल, आवाज सुमन कल्याणपुर की, और फिल्म का नाम गोपाल कृष्ण।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए गुलजार साहब की लिखी रचना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने और ये फिल्म है सितारा।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज आप सुन रहे हैं अभिनेत्री ज़रीना वहाब की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं फिल्म नैया का गीत। इसे आवाज दी है हेमलता ने। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म दहलीज का दो गाना सुनिए, स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के हैं, गीतकार हैं हसन कमाल और संगीत रवि का है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हमने नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ चुना है। इसे संगीत में डाला है जयदेव ने, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश

0: उजा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: एक और एक ग्यारह, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने वाले हैं। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले, शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुलक्षणा पंडित और साथियों का गाया हुआ फिल्म जज्बात का गीत, शब्द महेंद्र देहलवी के और धुन राजकमल की।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने मशहूर अभिनेत्री जरीना वहाब की फिल्मों से कुछ गीत सुने थे।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर, ये कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इबारत पढ़कर आप सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, है ना? क्योंकि आज की इबारत बिल्कुल साफ इशारा कर रही है कि आज सुरीले सफर में होने क्या वाला है ना? हमारे श्रोताओं ने यानी हमारे दोस्तों ने पूरे के पूरे आज गीत लिख दिए हैं जो हमारे गीत इस कार्यक्रम में बजने वाले हैं। और जिन श्रोताओं ने इस इबारत को जब और गहराई से पढ़ा तो उन्होंने इस बात को भी समझा कि उद्घोषक महोदया आज क्या कुछ नया लेकर आई हैं। जी हाँ, ये सभी बातें हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि फेसबुक पेज पर जब आप अपनी टिप्पणियां हमें लिख रहे हैं, हम उन्हें पढ़ रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तब पता चल रहा है कि हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं। और इस इबारत में पूरे के पूरे गीत जो हमने आज चुने हैं आपके लिए, लगभग आपके वही गीत हमें भी नजर आ रहे हैं। और हाँ, जिन श्रोताओं ने, जैसा कि हमने कहा कि जिन श्रोताओं ने इस इबारत को और गहराई से पढ़ा और ये समझा कि उद्घोषक महोदया आज क्या कुछ नया लेकर आई हैं, तो वो समझ गए हैं कि आज हम लेकर आए हैं कुछ शीर्षक गीत। जी हाँ, शीर्षक गीत, जैसे फिल्म आवारा का गाना है, आवारा हूँ, ऐसे ही कुछ गाने आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो शीर्षक गीत हैं उस फिल्म का। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ये शीर्षक गीत अक्सर फिल्म के मुख्य संदेश या केंद्रीय भाव पर आधारित होते हैं और कोई भी गीतकार गीतों के जरिए सीधे दर्शकों के दिलों से जुड़ना चाहते हैं और इन फिल्मों की आत्मा उनके गीत में नजर आ जाती है, जिन्हें शीर्षक गीत के माध्यम से और ज्यादा बताया जाता है। मतलब फिल्मों के शुरुआती और सुनहरे दौर में शीर्षक गीत लिखने की जो परंपरा थी वो बहुत सारे गीतकारों ने शुरू की, जैसे कि शैलेंद्र साहब, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी। इन्होंने मुख्य रूप से फिल्म के प्रचार और थीम को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इसे अपनाया और शीर्षक गीत हमारे लिए रचा। तो चलिए, आज इस सुरीले सफर में आप सभी हमारे साथ हैं, हमें उम्मीद है, क्योंकि आज का ये सुरीला सफर बहुत साफ सुथरा है, पथरीला नहीं है, कांटों से भरा नहीं है, फूल ही फूल है। और हमें अपना मार्ग, अपना पथ पता है कि आज सुरीला सफर ये सफर कहाँ तक का है। तो चलिए, निकल पड़िए इस सुरीले सफर पर

प्यार का सागर। जी हाँ, ये था फिल्म का नाम जिसका दो गाना अभी आपने मुकेश और आशा भोंसले की आवाजों में सुना। गीतकार प्रेम धवन थे और संगीतकार थे रवि। और हाँ, हम देखिए ना, इतनी खुशी में आज की इबारत आपको बताना ही भूल गए, क्योंकि जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि आज की इबारत क्या है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं, उसी इबारत को पढ़ने के बाद उन्होंने समझा कि आज का ये जो सुरीला सफर है उसमें क्या होने वाला है। हाँ, हम अपने नए श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहेंगे कि www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप विविध भारती परिवार की जो टीम है, सदस्य हैं, उससे जुड़ सकते हैं, यानी विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, अपने विचार हम तक लिख सकते हैं। तो आज की इबारत है कि प्यार का सागर जब किसी की आंखों में उमड़ता है तो दिल किसी गहरे एहसास से लबालब हो जाता है, आंखों ही आंखों में बातें होने लगती हैं। यकीनन जब प्यार किसी से होता है तो प्यार का मौसम प्यार ही प्यार बरसाता है। आशिक दिल कह उठता है, तुमसे अच्छा कौन है, कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। सुनो, दिल ने फिर याद किया है तुम्हें, हाँ अब वो दिन दूर नहीं, बस समझो लग गई है महबूब की मेहंदी तुम्हारे हाथों में, यादों की बारात लेकर हम आ रहे हैं तुम्हारे राजकुमार। और हमारे श्रोताओं ने भी हमारी इबारत पढ़ने के बाद अपने विचार हम तक लिखे हैं। आप लिखते हैं कि आज गद्यांश पूरी तरह प्यार का सागर लेकर आया है। प्यार का एहसास एक ऐसी दिव्य और भावपूर्ण अनुभूति है जो जीवन को असीम लालित्य, सुंदरता और सार्थकता प्रदान करती है। ये केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा का एक स्पंदन है जो दो हृदयों को एक अदृश्य डोर से बांध देता है। प्यार मन को कोमलता, धैर्य और गहरी शांति प्रदान करता है, जिससे जीवन की आपाधापी भी एक मधुर संगीत सी प्रतीत होती है। इसके प्रभाव से ढलते सूरज की किरणें, बारिश की बूंदें और हवा का हर झोंका एक काव्यात्मक रूप ले सकता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का एहसास सपनों का राजकुमार, हाथों में मेहंदी, कुछ उमड़ते जज्बात और उस पल सिर्फ बस प्यार ही प्यार। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत यानी एक छोटी सी सुखांत लघु कथा लग रही है। एक अनुरागिनी किशोरी है, उसके दिल में समाया प्यार का सागर आंखों में उतर आता है। उस मुग्धा की आंखें बोल उठती हैं, धीरे धीरे प्यार की रुत हमारे बाहर ले आती हैं। दिल बेकरार होता है, प्रीतम के बिना कुछ भी प्यारा नहीं लगता। और फिर वो दिन भी आता है जब

यादों की पालकी में बैठकर अपने राजकुमार के नाम से लगी मेहंदी निहारते हुए उस प्रेमिका युवती का इंतजार संपन्न हो जाता है। इतनी सहज सुंदर प्यार भरे स्वप्निल अनुभूति के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी इबारत लिखने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि चाहत की नदियां जब दिल के साहिल से टकराती हैं तो रूह में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। खामोश निगाहें भी तब धड़कनों का हाल बयां करने लगती हैं। सचमुच जब जिंदगी में किसी खास की आमद होती है तो फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की खुशबू महकने लगती है। तब बेकरार दिल बस यही पुकारता है, ओ मेरे दिल के चैन तुम्हारे सिवाय इस जहां में मेरा कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। बहुत सुंदर आपने अपनी बात लिखी है, अपनी तहरीर लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि तेरे नैनों की गहराई में उतरा हूं, जब से लगता है ये दिल बन गया है, जैसे कोई प्यार का सागर बहती है जहां सदा अश्कों और जज्बातों की लहरें। मैं गा रहा हूं बस यही धुन, तू ही प्यार का सागर है, जब से छाई है तुम्हारे हुस्न की ये बहार, बदल सा गया है हर मौसम, बन गया है प्यार का मौसम मेरे राजकुमार। सज गई है हाथों में तुम्हारे चाहत की लकीर, जैसे सजी हो मेरे महबूब की मेहंदी। देखा दुनिया की इस भीड़ में गुम है मेरी दुनिया, क्योंकि मेरी आंखों में बसा है सिर्फ प्यार ही प्यार। खोया रहता है मैं अब तो बस तुम्हारे ख्यालों में, और दिल गुनगुनाता है चांद की चमक हुए तारों की छाम। इन हसीन नजारों में तुमसे अच्छा कौन है, तुम्हारी इस दिलकश अदा पर फिदा है सारा जहां, बस एक ही धड़कन गूंजे तुमसे अच्छा कौन है। अरे वाह, हम भी आपसे ये कहेंगे कि हमारे श्रोताओं से अच्छा कौन है। तो चलिए बढ़ते ही थोड़ा सा आगे और सुनते हैं आज का ही दूसरा शीर्षक गीत। आवाजें आशा भोंसले और किशोर कुमार की है। फिल्म का नाम है आंखों ही आंखों में। गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

जी, तो ये गाना था फिल्म आंखों आंखों में का। आवाजें आशा भोंसले और किशोर कुमार की थी। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लालायत दिलों को लुभाती प्रेम रस से लबरेज इमारत है, हुस्नो इश्क को प्रीत की रीत का राहत दिखाती है। प्रेम रोग से पीड़ित दिलों को राहत प्रदान करते हुए प्रेयसी के हाथों की मेहंदी सजाकर अंततो गत्वा सुखद समापन करती है। यादों में ही सही बारात का जिक्र प्रेमी युगल को लाभान्वित करेगी। प्रेमारंभ से प्रेम बंधन तक का सफर तय करने का सुखद अनुभूति प्राप्त करने की हसरत लिए हम श्रोतागण भी आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इंतजार करते हैं हमें पता है, और इस सुरीले सफर में हमारे साथ रहते हैं अंत तक, हमें ये भी पता है। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर आज की इबारत हमारे सभी श्रोताओं ने भेजी है। किसे पढ़ूं किसे नहीं समझ होता है, कई बार ऐसा लगता है क्या पढ़े और क्या ना पढ़ पाए। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का सागर लहरा रहा है, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। आपने अच्छा उन गीतों को आपने लिख दिया है और कहा है कि आंखों आंखों में बातें होती हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और महबूब के हाथों में मेहंदी सजती है, यादों की बारात लिए सपनों का राजकुमार आता है। आज की इबारत एक पूरी प्रेम कहानी है जिसे हम सभी श्रोता आज की प्रस्तुता हमारे नाम से लिखा है आपने के मुखारविंद से सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, और आप इस वक्त मुझे सुन भी रहे हैं, हमें सुन रहे हैं विविध भारती के जरिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सब गाने लिख दिए गए हैं, इसलिए आज का सुरीला सफर बहुत ही आसान हो गया है। हमने आपसे क्या कहा था कि चलिए इस आसान सफर में हमारे साथ चलिए, आज डरिए मत, कहीं कुछ नहीं है, कांटे पथरीले पथ कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है, सरल है। तो आप तैयार हो गए हैं ना हमारे साथ चलने के लिए? कुछ श्रोता तो हमारे साथ चल भी दिए। देखिए, आप लिख भी रहे हैं कि जब प्रेम सच्चा होता है तो आंखें ही दिल की आवाज बन जाती हैं, बिना कुछ कहे अनगिनत बातें हो जाती हैं। मेहंदी का रंग, यादों की बारात और दिल की पुकार सब मिलकर यही कहते हैं कि सच्चा प्रेम एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। यही इस इबारत का सबसे कोमल और दिल को छू लेने वाला एहसास है। नींद कहां आती है जब लग जाती है महबूब की मेहंदी हाथों में। और अब हम आपसे दो सवाल करने वाले हैं जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है ना? हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि आपको कौन से या कौन सा एक शीर्षक गीत का नाम लिखकर भेजिए। कौन सा शीर्षक गीत है जो आपको बेहद पसंद है? और हमारा दूसरा सवाल कि कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत वर्ष 1949 यानी 1949 में आई एक फिल्म में लिखा गया था, तो आपको बताना है कि वो फिल्म कौन सी थी और इसके गीतकार कौन थे, क्योंकि वो आगे चलकर महान गीतकार कहलाए। और सबसे बड़ी बात कि 1949 में आई इस टाइटल ट्रैक की सफलता इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसके बाद से ही टाइटल सॉन्ग्स का चलन बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेजी के साथ चलना शुरू हो गया था। तो आपको बताना है कि 1949 में आई इस फिल्म का नाम क्या है और उसके महान गीतकार कौन थे। तो अगला गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म का, आवाज हमने लता मंगेशकर की चुनी है, गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये शीर्षक गीत सुना। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज पहली बार मंदाकिनी जी की इबारत भी लंबी है। लंबी इबारत हो तो मैं कार्यक्रम नहीं सुनता, पर आज अवश्य सुनूंगा, क्योंकि मंदाकिनी जी की अविरल कलकल बहती नदी जैसी आवाज की वजह से क्या बात है। जैसे अरे लता मंगेशकर जी का हर गाना सुना जा सकता है उनकी आवाज की वजह से, चाहे गीत के बोल और संगीत कैसा भी हो, तब कोई भी गाना बुरा नहीं लगता। उसी प्रकार लंबी इबारत को भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन केवल आज तक। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन एक बात बताइए, इबारत तो बहुत छोटी सी थी। हम तो कोशिश यही करते हैं कि जितनी कम शब्दों में अपनी बात कही जाए वो ज्यादा बेहतर, और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हमारी इबारत थोड़ा सरल हो, ताकि हमारे श्रोता जो है परेशान नहीं हो और इस सुरीले सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहे, है ना। एक श्रोता ने लिखा भी है इसके बारे में, आगे मैं उनके विचार पढ़ने वाली हूँ। बड़ा ही मस्त लिखा है उन्होंने। वहीं एक श्रोता अभी लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम भीगतावासा प्यारा सा है। नमस्कार आपको, हमारा आज की इबारत तो पूरी प्यार से भरी है। आपके साथ दोपहर 1 बजे मजा दोगुना हो जाएगा, और आपने आज के टेक्स्ट से निकलने वाले संभावित शब्दों पर गाने भी लिखे हैं जो लगभग मुझे लगता है सारे ही सही हैं, ऐसा लग रहा है। एक आध गाना शायद नहीं हो सकता, बाकी आप खुद चेक कीजिएगा कि हमारी जो गानों की आज महफिल में हमने चुने हैं गीत, वो आपके गीतों से मेल खा रहे हैं या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में प्रेम की गहराई का वर्णन खूबसूरती से किया है। फिल्मों के नाम को जोड़कर सुंदर गानों से इस एहसास को और मजबूत किया गया है। आप लिखे हैं, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा तू प्यार का सागर है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये गाना फिल्म सीमा का है ना, और हमने आज चुना है शीर्षक गीतों का कार्यक्रम, यानी प्यार का सागर।

जब हमने गीत बजाया था तो उसकी फिल्म का नाम भी था प्यार का सागर, है ना, समझ आए ना आपको। वही तो प्यार की बरसात होना बहुत ही लाजमी है। दिल आशिकाना होकर किसी को याद करेगा तो महबूब की मेहंदी सुंदर हाथों में लग जाती है, क्योंकि यादों की बारात लेकर राजकुमार जी आने वाले हैं। प्यार का सागर देखा है किसी के, ये गीत तो जरूर बजना चाहिए, बज भी गया है। और वहीं इक्षुता लिखते हैं कि आज की इबारत में फिल्मों के नाम और गीतों की पंक्तियां हैं, ये केवल हमारी भावनाओं का आईना ही नहीं बल्कि प्रेम की सच्ची भाषा है। इनमें प्रेम की मिठास, बिछड़ने का दर्द, मिलने की खुशी, यादों की गर्माहट है। जब दिल में प्यार का सागर हो, हाथों में महबूब की मेहंदी का रंग हो, साथ में यादों की बारात हो, तब जिंदगी किसी खूबसूरत फिल्म से कम नहीं होती। कितना सुंदर लिखा है आपने। और मुझे लग रहा है कि जब आज प्रेम उमड़कर आया है इस सफर में, तो लोगों के दिल से प्रेम की बौछारें होने लगी हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेम हमारी जरूरत है। ये प्यार है ना, ये स्नेह, ये इश्क अलग अलग तरीके से किया गया जो प्यार है, अलग अलग रिश्तों में किया गया प्यार है, लेकिन मूल भाव उसका है प्यार, जिसकी हर इंसान को, हर प्राणी को बहुत जरूरत है। आप देखिए आपने कितने सुंदर विचार लिख डाले हैं आज प्यार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यार का मौसम फिल्म का ये शीर्षक गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। इससे पहले हम अपने सवालों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमने आपसे पूछा था छोटा सा सवाल कि आपको कौन सा शीर्षक गीत पसंद है, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत 1949 में आई एक फिल्म से लिखा गया था। आपको बताना है ये फिल्म जो 1949 में आई थी वो कौन सी थी, इसके गीतकार जो कि महान गीतकार कहलाए वो कौन थे, क्योंकि उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी। इतना हमने आपको क्लू दे दिया है, हिंट दे दिया है। और हाँ, 1949 में आई इस जो टाइटल ट्रैक की सफलता हुई वो इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसके बाद से ही टाइटल सॉन्ग्स का चलन तेजी के साथ शुरू हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।

जी हाँ, ये है फिल्म का नाम प्यार का मौसम। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

हमारे श्रोता का लिखना है कि आज कुछ इस प्रकार के गीत बजने वाले हैं जो कि दिल की गहराइयों को छू जाएंगे, जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी गहराई से इस बात को समझा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत की पहली सवा दो लाइन में चार फिल्मों के नाम और फिल्मी गीत लिखे गए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो इबारत में ही कई फिल्मों के नाम है, अब देखना है कि गीत कौन से सुनने को मिलते हैं। तो आपने देख लिया, सुन लिया ना कि आज हमने कौन से गीत चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत पसंद आई, कम से कम फिल्मों के नाम तो क्लियर है, दिमाग को मेहनत कम और सुकून ज्यादा मिलेगा। ज्यादा उलझी हुई इबारत देने की कोई जरूरत भी नहीं होती है, ये गीतों के आनंद देने का लेने का कार्यक्रम है, कोई एमए हिंदी का पेपर नहीं जहां अनसीन पैसेज हल कराया जा रहा हो। अरे आपने इतना गंभीरता से ले लिया इस बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कार्यक्रमों में जब भी कोई इबारत लिखी जाती है तो गानों के आधार पर ही लिखी जाती है। कई बार आपको लगता होगा कि इबारत बहुत कठिन है और इसमें कौन से गाने बच जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब आपको हिंट दी जाती है कुछ इबारतों में कि आज क्या बजने वाला है ना। तो इसे आप हिंदी का पेपर, एमए हिंदी का पेपर नहीं समझें। ये वाकई एक दिलचस्प प्रोग्राम है जहां सिर्फ हमें उस सुरीले सफर का आनंद लेना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से हमने जो शब्द चुना वो है प्यार। प्यार के बिना तो पूरी इबारत मानो सुनी। प्यार शब्द ने इस इबारत को बड़ा ही प्यारा बना दिया है। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जितना इसे बांटा जाए उतना ये दिलों में बढ़ता है। कुछ एहसास शब्दों में नहीं समाते, वे बस मुस्कान बनकर, चेहरों पर अपनत्व बनकर रिश्तों में उतर जाते हैं। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस अपनापन मांगते हैं। दो मीठे शब्द, एक सच्ची मुस्कान और दिल से निकला एहसास। बहुत गहरी बात आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब दिल में प्यार का सागर उमड़ता है तो आंखों में ही अनकही बातें होने लगती हैं। फिर जीवन में प्यार का मौसम दस्तक देता है और मन बरबस कह उठता है, तुमसे अच्छा कौन है। बिछड़ने और मिलने के बीच भी दिल ने फिर याद किया कि मधुर धुनें दिल में गूंजती रहती हैं। जब रिश्तों की डोर और गहरी होती है तो हाथों में मेहंदी सजती है और खुशियों की यादों की बारात साथ लेकर सपनों का राजकुमार जीवन में प्रवेश करता है। यही तो प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी इबारत पेश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार कोई बड़ा इजहार नहीं बल्कि छोटी छोटी बरवाहों का नाम है। किसी की मुस्कान की वजह बन जाना, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना, हर हाल में उसका साथ निभाने की चाह, यही तो सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत पहचान। एक प्यारी सी बात, सच्चा प्यार फूलों की खुशबू की तरह होता है, उसे जोर से पकड़कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसका एहसास लंबे समय तक दिल में महकता रहता है। सच मानिए, आपका ये प्यार भी हमारे दिल में महकता है। और देखिए, इसलिए तो हम अब जो गीत

लेकर आए हैं उसमें सिर्फ प्यार होगा। हाँ, फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: एक श्रोता लिखते हैं कि शायद आपका जो सवाल है कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया, शायद फिल्म बरसात है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन ये गीत हो सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया का सबसे पहला शीर्षक गीत फिल्म बरसात से था और इसके गीतकार थे शैलेन्द्र। जी हाँ। और वहीं श्रोताओं ने और भी अपने सवालों के जवाब में लिखा है कि संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की फिल्म साजन जब रिलीज होने वाली थी उसके थोड़े दिन पहले ही साजन फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखा गया और फिल्माया गया और फिल्म में डाला गया था, यानी ये गीत इन्हें बेहद पसंद है फिल्म साजन का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गाना है फिल्म नजराना का, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि हैं। बिल्कुल आपने बहुत ही प्यारा गीत चुना है, एक प्यासा मुझे मैखाना दिए जाता है, जाते जाते भी ये नजराना दिए जाता है। बहुत सुंदर गीत है रफी साहब की आवाज में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शायद 1949 में आई फिल्म बरसात पहली फिल्म थी जिसमें शैलेन्द्र जी ने बरसात में जब मिले हमसे तुम सनम तुमने ये गाना लिखा था। बिल्कुल सही जवाब है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सर्वाधिक शीर्षक गीत लिखने का रिकॉर्ड भी शैलेन्द्र के नाम पर ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों के जवाब हैं बूंद जो बन गई मोती, ये शीर्षक गीत सटीक इसलिए बहुत प्यारा लगता है, यानी बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का जो गीत है वो आपको पसंद है शीर्षक गीत। वहीं आप लिखते हैं कि दूसरा बरसात में हमसे मिले तुम सजन 1949 का पहला शीर्षक गीत है और गीतकार थे शैलेन्द्र। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 में सबसे पहली फिल्म बरसात में शैलेन्द्र जी ने बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम इस गीत की रचना की थी जिसे शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सरल और प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात शीर्षक गीत मुझे पसंद है, पर इसके अलावा भी पसंदीदा गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है, हम आपके हैं कौन ये गाना भी हमें बहुत पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 की प्रथम टाइटल संगीत राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बरसात में मिले हमसे तुम सजन ये गीतकार शैलेन्द्र की रचना है जो सबसे पहली मानी गई है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गीत है दिल मेरा एक आस का पंछी, बहुत सुंदर गीत है ये। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने मेरा मनपसंद गीत जब प्यार किसी से होता है बजा ही दिया है, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। और एक श्रोता को दीवानो अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन मैं हूं डॉन डॉन, यानी डॉन फिल्म का गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि अखियों के झरोखों से आश्चर्य की बात है कि जिनकी आंखों की ज्योति बचपन से बुझी हुई थी ऐसे महान गीतकार और संगीतकार रविन्द्र जैन ने इसकी रचना की, ये गाना टॉप गाना था और इन्हें बहुत पसंद है ये गाना। और एक श्रोता को यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे जो हमारी लिस्ट में शामिल है, ये गाना बेहद पसंद है। और एक श्रोता को सफर फिल्म का गीत है जिंदगी का सफर, ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, बहुत पसंद आता है। वहीं श्रोताओं को बहुत सारे गीत पसंद आए हैं, किसी को महबूब की मेहंदी फिल्म का टाइटल गीत बहुत पसंद है और किसी श्रोता को दिल एक मंदिर का टाइटल गीत पसंद है। वहीं श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों का उत्तर हमने दे दिया है फिल्म बरसात और सवाल के उत्तर यानी शैलेन्द्र। अरे हमने कोई प्रश्न पत्र थोड़ी रखा, ये तो हमारे कार्यक्रम के सवाल है जो हम सभी पूछते हैं अलग अलग तरीके से। कभी पूछा जाता है कि इस फिल्म का नायक कौन है, कभी पूछा जाता है नायिका कौन है, इस फिल्म में क्या था, आपने इस फिल्म को क्या देखा। तो हमारा सवाल भी इसी तरह से होता है कि आपकी पसंद का कोई शीर्षक गीत हो तो बताइए, या हमारी फिल्मी दुनिया में पहला शीर्षक गीत कब लिखा गया। तो इस तरह से ये सवाल जवाब ही इस कार्यक्रम को, इस सफर को अच्छा बनाते हैं, ऐसा हम मानते हैं और यकीनन आप भी मानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का शीर्षक गीत, रचनाकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: कभी हमने नहीं

की और जान हमें पर दोगी, तुम जान हो दो आलम की और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

है दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था

जी, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुहाना सफर में सबसे शुरू हुआ नियमित सुनता हूँ। इसमें बार बार वही घिसे पीटे गीत और विषय रिपीट हो रहे हैं। 70-80 के दशक गीत बिल्कुल नकार दिया। वही सुनकर बोरियत लगती है, जिसमें रहस्य शिक्षा प्रेरणा हो, वर्तमान जीवन को लाभान्वित करे। आपको क्या आज के गीत भी पसंद नहीं आए? बताइएगा हमें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसे गीत बजाए जाएं जो आपको अच्छे लगते हैं और कार्यक्रम में रोचकता लेकर आए, है ना। आज के गीत आपको कैसे लगे इसके बारे में बताइएगा। हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से न मिलती हो, लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा बहुत ही सकारात्मक होता है कि हमारे श्रोताओं का हम उद्घोषक कितना अच्छा मनोरंजन कर सकते हैं। वही कोशिश हमेशा यानी हर बार होती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जब तक खुद को प्यार का सच्चा मतलब न पता हो, तो प्यार महबूब महबूबा मौसम झरना पानी पहाड़ फूल सावन ये सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन जब सच्चा प्यार होता है तो इन शब्दों में पूरा जीवन दर्शन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सुरीला है, मैं ट्रेन का सफर कर रही हूं, ये सफर और साथ में विविध भारती का साथ सफर और भी सुरीला हो गया है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, बादल भी लुकाछिपी खेल रहे हैं, बहुत सुंदर। आप कार्यक्रम भी सुन रही हैं और प्रकृति को भी महसूस कर रही हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का सागर जब आंखों में उमड़ता है तो दिल गहरे एहसास से लबालब हो जाता है, और तब यहाँ हृदय की भाव विवल अवस्था बन जाती है, जहाँ प्रियतम प्रेम में रस की अनुभूति को गहराई से महसूस करने लगता है और उनके आपस में संवाद शब्दों से नहीं होते, क्योंकि इस परिस्थिति में शब्द मौन हो जाते हैं। आंखों आंखों में जो संवाद होता है उसकी अलग भाषा होती है और किसी भी व्याकरण की सीमा से परिभाषा होती है। न कोई अल्प विराम न पूर्ण विराम, बस आंखें बोला करती हैं और आंखें ही सुना करती हैं। क्या बात है, बहुत खूब। यहाँ प्रेम की अवस्था दिव्य रोशनी के साथ उनके प्रेम को एक अलौकिक आनंद से परिपूर्ण कर दिया करती है।

हैं। यहाँ एक गीत की पंक्तियां साझा कर रहा हूँ। होठ झुके जब होठों पर सांस उलझी हो सांसों में, दो जुड़वा होठों की बात कहो इन आंखों में, मेरी जा मुझे जा न कहो। अरे वाह, फिल्म अनुभव का गीत आपने लिखा है और बहुत ही सुंदर आपने अपनी बात अपनी इबारत लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और महबूब की मेहंदी हाथों में लगा लेते हैं। आवाजें लता मंगेशकर, हेमलता और साथियों की, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बोल।

जी, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आपके द्वारा प्रस्तुत की गई इबारत और गीतों में प्यार ही प्यार से लबालब है और झलक रहा है। मेरी माता रानी से तहे दिल से प्रार्थना है कि सभी की झोली और जीवन में सच्चा प्यार बढ़े, ये मेरी दुआ है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत आपकी मधुर उत्स्फूर्त पेश

और सभी शीर्षक गीतों को हम शीर्षक दे रहे हैं परिपूर्ति। वाह क्या बात है, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई एक गीत नहीं अपितु विषय के अनुसार विभिन्न प्रकार के गीत हमें प्रिय हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तुमसे अच्छा कौन है, बल्कि विविध भारती से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर अपने पूरी रफ्तार से मुकाम की ओर है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं और उन सभी श्रोताओं से हम थोड़ा सा मुआफी मांगते हैं कि उनकी जो पसंद है उन्होंने लगातार, बहुत सारे श्रोताओं ने अपने शीर्षक गीतों की पसंद हम तक लिखी है, लेकिन कार्यक्रम में समय का अभाव है, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम उन बातों को शामिल करें। बहरहाल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, अंतिम पेशकश ये है।

ये आवाजें किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था यादों की बारात। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।

जी हाँ, हमारे आंगन में भी इसी तरह हम नाचेंगे, गाएंगे और नए सुरीले सफर पर फिर निकल पड़ेंगे किसी एक दिन और, है ना? तो तब तक के लिए, यानी उस नए सुरीले सफर में चलने तक के लिए, मंदाकिनी जोशी को दे दे इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघुरूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 37वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम, ये शब्द और इस गीत को व्यापक रूप से लोगों के सामने लाने का, या यूं कह लें सबसे पहले जन जन तक पहुंचाने का श्रेय श्री अरविंद घोष को ही दिया जाना चाहिए। बंकिम चंद्र जी के साहित्य और वंदे मातरम में निहित दर्शन का, राष्ट्रवाद का प्रचार श्री अरविंद ने वंदे मातरम इस अखबार के माध्यम से बहुत असरदार तरीके से किया। वंदे मातरम के लिए लिखते हुए श्री अरविंद की साहित्य प्रतिभा कुछ अधिक ही जागृत हुई। वंदे मातरम पत्र के संपादक रहते हुए श्री अरविंद पर मुकदमा दायर हुआ, परंतु कागजों में आधिकारिक रूप से संपादक के तौर पर उनका नाम नहीं था, इसलिए न्यायालय में यह सिद्ध नहीं हो सका कि वंदे मातरम के संपादक वही हैं। उस मुकदमे के कारण श्री अरविंद को देश भर में सब जानने लगे और वंदे मातरम पत्र की बिक्री और भी बढ़ गई।
1: अगस्त 1907 के वंदे मातरम के अंक में उन्होंने नेशनल कॉलेज के छात्रों के सामने दिया गया अपना भाषण लेख के रूप में प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने कहा था,
2: हमारी मातृभूमि के इतिहास में आज ऐसा समय आ चुका है कि उसकी सेवा के सिवा अन्य सभी कुछ गौण हो जाता है और सभी की शक्तियों का उस एक ही जगह केंद्रित होना आवश्यक हो जाता है। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो उसी के लिए करें। अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां मातृभूमि की सेवा के लिए खर्च करें। केवल उसी के लिए आप धनार्जन करें। आपकी महानता का उपयोग अंततः मातृभूमि के लिए ही होना चाहिए, इतना कि उससे देश बड़ा हो जाए, इतना बड़ा कि पूरे संसार के राष्ट्रों में उसका सिर सबसे ऊंचा रहे। प्राचीन काल में जैसे अन्य सभी देश मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर ही देखते थे, वही जगह आपको उसे फिर से दिलानी होगी।
1: वंदे मातरम के लिए लिखा गया बहिष्कार की नैतिकता, ये लेख सरकार ने जब्त कर लिया और अलीपुर मुकदमे में सबूत के तौर पर पेश किया था। उस लेख में श्री अरविंद ने लिखा था,
2: राजनीतिक नैतिकता में न्याय और सात्विकता का स्थान है, ये सच है, परंतु वो नैतिकता एक योद्धा की नैतिकता होती है, धर्मगुरु की नहीं। अकारण किया गया आक्रमण अन्यायपूर्ण साबित होता है, दुष्ट हेतु से की गई उन्मत्त हिंसा भी निंदनीय है, लेकिन कोई तकनीकी नियम सभी कृतियों पर एक साथ लागू करना और उन्हें आपत्तिजनक कहना दर्शन का उपहास है, या उस दर्शन के किसी एक वाक्य की चौखट में संपूर्ण मानव जीवन को ठूंसने का प्रयास भी निंदनीय ही है।
1: उस समय भी वंदे मातरम इस समाचार पत्र के संपादक के रूप में श्री अरविंद नहीं बल्कि विपिन चंद्र पाल का ही नाम था। वंदे मातरम में लेखन के लिए संपादक के रूप में नाम वाले विपिन चंद्र पाल पर चल रहे मुकदमे का फैसला आया और उन्हें 6 महीने कारावास की सजा हुई। वो दिन था 26 अगस्त 1907। न्यायालय के बाहर हजारों नागरिक खड़े थे। भीड़ को विपिन चंद्र पाल के दर्शन हुए और सारी भीड़ वंदे मातरम का जय जयकार करने लगी।
0: वंदे मातरम के शब्दों का उच्चारण करते हुए लाठी चार्ज को सहजता से झेलने की तैयारी युवाओं में थी।

परंतु आज कुछ अलग ही हुआ। निहत्थे लोगों पर बेतहाशा लाठी चार्ज करने वाले उस गोरे सार्जेंट पर भीड़ में से एक लड़का दौड़ कर गया और पल भर में उस लड़के ने उसे एक जोरदार घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया। आज तक सिर्फ जनता को मारने की आदत वाले उस गोरे सिपाही के लिए मार खाने का ऐसा अनुभव नया ही था। उस नन्हे लड़के को वहीं पकड़ लिया गया और 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। 15 साल के उस लड़के को सड़क पर लाया गया। सरेआम चौराहे पर उसकी नंगी पीठ पर चाबुक के कोड़े बरसने लगे। अत्यधिक वेदना होने पर भी उसके मुंह से

0: आज तक सिर्फ जनता को मारने की आदत वाले उस गोरे सिपाही के लिए मार खाने का ऐसा अनुभव नया ही था। उस नन्हे लड़के को वहीं पकड़ लिया गया और 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। 15 साल के उस लड़के को सड़क पर लाया गया। सरेआम चौराहे पर उसकी नंगी पीठ पर चाबुक के कोड़े बरसने लगे। अत्यधिक वेदना होने पर भी उसके मुंह से चीखें या दर्द की कराहें नहीं निकल रही थीं, बल्कि हर कोड़े के साथ उस लड़के के मुंह से केवल यही शब्द निकल रहे थे, वंदे मातरम। फिर दूसरा कोड़ा, फिर वंदे मातरम।
1: आसपास की भीड़ क्रोधित हो गई थी। पीठ लहूलुहान हुआ वो लड़का अंततः बेहोश हो गया, परंतु होठ वंदे मातरम कहने के लिए हिलते ही रहे। उस लड़के का नाम था सुशील कुमार सेन। ये खबर पूरे कलकत्ता में फैल गई। सुशील कुमार के असामान्य धैर्य के सम्मान में 28 अगस्त को सभी महाविद्यालय बंद रखे गए। वरिष्ठ नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने सुशील कुमार सेन को स्वर्ण पदक प्रदान किया। उस दिन कलकत्ता में लोग यही गीत गा रहे थे।

हे माँ, वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए प्राणों का बलिदान करने में हमें जरा भी दुख नहीं होगा। क्या कोई पुलिस की लाठी का सामना करते हुए अपनी माँ को भूल जाएगा? हम सब इस प्रिय माता के ही पुत्र हैं।

आगे 7 वर्ष बाद 1915 में क्रांतिकारियों की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए सुशील चंद्र ने वंदे मातरम कहते हुए ही मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये सारा प्रभाव था वंदे मातरम शब्दों का। वंदे मातरम इस

जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम, एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 37वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया।

0: किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचे

0: परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
1: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनकी आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ

0: पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित जीएसपी ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित यह प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

0: chik chik chik cha cha che chik chik chik cha cha che chik chik chik cha cha che chik chik chik cha sach ho sapne tere
1: फिल्म काला बाजार का गीत था ये, आवाज आशा भोंसले की थी, शब्दकार शैलेंद्र थे और धुन सचिन देव बर्मन की थी। ये आवाज है लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। श्रोताओं, इससे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गर्लफ्रेंड का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म का नाम है चांद मेरे आजा, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार आई एस कपूर हैं और संगीत चित्रगुप्त का है।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था चांद मेरे आजा। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम की अगली पेशकश इकबाल कुरैशी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म बिंदिया।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, रोशन का संगीत, प्रेम धवन की रचना, आवाज आशा भोसले की, और फिल्म का नाम वल्लाह क्या बात है।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में फिल्म वल्लाह क्या बात है का ये गीत। और इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब हो अपनों का साथ तो मजबूत रहते हैं हाथ, जीवन की हर कठिन राह आसान लगने लगती है जब परिवार, मित्र और शुभ चिंतकों का साथ मिलता है। अपने केवल सुख के साथी नहीं होते, बल्कि कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा संबल बनते हैं। उनका विश्वास, स्नेह और प्रोत्साहन हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब मन निराश होता है, तब अपनों का एक भरोसेमंद हाथ हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में आत्मविश्वास का संचार करता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से सजोकर रखना चाहिए, क्योंकि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए देखें आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे अपनी बातें करने वाली है। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली।
1: हाँ जी, हेलो सहेली से बोल रहे हैं। मैं नीतू बोल रही हूँ, जोधपुर से मैडम।
0: अच्छा, आप जोधपुर से बोल रहे हैं, यानी कि राजस्थान से, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: आपने बताया जोधपुर से रहती हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, पहले तो ये बताइए हमें।
1: मैम, जोधपुर का तो मिर्ची वड़ा बहुत फेमस है।
0: मिर्ची वड़ा यानी बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत पसंद है।
1: और मैडम, बारिश के मौसम में आप खाओगे ना, जब वहाँ पे खड़े खड़े, तो आप सोचोगे एक नहीं मैं चार खा लूं। हमारे
0: ये तो होता है, ये तो होता है। तो और ये तो चलिए खाने की चीज हो गई, वहाँ पे देखने लायक कौन सी चीज है?
1: मैम आप आइए, मंडोर उद्यान देखिए, यहाँ का हमारे
0: अच्छा
1: पैलेस देखिए, उम्मेद भवन जिसको बोलते हैं।
0: अच्छा हाँ, उम्मीद भवन, बहुत सुना है इसके बारे में।
1: बहुत से सेलिब्रिटीज की यहाँ पे शादियाँ ऑर्गेनाइज होती है।
0: तब तो आपके जोधपुर में खूब चहल पहल होती रहती होगी सेलिब्रिटीज की, तो अच्छा लगता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा नया एयरपोर्ट बनवाया गया है, रिनोवेशन हुआ है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो यानी आने वाली ऐसी जगह है जिसको देखना चाहिए जाके जरूर, है ना?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में मैम मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, भाई है, भाभी है और मेरे दो भतीजियां हैं।
0: अरे वाह, तब तो भतीजियों के साथ खूब मस्ती चलती होगी, है ना?
1: बिल्कुल, उनका नाम ले।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: एक बड़ी वाली है हर्षिता और छोटी वाली है पुलकिता।
0: अरे
1: पुलकिता का आज 7th मंथ का बर्थडे है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ छोटी सी पुलकिता को, बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, हर्षिता का भी और पुलकिता का भी। बहुत
1: दादा ने नाम रखे हैं, हर्षिता नाम रखा था।
0: हाँ जी,
1: तब सेकेंड हुई है।
0: अच्छा,
1: बोले पुलकिता रखेंगे
0: वही मतलब वही है, हर्ष उतरा पुलकित हो ना। अच्छा, बहुत अच्छा नाम रखा है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, ये बताइए मुझे, आपके शौक क्या है?
1: मैं तो मैं घर का काम करती हूँ।
0: घर के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक शौक होता है ना कि हम ये करें, इसमें हमें बहुत मन लगता है करने में, वो कौन सा काम है? वो डांस भी हो सकता है।
1: जॉब करती हूँ।
0: अच्छा, आप जॉब करती हैं? अरे क्या बात है, आप सरकारी नौकरी में?
1: नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो सरकारी नौकरी में भी हमारी कुछ अपने जो शौक होते हैं, जैसे कोई डांस किसी को पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी मतलब अलग अलग चीजें होती है, किसी को खेल पसंद होता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, तो आपको क्या पसंद है?
1: मैम गाना तो मेरे को देखो इतना आता नहीं, मैं रेडियो जरूर सुनती हूँ, साथ साथ वैसे गा लेते हैं, पर वो वाली सिंगिंग नहीं।
0: अच्छा,
1: लेकिन डांस का है तो वो शौक होता है, कभी कभी कर लेते हैं घर पे
0: जब थक के आते हैं आप, है ना, जॉब से।
1: बिल्कुल
0: ये अच्छी चीज है, ये इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो हमें थोड़ा तरोताजा कर देती हैं थोड़ी देर के लिए,
1: बिल्कुल,
0: है ना? हम जो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थक के आते हैं वहां

0: पे जो जॉब की परेशानियां होती हैं, वो सब चीजों से हम जब जूझ के आते हैं ना, तो एक कुछ थोड़े से जो पल होते हैं ना, वो हमें ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल हम उसमें अपने मन का काम करें, है ना।
1: बिल्कुल मैडम जी,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: बारिश का मौसम है, मॉनसून सीजन है, तो मेघा रे मेघा रे।
0: अरे वाह, अच्छा गाना सुनाया आपने, बहुत बढ़िया गाना है। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं केकाता शेख बोल रही हूँ, गुजरात सूरत से बात कर रही हूँ मैं
0: अच्छा, सूरत से बोल रही हैं आप।
1: जी।
0: तो बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है? पहले तो सूरत के बारे में बताइए कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज है जो हम देखने आ सकते हैं वहाँ आपके पास।
1: सूरत में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं,
0: अरे
1: ड्रेस
0: वाह,
1: बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं,
0: अच्छा, यहाँ वहाँ के कपड़े मशहूर हैं बहुत ज्यादा, है ना?
1: वहां के कपड़े बहुत मशहूर है,
0: अच्छा,
1: सब दूर दूर से हमारे एरिया में कपड़े खरीदने आते हैं।
0: अरे क्या बात बताई आपने, तो बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है।
1: वो जो सलमा मैडम बेचते हैं ना, नए नए आए, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत अच्छी
1: उनकी
0: बात है।
1: फिर नेहा जी की, फिर पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन सबकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस सब तक पहुंचा देगा
0: बिल्कुल, आप पहुंच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा?
1: बेटा। मैं तो खाने में बिरयानी है, ऐसी चीजें खा लेती हूँ, बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा। खिचड़ा हमारे में बहुत बनता है।
0: अच्छा, तो चलिए और बताइए, आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है,
0: अरे वाह, तो सब लोग साथ
1: मेरी
0: में
1: ऐसे
0: रहते
1: शादी
0: हैं?
1: जी, मेरी ऐसे शादी नहीं है, मेरी
0: हाँ,
1: दीदी की हो गई है।
0: अच्छा, आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: हेलो सहेली में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडी गार्ड का, तेरी
0: अच्छा, आपको बॉडी गार्ड का गाना
1: मेरी
0: सुनना
1: कहानी है मुश्किल।
0: है? अच्छा ठीक है, तो आपके पसंद का हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से बोल रही हैं ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे ही बेटी का नाम भी आरती ही है और वो आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया से गाना आया तो बहुत मजा आता है उसको। अच्छा। इसके लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा, तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी बेटी मन बुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती। अच्छा, और थोड़ी मन बुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी अभी इसकी बर्थडे हुई।

0: अरे वाह, तो उसको बहुत
1: जी
0: बहुत
1: दस
0: ढेर
1: तारीख
0: सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और
1: हाँ
0: बताइए, अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ? अब जब समय बिताती हैं तो किस तरीके से दिनचर्या रहती है?
1: मैडम, उसको तो क्या है कि नख जो है ना वो रंगोना शायद भी उखड़ जाए ना तो नख पॉलिश रंगवा लेती। चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है
0: अच्छा, तो
1: और
0: अच्छा लगता है उसे,
1: पावे छह
0: तैयार होना अच्छा
1: पायस।
0: लगता है?
1: हाँ उसको तैयार होना, कपड़ा 2 टाइम नहाना खाना सब
0: अरे
1: जो
0: वाह,
1: मांगे वो देना,
0: बहुत बहुत अच्छी
1: उसकी
0: बात
1: ही
0: है।
1: शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत
1: है।
0: अच्छी चीज है। अपने अपने आप से प्यार करना है ना, अपने आप से प्यार
1: हाँ
0: करना सबसे
1: हाँ
0: पहले जरूरी होता है। और बहुत अच्छी चीज
1: हाँ
0: है, वो
1: क्या
0: सजती
1: क्या
0: है, संवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत जरूरी है ये।
1: है कि मैम, मेरा एक लड़का है बड़ा और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई, वो दूर रहता है, और अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका
0: अच्छा,
1: आजवा रोड पे,
0: बहुत बहुत
1: उससे
0: आपको
1: छोटी
0: बधाइयाँ।
1: थी।
0: और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
1: नहीं ये सब नहीं, उसको तो क्या है कि वो गाना रेडिया वो सब
0: अच्छा
1: बहुत पहले से सुनती रहती है, और सलमान खान बहुत अच्छा लगता
0: हाँ,
1: है तो तेरे
0: अच्छा
1: नाम का गीत सुनती है, वो
0: अरे वाह,
1: रोती है ना तो तेरे नाम का गीत सुना देते ना तो चुप हो जाती।
0: अच्छा, यानी उसे संगीत पसंद है। संगीत पता है आपको, एक
1: हाँ
0: बहुत अच्छी
1: वो
0: थेरेपी भी है।
1: हाँ, और आपका जो प्रोग्राम आता है ना वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है, कोई खाना बनाना सीख लेते नए, कुछ बातें अच्छी सुनते तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाती।
0: बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत, ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए, आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए।
1: हाँ
0: अब बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?
1: आरती को पसंद है।

0: से बोल रही हैं?
1: जी, मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे
1: सकीना
0: वाह,
1: है मेरा नाम, सकीना जी।
0: अच्छा सकीना जी बोल रही हैं और बारामूला
1: जी
0: कश्मीर से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए अब
1: मैं
0: अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है कश्मीर का पश्मीना एकदम नाम जुड़ा हुआ है कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी मैम
0: जी, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी, मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े?
1: नहीं, अभी छोटे हैं
0: छोटे हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना
1: जी मैम।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं, मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में जब कोई काम सब निपट जाता है घर का?
1: जब खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ। और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते हैं ना, हम घर का काम खत्म करके बस यही
0: हाँ,
1: करते हैं।
0: नहीं क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा, आप इसे पश्मीना का क्या मतलब शॉल बनाती हैं कि कोई
1: जी
0: ऊनी
1: मैम,
0: कपड़े
1: शाल बनाते हैं।
0: शॉल बनाती हैं? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहां तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा, पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब
1: जी जी मैम,
0: होता है?
1: बहुत कस्में होते हैं पश्मीना की।
0: अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: जी, दो
0: अच्छा
1: तीन
0: अच्छा
1: कस्म के बनाते
0: अच्छा
1: हैं।
0: तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं देती हैं कि इसको?
1: नहीं, हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज है, आप ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो, है ना,
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम।
0: बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसको आप अपने, जैसे कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद
1: जी
0: कर
1: जी
0: सकें,
1: मैम।
0: तो बहुत अच्छी चीज है आप जो कर रही हैं। घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनना
1: जी मैं दिलवाले फिल्म है ना,
0: है?
1: उसका का कोई भी गीत मैं सुनना चाहती हूँ।
0: दिल वाले फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दें आपको, है ना
1: जी जी मैम,
0: चलिए, आपसे बात
1: थैंक
0: करके बहुत अच्छा लगा हमें, तो सुनाते हैं आपको
1: यू
0: आपके
1: मैम।
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद छाटवी से बोल रहे हैं।
0: तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज है जो हम वहां पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है,
0: हाँ
1: रसगुल्ला भी है, यहाँ का मुर्शिदाबाद
0: हाँ
1: सिल्क भी विख्यात है,
0: अच्छा,
1: फेमस है, यहाँ का आम भी फेमस है,
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और
1: फेमस
0: सिल्क।
1: है।
0: बहुत बहुत, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते हैं? आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ हाँ जी, हम हाउस वाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना,
0: हाँ
1: उसी
0: हाँ
1: में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब
0: अच्छा,
1: हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलता है
0: हाँ
1: तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।
0: अरे वाह, आप लिखती भी हैं? आपको लिखने का शौक
1: हाँ,
0: है?
1: लिखती भी है। इस बार
0: अच्छा
1: भी हम भेजे,
0: अच्छा
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगाए लगी हुई है,
0: हाँ अरे
1: और
0: वाह,
1: मेरा घर में बहुत सारी चीजें है, जो पेड़ ओड़ है फूल का, उसमें रात को रहते हैं उन लोग को, हम दाना देते हैं
0: बहुत अच्छी बात
1: तीन
0: है।
1: टाइम सबको दाना देते हैं हम।
0: अच्छा, तो आप इस चीज को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियां लिखिए, पोयम लिखिए,
1: हाँ
0: कविताएं
1: हाँ
0: लिखिए,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना? और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का जू जू जू, जसोदा का नंदलाला, ब्रिज की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। जरा ध्यान से सुनिए, ये फोन आपके संदेशों को हम तक पहुँचाने के लिए मीठी सी धुन सुना रहा है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।
1: आओ सुंदर शहर बनाए, डगर डगर पर वृक्ष लगाए।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, एक मैसेज दिया आपने ना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, फालदाना का इंदौर से।
0: इंदौर से बोल रही हैं आप, हसीना मंसूरी? हाँ
1: जी जी,
0: बहुत अच्छा लगा। बताइए कि आपको क्या पसंद है, मुझे लग रहा है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी, है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है।
1: जी बातें बहुत अच्छे करते हैं मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक है, रेडियो चलता रहता दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुन रहे, कभी मिस नहीं करते मैडम।
0: अच्छा।
1: और रेडियो मतलब खाना खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
0: तो आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता तो उसमें लेटर भी शामिल किया करते थे मैडम, तो अगर वो लेटर जैसा अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग समीक्षा भी लिखते थे उसमें, रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग, तो कभी ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी, सोने भी सुहागा हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
1: सिलाई करती हूँ मैडम मैं अधिकतर, तो ज्यादातर तो, और घर में काम भी छुट्टी रहती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है,
0: ये तो बहुत जरूरी चीज है।
1: करना बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं?
1: ये गनी पैक का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है।
0: अच्छा, तो इसमें आप क्या मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप?
1: इसमें मशीन से रिपेयरिंग होता है, नहीं होता मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम।
0: अच्छा, आप हाथ से भी कर लेती हैं?
1: रफो होता है, हाँ इसमें रफो होता है मैडम।
0: अच्छा, तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है?
1: रेडियो सुनना अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको, आवाज से लग रहा मुझे आपकी?
1: गाना गाना अच्छा लगता है ना मैडम, आके बताती हूँ।
0: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
1: जी जी, फिल्म
0: तो...
1: का नाम है फूल और अंगार, और मेरी फरमाइश भी यही है, और गाने के बोलने, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। ये सुना दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सही, हम बड़ागांव जिले में ना चंचल ढाकर बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं
0: आपके
1: 10th क्लास पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, 10th में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
0: विज्ञान? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपके आपके शौक क्या है? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है, तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मुझको, मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बन जाऊं।
0: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनी सुनी सॉन्ग सुनना चाहते हैं सलमान खान का।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम बरथी पोस्ट कर रही हूँ, जिला चंदौली से इमरती यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आप आपको क्या करना पसंद है?
1: मुझे, मैं घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ मैम। रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनती हैं, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: सभी प्रोग्राम अच्छा लगता है, और खासकर हमें सखी सहेली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग बातें करते हैं और हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको बहुत अच्छी बात है, ये आपको सखी सहेली अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप, जैसे कि आप गाने सुनती हैं, तो आपको कैसे क्लासिकल गाने ज्यादा पसंद हैं या फिर आज के समय
1: जी
0: के?
1: नहीं, हर तरह के गीत पसंद है, नए हो पुराने हो, भक्ति हो या हिंदी हो, मुझे हर तरह की चीज पसंद है। और रेडियो सुनना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। रेडियो से जो हमें कहीं से
0: हाँ,
1: खुशी नहीं मिलती वो रेडियो से मिलती है।
0: ये तो सही बात है। अगर संगीत जो होता है ना, वो एक दूसरे से बांध देता है ना,
1: जी
0: और
1: मैम,
0: साथ ही हमारे सारी परेशानियों को थोड़ी समय के लिए सही लेकिन दूर कर देता है। और आप जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे संगीत पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम है जो रागों के ऊपर होते हैं, क्लासिकल
1: जी
0: संगीत
1: मैम,
0: के प्रोग्राम है, वो सब भी आप सुनती हैं?
1: जी मैं हर तरह के गीत पसंद है और गाते भी हैं थोड़ा सा रेडियो के साथ में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। गाना जब हम गाते हैं ना, तो सोचिए अपने
1: जी
0: अंदर के एकदम ऐसा लगता है ना कि हम अपने अंदर का भी जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे अंदर तनाव था, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं,
1: जी
0: रिलैक्स हो जाते हैं ना एकदम, ऐसा लगता है ना।
1: जी जी अच्छा लगता है।
0: तो आपको जो गाना सुनना है ना, वो आप गा के सुना दीजिए। बता दीजिए हमें।
1: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो वो टूट जाता है, वादा तो वो टूट जाता है।
0: बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते। आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मेरा नाम नाजमीन है। मैं गांव हरपाल से बोल रही हूँ, जिला सारण के पास से। मैं
0: तो आप बताइए, आप पढ़ती हैं या कुछ जॉब करती हैं या घर में रहती हैं, क्या करती हैं आप?
1: घर में ही रहती हूँ, घर का ही काम करती हूँ।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: जी,
0: और ये बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: हमारे घर में अम्मी है, अब्बू है, दो बहने हैं, भाई है, सब है हमारे घर में।
0: अच्छा, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके क्या शौक हैं?
1: मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: और गाने के बोल उठा ले जाऊंगा तुझे नई डोली में।
0: ओ ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही
1: जी, मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से।
0: हैं? अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करते हैं? आपको क्या करना पसंद है?
1: मैं घर में भी रहती हूँ और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बाकी का मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो जैसे कि पेंटिंग है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: और सबसे ज्यादा कुकिंग में है मुझे इंटरेस्ट। तो
0: अरे वाह, बहुत अच्छी
1: मुझे
0: बात है।
1: हाँ, तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है
0: कौन कौन से तरीके के खाना बना लेती हैं आप?
1: जी। मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ, और बाकी का हाँ, बाकी का ये है कि और भी चीजें मेरे पे आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली में सांभर वगैरह, ये सब
0: अरे वाह,
1: चीजें।
0: क्या बात कर रहे हैं आप! इतनी तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तब तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार हैं, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के
1: हाँ
0: अच्छी अच्छी
1: जी,
0: चीजें
1: कहते
0: खिलाती होंगी।
1: हैं ना, हाँ जी कहते हैं ना कि इंसान की जो पहली पसंद होती है ना, घर में जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना। अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस मैंने

0: बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह,
1: हाँ
0: तो मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह।
1: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, आप खाने तरह तरीके की बना लेती हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें बनाइए, और किसी दिन हमें भी आप बुलाइए ताकि हम भी आए और आपने जो बताई है चीजें उनका हम भी कुछ लुत्फ उठा सके क्योंकि
0: अरे जी
1: बहुत अच्छी
0: जी
1: चीज है, आपको तरह तरह की चीजें करनी आती है। तो बताइए मीनू जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: जी मैं दो कलिया मूवी का गाना सुनना पसंद करूंगी, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
1: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गीत है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर।

0: होते हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल न लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले, और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: सुन रहे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम गीतों भरी कहानी, बस थोड़ी ही देर के बाद।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा। वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
2: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पटती बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लौट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामेटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई, वो फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विजू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विजू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विजू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विजू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विजू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विजू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विजू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा, और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से बिज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर, मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली। उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विजू ने शादी में। विजू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विजू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी, मेरी भाभी।

0: विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पट्टी नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो विज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए विज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।
1: झूठा।

0: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था, फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहां काम जोरदार चल निकला, और उससे भी बड़ी बात उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि विज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो विज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल विज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी जरूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब विज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता

रहा हो कि विज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हों तो ज्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है।

दंगे के नौ ग्रह बलवान विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

भैया से बात की विज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर्क किए कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये। विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहां से करते? कहां से चले थे अज्जू भैया, कहां पहुंच गए? और कहां से चला था रिश्ता, कहां पहुंच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरथ को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए, खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा।

आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है।

प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह। कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है। अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो तो ऐसा

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण भी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक हैं सीए फोन विभाग सरगुजा।

0: ये साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़ केसर छतौली इंजानी बरपटिया पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर नवाडीह पोड़िपा पेंडारी सिंघरा भरदा गौरा मदननगर गणेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये अखोरा कुंदीकला जामदोहर सिधवा गोपालपुर मुरका अतौरी ठरकी चिनिया कनकपुर डकिया शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा उदयपुर सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये अस्कला दोरना जरहाडी लक्ष्मणगढ़ सुखरी भंडार महेशपुर जगन्नाथपुर बासाझाल आमापानी कुड़केल घोघरा मानपुर बरिमा कंडराजा कुदारीडी डांड केसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी दुलदुला और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बोडो कछार श्री टोली करम टोली साजा पानी गट्टी बुड़ा करडेगा ढोड़ाडी खड़ा माचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 106 है। ये महाराजगंज बंगरसूता कुड़ेकेला बोजिया सिंघीछा बनहर लोटान कंचीरा पोटिया तेंदुमार सीलिंगपारा सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये मदनपुर केरा कछार पसर खेत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के केंदई एतमानगर और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई कोदवारी भोड़ू पानी

0: कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा, मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 40 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, नागदरहा, पंडरीपानी, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल की कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये तालदादर, फुरफुंदी, झालपानी, अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडा पाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

प्रायोजित कार्यक्रम अमर हाथी अमर गोट अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं अब आनंद लेते हैं चित्रपट संगीत का।

कार्यक्रम की शुरुआत में यही श्रोताओं सुनते हैं उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में आनंद बख्शी की रचना, उत्तम सिंह का संगीत है और फिल्म है दिल तो पागल है।

कार्यक्रम में आयुष होता हूँ। अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और साथियों के स्वर में मिथुन का लिखा और संगीतबद्ध किया गया ये गीत। फिल्म है सनम रे।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनने से पहले श्रोताओं, एक सूचना हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। ये सूचना है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु पुनः पंजीयन, और इसके लिए तारीख है 17 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक। श्रोताओं, विवरण इस प्रकार है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नेवरा, जिला बिलासपुर में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा, और शासकीय आईटीआई कोटा में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा और स्टेनोग्राफर हिंदी, साथ ही द्विवर्षीय व्यवसाय फीटर और इलेक्ट्रीशियन के रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 17 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट cgitiadmission.nic.in पर पंजीयन करके आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व से पंजीकृत हैं और अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके कंसेंट प्रदान करें और निर्धारित शुल्क जमा करें। साथ ही आवश्यकता होने पर चॉइस फिलिंग में संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित संस्था से या फिर उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम तिथि है श्रोताओं 24 जुलाई 2026 आईटीआई के रिक्त सीटों पर पंजीयन हेतु और एडमिशन हेतु।

और अब चित्रपट संगीत में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में आनंद बख्शी की रचना। संगीत विजू शाह का है और फिल्म है मोहरा।

आई श्रोताओं, अब सुनते हैं सुनिधि चौहान और साथियों के स्वर में सईद कादरी की रचना। अनु मलिक का संगीत है। इस गीत को हमने लिया है फिल्म फरेब से।

चित्रपट संगीत का आप आनंद ले रहे हैं श्रोताओं, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। चित्रपट के समापन में आई सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना शिव हरि का संगीत है, सुरेश वाडेकर अनुपमा देश पांडे की आवाजें हैं और फिल्म है चांदनी।

इसी गीत के साथ ही श्रोता हूँ, चित्रपट संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। शाम के 5:35 हुए हैं, समय है युवा साथियों के कार्यक्रम युवा जगत का।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवा जगत और मैं हूं आपका साथी अभिजीत सिंह। दोस्तों, मैं आपको एक चीज सोचने कह रहा हूं। जरा सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाए और उसे अपनी बात कहने का अवसर ही ना मिले तो वह कैसा महसूस करेगा? अगर किसी गरीब को उसका हक ना मिले, किसी मेहनतकश को उसकी मेहनत का उचित मूल्य ना मिले, या किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना किसी गलती के सजा मिल जाए, तो क्या हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं? तो मुझे पता है, हमारा और आपका दोनों का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी न्याय की अपेक्षा रखते हैं। घर में भाई बहनों के बीच समान व्यवहार हो, विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, कार्यस्थल पर मेहनत के अनुसार सम्मान और अवसर मिले, सड़क पर यातायात के नियम सबके लिए समान हो, ये सभी न्याय के ही छोटे छोटे रूप हैं। यानी न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जहां न्याय होता है वहीं विश्वास जन्म लेता है, और जहां विश्वास होता है वहीं एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। इन्हीं विचारों के साथ आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की। एक ऐसा दिवस जो हमें याद दिलाता है कि न्याय केवल कानून की किताबों का विषय नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पूरी दुनिया में न्याय, मानव अधिकार, समानता और कानून के शासन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 17 जुलाई का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1998 में इटली के रोम शहर में रोम स्टैट्यूट को अपनाया गया था। इसी ऐतिहासिक समझौते के आधार पर आगे चलकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य मानवता के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे तक लाने का है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हमें संदेश देता है कि न्याय केवल अदालतों का विषय नहीं, बल्कि एक सभ्य, संवेदनशील और लोकतांत्रिक समाज की सबसे मजबूत नींव है। आइए हम यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सत्य, समानता और न्याय के मूल्यों को अपनाएंगे, दूसरों के अधिकारों को सम्मान देंगे, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे और एक ऐसे समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे जहां हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के न्याय मिल सके। दोस्तों, आज का क्रम भी आपको सुनवाएंगे, साथ ही आपको हमारे कार्यक्रम का आज की बात भी बताएंगे। पर उससे पहले वक्त हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम के पहले गीत का, जिसे गाया है आतिफ असलम ने, लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया विशाल शेखर ने। यह गाना है फिल्म टाइगर जिंदा है से।

0: दोस्तों, अब बारी है हमारे आज के क्रम खेल जगत की, जिसमें बात हुई है हॉकी के खिलाड़ियों से। तो लो जी, सुनिए ये भेंट वार्ता।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह आप सभी युवा साथियों का हमारे आज के युवा जगत कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का क्रम है खेल जगत, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय खेल के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हॉकी की। साथियों, जब भी खेल की बात होती है तो सबसे पहला नाम क्रिकेट का आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि हमारी विरासत का हिस्सा है। ध्यानचंद से मनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह से श्रीजेश तक का एक ऐतिहासिक सफर है। भारत ने कई ऐसे पल दिए हैं हॉकी के साथ जोड़ के हमें, जो आज भी कई लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज इस खास क्रम में हम बात करेंगे हॉकी के रोमांचक सफर, खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और उनके संघर्ष के बारे में। और इस खास बात में हमारे साथ हैं कुछ खास खिलाड़ी, जो अपने अनुभव और हॉकी की दुनिया के दिलचस्प किस्से हमारे साथ साझा करेंगे। दोस्तों, आइए चलिए हम जानते हैं हमारे युवा खिलाड़ियों से कि क्या रहे उनके एक्सपीरियंसेस, कैसे उन्होंने अपने गेम में नाम कमाया। तो सबसे पहले आप लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए।
2: सर, मेरा नाम मधु सिदार है और मैं छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से बिलोंग करती हूँ, और मुझे अभी खेलो इंडिया बहतराई बिलासपुर में 3 साल हो गए रहते हुए, और मैं 8 से 9 साल से हॉकी खेल रही हूँ।
1: और आप अपना बता दीजिए मुझे।
3: मेरा नाम अनिकेत कुजोर है, मैं जिला जसपुर का रहने वाला हूँ। मेरे को यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है और मैं 2023 से स्टार्ट किया हूँ खेलना।
1: तो आप 2023 से खेल रहे हैं, तो आप कैसे इस खेल की तरफ जुड़े, क्या रुझान रहा इस खेल की तरफ, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे?
3: सबसे पहले तो मेरे नाना जी

0: नर्स होता है जो इस हॉकी के बारे में बताते रहते थे, और वही गांव के बच्चे लोगों को देखे और इंटरेस्टेड बढ़ा तो उसे खेलना स्टार्ट।
1: मधु जी आप मुझे ये बताइए कि आप जब बाहर खेलने जाती हैं कहीं पे, तो आपको क्या लगता है कि कैसी चुनौतियां रहती हैं बाहर जब आप अपने टीम को अपने स्टेट को जब आप रिप्रेजेंट करती हैं तब?
2: सर अभी 2024 में मैं जोन नेशनल खेली थी जिसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं ऑल इंडिया में टॉप स्कोरर रही हूँ।
1: आप ऑल इंडिया टॉप स्कोरर रह चुकी हैं। जी जी बहुत बहुत बधाई आपको उस चीज के लिए।
2: थैंक यू सर।
1: और एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी स्किल्स क्या होती है मधु जी?
2: सबसे पहले तो एक प्लेयर को एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए, उसके बाद हार्ड वर्क करना चाहिए।
1: मधु जी एक खिलाड़ी के तौर पर आप जब बाहर रिप्रेजेंट करने जाती हैं अपने आप को, तो क्या क्या चुनौतियां आप देखती हैं बाहर एक खिलाड़ी के तौर पर?
2: अभी 2024 में मैं ओपन नेशनल खेली थी छत्तीसगढ़ टीम से, और छत्तीसगढ़ टीम की मैं कैप्टन रही थी, और उससे हमारा पहला मैच तेलंगाना से पड़ा था, हम पहला मैच जीत गए थे, और सेकंड मैच हमारा झारखंड से था जिसमें हम लोग हार गए थे। तो इससे ये सीख मिला कि अगर हम और थोड़ा मेहनत किए रहते तो शायद हम टीम क्वालिफाई कर गए।
1: अनिकेत जी आप युवा खिलाड़ी हैं, तो आप कैसे देखते हैं इन चुनौतियों को, हार जीत जो लगी रहती है उसको आप कैसे देख रहे हैं एक खिलाड़ी के तौर पर?
0: हम लोग सबसे पहले तो हॉकी गेम में हार जीत लगी रहती है, पर जीतने से बहुत खुशी होती है कि हम लोग जीत गए करके, और हारने से ये लगता है कि हम लोग हार गए, लेकिन हारने के बाद हम लोग को कुछ सीख मिलता है। अगर हम लोग हार गए हैं तो अगली बार अच्छा मेहनत करके उस टीम को वापस हराएं।
1: ये सोच काफी आपकी सकारात्मक लगी मेरे को कि हम मेहनत करके वापस उस टीम को हराएंगे। तो मैं सबसे पहले आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई और खेल दोनों एक साथ कैसे मैनेज करते हैं?
2: सर अभी मैं 10th क्लास में हूँ और पढ़ाई बहुत कम होती है क्योंकि हम ज्यादा खेल को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, पढ़ाई को बहुत कम, तो दोनों मैनेज हो जाता है, कर लेते हैं।
1: जी जी। तो आपका अधिकतर समय आपके ग्राउंड पे बीतता है, तो आप घर जाकर आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, मतलब कितना घंटा ही आप पढ़ाई को दे पाती हैं?
2: सर जैसे हमारा सुबह ग्राउंड रहता है, ग्राउंड के बाद फिर हम रूम जाते हैं, फिर जिम रहता है, उसके बाद फिर लंच करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर इवनिंग में थोड़ा बहुत बुक देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा शाम का सेशन रहता है ग्राउंड का, फिर नाइट में जो पढ़ाई होता है वो नाइट में होता है।
1: अनिकेत जी आप भी मेरे ख्याल से 10th में ही हैं, तो आपकी पढ़ाई कैसे मैनेज होती है?
0: हम लोग ग्राउंड तो ज्यादा समय ग्राउंड में ही बिताते हैं, पर हम लोग का स्कूल 12 बजे लगता है, तो सुबह का सेशन करने के बाद हम लोग स्कूल जाते हैं
1: जी।
0: अब सप्ताह में 2-3 बार जाते हैं, फिर जो पढ़ाई होता है उसी को मतलब रात में देखते।
1: तो जैसे अनिकेत जी आप हॉकी खेलते हैं, तो उसमें फिटनेस का काफी ज्यादा महत्व है क्योंकि आपको काफी देर तक दौड़ना भागना पड़ता है, तो वो फिटनेस बनाने के लिए आप क्या करते हैं?
0: डेली रोज रनिंग करते
1: हैं। रनिंग के अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस होती होंगी आपकी जो आप साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं से?
0: जिम
1: में जाते हैं आप? जी जी जी। मधु जी आप ही प्रैक्टिस करती हैं, तो आप क्या क्या प्रैक्टिस करती हैं खिलाड़ी के तौर पर?
2: सबसे पहले तो हम ग्राउंड आते हैं, फिर स्ट्रेचिंग वार्म अप करते हैं, उसके बाद फिर स्किल करते हैं और स्ट्रेंथ के लिए जिम करते हैं।
1: तो एक खिलाड़ी के तौर पर मैंने जहां तक देखा है कि खिलाड़ी अपने आप को खान पान में बहुत रोक रखते हैं, है ना, उनके खान पान में बहुत रुकावटें होती हैं, उनको काफी सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, तो ऐसा कौन सा आपका फेवरेट डिश है जो आप जनरली मैच जीतने के बाद खाना पसंद करती हैं, या आपको लगता है कि यार किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे तो इसको जरूर खाएंगे फिर से, ये हम खेल की वजह से नहीं खा पा रहे?
2: डाइट तो मैनेज प्लेयर है तो मैनेज तो करना पड़ेगा, हम ऐसे तो डाइट में रहते जो हमको जो जरूरी है वही चीज खाते हैं, और कभी मन किया तो खा लेते जैसे पिज्जा मोमोज वगैरह।
1: तो आप एक बार हमारे श्रोताओं के साथ अपना डाइट चार्ट जो है आपका वो बता सकती हैं, क्योंकि आपके डाइट चार्ट से काफी लोगों को वैसे भी फायदा होगा।
2: मॉर्निंग में हमारे नाश्ते में रहता है सर स्प्राउट और दूध ब्रेड अंडा दलिया उपमा, शेड्यूल बनता है हमारा वीकली।
1: जी जी जी। तो उस वीकली शेड्यूल के हिसाब से फिर आप पूरा अपना डाइट चार्ट रखती हैं। अनिकेत जी आप ऐसा कोई फेवरेट खाना होगा जो आप गेम की वजह से नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो जंक फूड होता होगा, तो मैच जीतने के बाद कभी आप खुशी के तौर पर उसको खाते हैं, या ऐसा कौन सा डाइट चार्ट है जो आप अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए फॉलो करते हैं?
0: सुबह मॉर्निंग में हम लोग को मिलता है नाश्ते में दूध अंडा ब्रेड दलिया उपमा, और 12 बजे लंच में खाना रोटी सब्जी दाल मिलते हैं, और नाइट में वही चिकन दाल सब्जी रोटी। और
1: अनिकेत जी आप बाहर मैचेस खेलने गए हैं, तो आपने कौन कौन से टूर्नामेंट खेले बाहर जाके, और कौन सा ऐसा एक मैच है जो आपके लिए बहुत यादगार हो जिसमें आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो, या आपकी टीम वहाँ जीत के आई हो, ऐसा कुछ जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें?
0: मतलब यहाँ जैसे खेलते ना वहाँ वैसे खेल नहीं पाते हैं, मतलब कुछ घबराहट होती है तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं।
1: जी जी।
0: और बाहर खेलने गए बैंगलोर चंडीगढ़ और यूपी।
1: जो आप ये जो बाहर खेल खेलने गए हैं वो कौन कौन से लेवल के खेल हैं?
0: कुछ ओपन नेशनल है, कुछ जोनल नेशनल है, और कुछ इंटर साई है।
1: जी मधु जी आप कुछ बताना चाहेंगी आपने कौन कौन से टूर्नामेंट खेले हैं, और उसमें से कौन सा मैच आपके लिए यादगार रहा है, पर्सनली भी हो सकता है और टीम के तौर पे भी हो सकता है?
2: यस, मेरा फर्स्ट नेशनल था जोन नेशनल जिसमें मेरा टॉप स्कोरर था, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था कि पूरे ऑल इंडिया में

0: टॉप स्कोरर रही। उसके बाद फिर इंटर जोन में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं वेस्ट जोन की टीम से खेल रही थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल लगा था, उसमें भी मैं टॉप स्कोरर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था, शायद अगर और मेहनत किए रहते तो गोल्ड लगने का चांस था।
1: अच्छा अच्छा, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारी हॉकी टीम ने अभी ओलंपिक्स में मेडल जीता था, तो आप वो मैच देखी होंगी, हम भी वो मैच बहुत दिल लगा के देख रहे थे, तो आपको कैसा लगा जब आपकी टीम मेडल जीती है, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पूरी दुनिया की नजर टिकी होती है?
0: हम मैच देखे थे और सेमीफाइनल मैच उनका बहुत अच्छा रहा। लास्ट मिनट पे अगर अभिषेक नैन जी अगर लास्ट मिनट पे गोल मार देते शायद इंडिया टीम फाइनल पहुंच सकती थी।
1: जी जी जी जी, वो मैच सबको याद होगा। तो आपके कौन से उस टीम में से कौन आपको सबसे फेवरेट, आपका सबसे पसंदीदा प्लेयर है जिसकी टेक्निक्स आपको बहुत अच्छी लगती होंगी?
0: अभिषेक नैन।
1: आपका अनिकेत जी, आपको कैसा लगा था वो मैच देखिए, आपकी क्या भावनाएं थी जब इंडिया ओलंपिक में मेडल जीता?
2: ऐसा लगा कि अगर वो लोग वहाँ खेल रहे हैं तो हम लोग भी कभी ना कभी जाएंगे।
1: जी जी, उस टीम से आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी है जो आपको बहुत प्रभावित करता है?
2: सुखजीत।
1: जी जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको भारतीय हॉकी टीम में अब कौन से बदलाव अच्छे लग रहे हैं देख के, क्योंकि पहले उन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी जितनी सुविधाएं हॉकी टीम को मिल रही हैं, तो वो बदलाव आपको किस तरह से प्रेरित करते?
2: ऐसा लगता है कि सर हम लोग भी कभी ना कभी तो जाएंगे इंडिया टीम में।
1: जी जी, तो मधु जी आपको कैसा लगता है कि आपका जो ये खेल है वो अब काफी अच्छे दौर से गुजर रहा है, अब उसकी काफी सारी सुविधाएं हो रही है, जैसा कि मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ कि काफी सुंदर कोर्ट हो गया है आपका, आप जिसमें खेलते हैं वो ग्राउंड बहुत सुंदर है, तो आपको कैसा लगा ये डेवलपमेंट देख के?
0: सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ अभी मैं, और मेरे में अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो मेरा एम है कि मैं इंडिया खेलूँ, इंडिया टीम पे रिप्रेजेंट करूँ, और मैं अच्छे से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं भी एक अच्छी प्लेयर बनूंगी और बनना चाहती हूँ, और मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करूँगी ताकि लोग मुझे देख के अपना आइडल माने और मेरी तरह खेलना चाहें।
1: जी जी, ये आपका सपना हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द साकार हो, आपको हम देखना भी चाहेंगे उस नीली जर्सी में इंडिया टीम की। और मधु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्रिकेट के मुकाबले थोड़ा बाकी खेलों को पहचान कम मिलती है, चाहे वो हॉकी हो, बैडमिंटन हो, आर्चरी हो, कोई भी गेम हो, तो आप अब जब कभी समर्थ हो जाएंगी, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगी, तो आप किस तौर पर अपने गेम को आगे बढ़ाएंगी और उसे प्रमोट करना चाहेंगी?
0: सर मैं ऐसी प्लेयर बनना चाहती हूँ कि लोगों को मुझे बोलना ना पड़े कि तुम हॉकी खेलो, लोग अब खुद से चाहे मेरे गाँव, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे जिले वाले खुद से चाहे कि मैं भी एक हॉकी प्लेयर बनूं, वो भी मधु सिदार जैसे।
1: क्या बात है, क्या बात है, आपका बहुत अच्छा सपना है। आप अनिकेत जी कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे जब आपको लगे कि क्रिकेट के अलावा भी लोग दूसरे गेम को महत्व दें और आप उस पोजीशन पर खड़े हों कि लोगों को लगे कि यार मुझे अनिकेत जैसा खेलना है, तो आप उस समय क्या लोगों के लिए संदेश देंगे?
2: मैं भी एक अच्छा प्लेयर बनना चाहता हूं जो मेरे को भी देखे, हमारे जिले के, हमारे गांव के, मेरे को देख के मेरे जैसा बनना चाहे।
1: अनिकेत जी, जैसा आप बताए थे मुझे स्टार्टिंग में कि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, और वहां पे आपको शुरू में हॉकी स्टिक नहीं थी आपके पास, आप लकड़ी से खेलते थे, तो अब जब आपके पास हॉकी स्टिक है, अब आपके पास जब सारी सुविधाएं हैं, तो आपको कैसा लगा इस गेम को खेलने में, जबकि सुविधाओं के अभाव में भी आप बहुत अच्छा खेल रहे थे?
2: सुविधा ठीक लगता है।
1: किसको आप सबसे ज्यादा अपना श्रेय देना चाहेंगे इस खेल में आगे बढ़ने के लिए?
2: सबसे पहले तो मेरे नाना जी से मिली थी, तो लोग लकड़ी से खेलना स्टार्ट किए थे, फिर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने हम लोग को और ट्रेनिंग दिया, और यहाँ ट्रायल हुआ तो यहीं लाए, तो हम लोग का सिलेक्शन हुआ, तो यहीं रहते हैं।
1: मधु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक खिलाड़ी के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और आप क्योंकि घर से बाहर रहती हैं तो आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना है आपके गेम को लेके, आपके कोच का सपोर्ट कितना है आपके गेम को लेके, थोड़ा ये आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी?
0: सर फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा है, और हम लोग चार बहन है, उसमें सबसे छोटी हूँ तो घर की लाडली बेटी हूँ, तो मुझे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और मेरे जसपुर जिले के जो कोच हैं वो भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वही मुझे हॉकी खेलना सिखाए, और आज मैं बिलासपुर यहाँ एकेडमी में हूँ, और यहाँ जो कोच हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना मेहनत करती हूँ।
1: जी जी, तो आप अपने कोच, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए काफी मेहनत कर रही हैं, जैसा कि मैं देख भी सका हूं, तो आप मुझे बताइए कि आपके जो कोच हैं तो उन्होंने आपको कैसे इस गेम के प्रति रुझान आपका बढ़वाया, खेल के प्रति डिसिप्लिन सिखाया, उनकी क्या एक हर कोच का एक तरीका होता है, उनका क्या तरीका रहा है आपके लिए एक खेल को सुधार करने में?
0: ग्राउंड पे जैसे कुछ गलती होते तो उस चीज को सर बार बार समझाते हैं, बार बार वही चीज रोज रोज डेली डेली, तो वो चीज फिर कुछ टाइम तक समझ नहीं आता, पर कुछ टाइम के बाद एक प्लेयर को समझ आ जाता है कि कोच क्या हमसे क्या चाहते हैं, फिर वो हम करते हैं।
1: अनिकेत जी, आप अपने कोच और फैमिली सपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनका सपोर्ट आपके लिए कैसा रहा है अब तक?
2: फैमिली तो सपोर्ट करते हैं, पर पढ़ाई में भी नहीं।

0: मतलब बोलते हैं कि अच्छा से पढ़ाई करो
1: जी
0: और
1: जी
0: खेल को भी मतलब दोनों बराबर करो, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे घर की परेशानी के कारण उतना सपोर्ट दे नहीं पाते हैं,
1: जी जी
0: पर जितना होता उतना करते हैं।
1: और आपके कोच जो रहे हैं या अभी जो हैं, वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं गेम के लिए?
0: कोच सर तो बहुत अच्छे हैं, जो मतलब सबसे पहले तो कोच को समझना बहुत जरूरी होता है। समझेंगे उसका मतलब जो सिखाते हैं उसको नहीं समझेंगे ना तो मतलब ना तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं आता है, उसी को समझना पड़ता है।
1: मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल है कि आप लोग क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं, है ना, आप लोग हमारे देश का भविष्य हैं, तो जो भी युवा खिलाड़ी और इस गेम से जुड़ना चाहते हैं, इस खेल को सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगी मधु जी?
2: सर अभी तो मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ, तो सिर्फ उनको बोल सकती हूँ कि आप हॉकी फील्ड पे आओ, और ज्यादा मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती।
1: तो अनिकेत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों को इस खेल के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए या इस खेल के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए?
0: मतलब इस खेल में अपना करियर बनाना है तो इस खेल में मतलब ईमानदारी से मेहनत करना पड़ता है। तो जो इस खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो खेलना चाहते हैं, तो अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करें।
1: तो साथियों, ये थे मधु जी और अनिकेत जी, जिनसे हमने जाना कि खिलाड़ी को कैसे कैसे डेवलपमेंट करनी चाहिए, एक खेल के प्रति कितना उनको समर्पित होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले हमारे श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे और मेरे श्रोताओं को दिया। तो आज का सफर यहीं तक था दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का क्रम पसंद आया होगा। अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त अभिजीत सिंह को, धन्यवाद, जय जोहार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेल जगत, विषय था हॉकी का खेल, जिसमें हमने बात की हॉकी के खिलाड़ियों से और जाना कि उनकी दिनचर्या और हॉकी का खेल कैसा होता है। साथियों, आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से अंतराल के बाद।
4: अब गरीबों की जाय बन गई है।
5: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम के एक और गीत का, जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने, लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है संदेश ने। ये गाना है फिल्म चमेली का।

दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनका जीवन केवल उनके देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसे लोग हमें यह सिखाते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि हौसला, धैर्य और सही सोच हो तो बदलाव अवश्य संभव है। दुनिया के ऐसे ही महान व्यक्तित्वों में से एक हैं नेल्सन मंडेला। वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि मानव अधिकारों के समर्थक, सामाजिक न्याय के पक्षधर, महान नेता, दूरदर्शी विचारक और क्षमा व मेल मिलाप के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में से यह साबित किया कि सच्चा नेतृत्व सत्ता से नहीं, बल्कि सेवा, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जन्म लेता है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मवेजो गाँव में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास रंग भेद की व्यवस्था को देखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, मतदान और अन्य कई अधिकारों से वंचित रखा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान करने का अधिकार कब मिला आपको पता है दोस्तों? उनको अधिकार मिला 1994 में। सोचिए कितना लेट मिला होगा उन्हें। इसी ऐतिहासिक चुनाव में नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बन गए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, अवसर और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। उनका प्रयास था कि ऐसे समाज बनाया जाए जहां किसी भी व्यक्ति के साथ उनके रंग या जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। नेल्सन मंडेला को नोबल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्होंने रंग भेद समाप्त करने और शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए दिया गया था। आज भी दुनिया भर में उनका नाम साहस, धैर्य, नेतृत्व और मानवता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिजीत सिंह को। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जोहार।

युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा जगत का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले जानते हैं आज के कुछ शेष कार्यक्रमों को। ग्राम सभा में संध्या 7:20 पर बेरा के गोट का विषय होगा होम हर्बल गार्डन। फोन इन कार्यक्रम में शाम 7:30 में कृषि महाविद्यालय कोरबा के अधिष्ठाता डॉक्टर राजेश कुमार साहू जानकारी देंगे खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण, साथ ही गीत मंडी मौसम की जानकारी और सामयिक सुझाव भी साझा करेंगे। आज रात 8 बजे सुगम संगीत में सुनिए गायिका मिताली सिंह के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमों को। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने हम लेकर आएंगे शाम 6:20 पर और संध्या 7 बजे से भी। कार्यक्रम रजनीगंधा की खुशबू बिखरेगी रात 8:15 पर। हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के साथ ही रात्रि 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण संपन्न होगा। श्रोताओं, ये थे आज के कुछ शेष कार्यक्रम। आइए जानते हैं कल के प्रमुख आकर्षणों को।

कल 18 जुलाई दिन शनिवार हमारा दैनिक प्रसारण आरंभ होगा प्रातः 5:51 पर। कार्यक्रम आराधना हम लेकर आएंगे 6:05 पर। खेती की बात में 6:30 पर साझा करेंगे राहेर के खेती में रोग नियंत्रण की जानकारी विषय। 6:45 पर सुनिए चिंतन। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह रायपुर से रिले करेंगे, समय होगा कल सुबह 8:30। रायपुर से ही अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम बातों बातों में, प्रसारण समय होगा सुबह 9 बजे से।

कल सुबह 10 बजे सुनिए छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अमराई। सदाबहार नगमों का आनंद लिया जा सकेगा सुबह 7:30 से और नए तराने हम लेकर आएंगे 10:30 पर। कल शाम 5 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, प्रायोजक होंगे CF वन विभाग सरगुजा। ईमेल करें गीत सुने, इसका आनंद ले सकेंगे कल 3 बार शाम 5:35 पर, संध्या 6:20 पर और संध्या 7 बजे से भी। कल शाम 7:20 पर ग्राम सभा में पर्यावरण संरक्षण की बातें होंगी। किसानवाड़ी में शाम 7:30 पर मुनगा लगाएं और लाभ पाएं, साथ ही पशुओं को बरसाती रोग से कैसे बचाएं, इन विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ गीत, मंडी मौसम की जानकारी और सामयिक सुझाव भी हम साझा करेंगे।

कार्यक्रम रजनीगंधा हम लेकर आएंगे रात 8:15 पर। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ पलों में रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री हा आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन ले सोनीपत के बीच चलैया भारत के पहली हाइड्रोजन ट्रेन ला करीन रवाना। सदन में आज विपक्षी दल कांग्रेस हा मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव करीन पेश। और स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूल में प्रवेश बर तीसरैया और आखिरी चरण 22 जुलाई ले शुरू। अब समाचार विस्तार ले।

0: मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव करें पेश। और स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के तहत निजी स्कूल में प्रवेश बर तीसरैया और आखिरी चरण 22 जुलाई ले शुरू। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन ले सोनीपत के बीच चलैया भारत के पहली हाइड्रोजन ट्रेन ला रवाना करीन। ए रेलगाड़ी के शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन ला अपनाए के दिशा में एक जरूरी कदम है। श्री मोदी 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे ला राष्ट्र ला समर्पित करीन। ए ग्रीन फील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के हिस्सा है। ए एक्सप्रेस वे ले दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा के समय 14 घंटा ले घट के लगभग 6 घंटा हो जाही। फिर दिल्ली अमृतसर के यात्रा के समय लगभग 8 घंटा ले घट के 4 घंटा हो जाही। ए बेरा मा प्रधानमंत्री मोदी कहीन की पाछू 12 बछर मा भारतीय रेलवे मा जरूरी बदलाव हुए है। श्री मोदी कहीन की देश के पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ जिंदला भारत के इतिहास मा एक विशेष जगह दिलाए है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवा दिन आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल महतारी वंदन योजना के आंकड़ा में हेरा फेरी के आरोप लगाई। उमन सवाल पूछीन कि कतना पात्र माई लोगिन मनला महतारी वंदन योजना के लाभ ए बछर जून तक मिले है, जिला इखर लाभ नहीं मिली ओखर वजह का है। एमा मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बतायन की शुरुआत में कुल 70,27,154 आवेदन मिली, जेमले पात्र 70,09,658 हितग्राही मल्ला पहली भुगतान करेगी। मंत्री बतायन कि ए बछर जून के स्थिति में 68,54,003 माई लॉगिन मल्ला महतारी वंदन योजना के लाभ देगी। 1,55,600 हितग्राही ऐसन है जेखर मौत होगी या EKYC नहीं हुई है। संगे संग आयकर दाता माई लॉगिन मन घलो ए योजना में शामिल नहीं है। मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस नेता उमेश पटेल मार्च 2024 ले महतारी वंदन योजना के पोर्टल नहीं खुले के आरोप लगाई। एक बाद मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट कांग्रेस विधायक मन नारेबाजी कर सदन ले बहिर्गमन कर दीन। उन्हें प्रश्नकाल में आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चाउर वितरण के मुद्दा उठीस। कांग्रेस विधायक श्रेष राज हरवंश राज्य में चाउर के जरूरत केंद्र और राज्य ले मिलने वाला आपूर्ति और अतिरिक्त चावल वितरण ला लेके सरकार ले सवाल करीन। जवाब में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेला बतायन की राज्य में अंत्योदय प्राथमिकता निराश्रित निशक्त जन और सामान्य राशन कार्ड धारक मल्ला चाउर दे जाते। उन्होंने कहीन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 57,25,000 राशन कार्ड केंद्र के योजना में और 25,76,000 राशन कार्ड राज्य योजना में शामिल है। मंत्री बतायन कि राज्य सरकार प्राथमिकता राशन कार्ड धारक मल्ला केंद्र के निर्धारित मात्रा ले ज्यादा चाउर घलो उपलब्ध करावत है। एकर तहत एक सदस्य वाला परिवार ला 10 किलो, दो सदस्य परिवार ला 20 किलो, 3 ले 5 सदस्य वाला परिवार ला 35 किलो और 5 ले ज्यादा सदस्य वाला परिवार ला प्रति सदस्य 7 किलो चाउर हर महीना दे जावत है। उन्हें कांग्रेस विधायक सुशांत शुक्ला राशन दुकान के जरिया ले पैकेट बंद मसाला बेचे के आरोप लगाई। एमा मंत्री दयाल दास बघेल जांच कराए के आश्वासन दिन। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के मुद्दा उठाइन। उमन बालोद जिला में सामूहिक विवाह उपहार के सामान की गुणवत्ता और खर्च ला लेके सरकार ले सवाल करीन। एकर जवाब देवत हुए महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बतायन कि बालोद जिला में पाछू 2 बछर में 7 सामूहिक विवाह आयोजित करेगी, जेमा लगभग 400 जोड़ा के बिहाव कराएगी। एमा 1,99,00,000 रुपया ले ज्यादा खर्चा करेगी। इसी सदन में आज विपक्षी दल कांग्रेस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करीन। ए अविश्वास प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष के सदस्य हिस्सा लेवत है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंता 136 बिंदु के आरोप पत्र सदन में प्रस्तुत करत हुए राज्य सरकार ऊपर आने आने आरोप लगाइन। समाचार लिखे जाए तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव में बहस चलत है। एकर पहली वित्त मंत्री ओपी चौधरी बछर 2023 बर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्थानीय निकाय ऊपर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में अवैया देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के वर्चुअल लोकार्पण करीन। एमा छत्तीसगढ़ के चांपा बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन घलो शामिल है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग

0: हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर। सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम ITE के तहत निजी स्कूल में प्रवेश बर तीसरैया और आखिरी चरण 22 जुलाई ले शुरू होही। 17 जुलाई ले 21 जुलाई तक जिला स्तर में विद्यालयवार ITE के खाली सीट के बारे में बताया जाही। 22 जुलाई ले 5 अगस्त तक पात्र पालक ITE पोर्टल के जरिया ले ऑनलाइन आवेदन और जरूरी संशोधन कर सकी। 10 अगस्त ले 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के जरिया ले चयनित लयिका मन के सूची जारी करे जाही और 17 अगस्त ले 25 अगस्त तक लॉटरी मां चयनित लयिका मन के संबंधित निजी स्कूल मां प्रवेश सुनिश्चित कर ले जाही। ए आखिरी चरण मां केवल ओमन ही पात्र लयिका आवेदन कर सकी जेला पहली के कोनो भी चरण मां प्रवेश नहीं मिले है। रायपुर मां नत्ती गांव में हुए तोड़फोड़ के घटना लले के कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल हा आज राज्यपाल ले मुलाकात कर ज्ञापन सौंपिन। प्रतिनिधि मंडल के संग प्रभावित गांव के लोगन मन के प्रतिनिधि घलो मौजूद रहिन। ज्ञापन मां कांग्रेस हा गांव नत्ती मामला के न्यायिक या उच्च स्तरीय एजेंसी ले निष्पक्ष जांच कराए, दोषी मन के खिलाफ कार्रवाई करे, प्रभावित परिवार मल्ला मुआवजा पुनर्वास दे और मामला के सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत मां कराए के मांग करे है। संगे संग टूटे घरला दोबारा बनाए के घलो मांग करेगी। एम्स रायपुर मां जल्दी ही अत्याधुनिक एडवांस बर्न यूनिट स्थापित करे जाही। एकर जानकारी विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल हादीन। भिलाई इस्पात संयंत्र और अडानी टोटल गैस लिमिटेड के बीच पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG के आपूर्ति पर समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करे गए है। इस समझौता के तहत संयंत्र और भिलाई टाउनशिप में स्वच्छ और सुरक्षित PNG के आपूर्ति करे जाही। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में एदरी कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ के जाने माने जल संरक्षण विशेषज्ञ विपिन दुबे ले गए भेंट वार्ता के प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 18 जुलाई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ के जम्मू आकाशवाणी केंद्र AK संग्रह रिले कर ही। अवपे से मौसम के हाल। राजधानी रायपुर के संघ प्रदेश के आने आने जिला मा काली रतिहा रुक रुक के वर्षा हुआ थे। रायपुर जिला के निचला बस्ती मन मा पानी भर गए है जेखर ले जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 1 जून ले 17 जुलाई तक राज्य मा औसतन 293.6 मिलीमीटर वर्षा हुए है जिन प्रदेश मा सामान्य वर्षा के 81% है। मौसम विभाग अवैया 2-3 दिन भर मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ मा कुछ एक जगह मा मध्यम ले तेज वर्षा होए के येलो अलर्ट जारी करे है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल के खाड़ी और ओखर ले लगे ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट में एक कम दबाव के क्षेत्र बने हुए है। बरसात के मौसम में सांप काटे की घटना ला देखत हुए स्वास्थ्य विभाग लोगन मन ले अंधविश्वास ले बचे और समय में अस्पताल पहुंचे के अपील करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घौ फेर। प्रधानमंत्री हा आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन ले सोनीपत के बीच चलैया भारत के पहली हाइड्रोजन ट्रेन ला करीन रवाना। सदन मा आज विपक्षी दल कांग्रेस हा मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव करीन पेश और स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम ITE के तहत निजी स्कूल मा प्रवेश बर तीसरैया और आखिरी चरण 22 जुलाई ले शुरू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
2: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:20 हुए हैं। आई श्रोताओं अब आनंद लेते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के पहले भाग का। शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसके लिए मेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।

छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि शीतल राजेश। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। बिलाईगढ़ से हमारे श्रोता हैं खीक राम देवांगन, रेणु, रजनी, प्रियंका देवांगन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। सौगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। पोड़ी भाठा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवा राम यदु, निखिल, वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। कोलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा चंदन। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्व और हिमांश चौहान। पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे। बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम दमन और अभिजोत। तिवरता डबरीपारा कोरबा जिला से हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहोदरी भाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी। दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य, मेघा मस्किन। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाखरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाखरे। आप हैं महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां ताज, तलअत, फरहत और रीत। साथ हैं नुजहत, साजिया, शाहीन, नाज और नाजिया नूरी नाज। चिरमिरी कुरासिया कालरी से हमारे श्रोता हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहुद्दीन, मोहम्मद इसफुद्दीन। आप हैं रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गब्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक। मुजफ्फरपुर से आर्यन राज, पीयूष, रोहित राज। नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म गुरु का ये गीत।

कार्यक्रम में अगले गीत के लिए मेल भेजा है तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। महाराष्ट्र श्रीरामपुर से हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर और शाहिद साजिद। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश विवान, सौरभ शाइना और मेंडी शर्मा। दुल्हापुर से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इजरार नरगिस खातून। इसी गीत को सुनना चाहा है गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद और शगुप्ता अंजुम। आप हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, माधुरी किरण। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया। निजामाबाद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवलीत और करमजीत। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गनवाकर, टुकटुक और प्रिंस। साथ हैं एकांश, सुमित, ध्वनि। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव रानी और गुरुवंत कौर मनु। जनकपुरी सराहनपुर से जॉन डिकास्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकास्ट्रो। तिलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा सुजाता पोहरकर। कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भरत राम पटोदी, जयंती, हेमंत, उमंग और मोक्ष पटोदी। करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद और सानवी देशमुख। दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम। गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरी बाई, दीपक, जय श्री देवांगन, ऋषभ, ऋचा देवांगन। कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय।

दिल्ली से सोनम सना और अदीबा, मलौट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू जाजोरिया, दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और उनके साथी, आप हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें मेल भेजा है श्रोताओं हमारे इन साथी ने। आप हैं धनगवा गौरेला पिंडरा मरवाही जिला से, सोहन सिंह ओटी, बसंती रूप सिंह, लक्ष्मी ओटी, यहीं से हैं रामायण सिंह मेश्राम, नागेश्वरी, चांदनी, सूरज और नंदनी। आप हैं महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रीतेश संघई, यवतमाल से राहुल मनवर, सलरा विशाल, चेतन, रोशनी मनवर, भाटापारा से

थे प्रेमलाल साहू, भूपेन्द्र साहू, दुष्यंत राघवन साहू, यवतमाल से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्नील, रक्षता, महाराष्ट्र मामूलवाड़ी से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकर, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन साह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन साह, मंगलाबेन साह, राजेंद्र, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष, विनीत, कृष्टि पटवा, आप हैं पंजाब बोर्डिंग खेड़ा से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, अराड़ नाथघाट से हमारे श्रोता हैं माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, भूपेश, दीपेश वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाकर, सरिता, प्रिंस एकांश, पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, ऊषा, अमित, हैप्पी राय, दतरंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोड़ और शादाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौंसलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक, लसुड़िया पाता जिला राजगढ़ से गोविंद्र वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, श्राव्या रामटेके, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजवती, काजल, पूर्वी, हैजल, राजेश, रेशमा साहू, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, नगर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेन्द्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका।

0: लगान फिल्म के इस गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने के पहले भाग को देते हैं यही विराम।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 होने को हैं। कुछ पलों में रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे विज्ञापन और हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इनमें चांपा, बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। विधानसभा में आज विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, चर्चा जारी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इनमें छत्तीसगढ़ के चांपा, बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। रायपुर के सरोना रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुरक्षित, दिव्यांगजन अनुकूल और स्थानीय संस्कृति के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरोना स्टेशन का आधुनिकीकरण यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने महतारी वंदन योजना के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल पूछा कि कितनी पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ इस वर्ष जून तक मिला है, जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला उसकी वजह क्या है। इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रारंभ में कुल 70,27,154 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से पात्र 70,09,658 ग्राहियों को प्रथम भुगतान किया गया। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष जून तक की स्थिति में 68,54

0: 1,003 महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया गया। 1,55,600 हितग्राही ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई या ई केवाईसी नहीं हुआ है। साथ ही आयकरदाता महिलाएं भी इस योजना में शामिल नहीं हैं। मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस नेता उमेश पटेल ने मार्च 2024 से महतारी वंदन योजना का पोर्टल नहीं खुलने का आरोप लगाया। इसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं प्रश्नकाल में आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल वितरण का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने राज्य में चावल की जरूरत, केंद्र और राज्य से मिलने वाली आपूर्ति तथा अतिरिक्त चावल वितरण को लेकर सरकार से सवाल किया। जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि राज्य में अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित, निःशक्तजन और सामान्य राशन कार्ड धारकों को चावल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 57,25,000 राशन कार्ड केंद्र की योजना में और 25,76,000 राशन कार्ड राज्य योजना में शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्राथमिकता राशन कार्ड धारकों को केंद्र की निर्धारित मात्रा से अधिक चावल भी उपलब्ध करा रही है। इसके तहत एक सदस्य वाले परिवार को 10 किलो, दो सदस्य वाले परिवार को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाले परिवार को 35 किलो और 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवार को प्रति सदस्य 7 किलो चावल हर महीने दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन दुकानों के जरिए पैकेट बंद मसाले बेचने का आरोप लगाया। इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने जांच कराने का आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अनिला भेंडिया ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने बालोद जिले में सामूहिक विवाह, उपहार सामग्री की गुणवत्ता और खर्च को लेकर सरकार से सवाल किया। इसका जवाब देते हुए महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि बालोद जिले में पिछले 2 वर्षों में 7 सामूहिक विवाह आयोजित किए गए जिनमें लगभग 400 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस पर 1,99,00,000 रुपए से अधिक खर्च किए गए। इस बीच सदन में आज विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने 136 बिंदुओं का आरोप पत्र सदन में प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार पर विभिन्न आरोप लगाए। समाचार लिखे जाने तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। इससे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2023 के लिए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। रायपुर में नकटी गांव में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रभावित ग्रामीणों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ज्ञापन में कांग्रेस ने ग्राम नकटी मामले की न्यायिक या उच्च स्तरीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास देने तथा मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में कराने की मांग की है। साथ ही टूटे हुए मकानों का पुनर्निर्माण कराने की भी मांग की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा। 17 जुलाई से 21 जुलाई तक जिला स्तर पर विद्यालयवार RTE की रिक्त सीटों के बारे में बताया जाएगा। 22 जुलाई से 5 अगस्त तक पात्र पालक RTE पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी और 17 अगस्त से 25 अगस्त तक लॉटरी में चयनित बच्चों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया जाएगा। इस अंतिम चरण में केवल वे ही पात्र बच्चे आवेदन कर सकेंगे जिन्हें पूर्व के किसी भी चरण में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना और जनता तक सटीक तथा विश्वसनीय

0: ने चुनावी जानकारी पहुंचाना था। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव प्रबंधन, डिजिटल तकनीक और सूचना प्रसार से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दी। साथ ही आयोग की हालिया पहलों, मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न चुनावी विषयों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में देश भर के पत्रकारों और चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया। भिलाई इस्पात संयंत्र और अडानी टोटल गैस लिमिटेड के बीच पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत संयंत्र और भिलाई टाउनशिप में स्वच्छ और सुरक्षित पीएनजी की आपूर्ति की जाएगी। इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक चित्तरंजन महापात्र ने कहा कि साझेदारी ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगी। बिलासपुर पुलिस ने छात्र सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और शैक्षणिक परिसरों को नशा मुक्त बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने शिक्षण संस्थानों को छात्रों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करने और नशा मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण पर छत्तीसगढ़ के जाने माने जल संरक्षण विशेषज्ञ विपिन दुबे से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 18 जुलाई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिलासपुर जिले की निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 1 जून से 17 जुलाई तक राज्य में औसतन 293.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि प्रदेश में सामान्य वर्षा का 81% है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोयला और शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल 22 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा EOW की हिरासत में रहेंगे। धमतरी जिले के पंडरीपानी खड़मा गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक दंपत्ति की मौत हो गई है। और बलरामपुर में आज राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर गिट्टी से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक मकान की दीवार से जा टकराया। इस घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए, जबकि 4 गायों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इनमें चांपा, बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। विधानसभा में आज विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, चर्चा जारी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का
2: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। शाम के 7 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के दूसरे भाग का। इसमें सुनते हैं उस गीत को जिसके लिए मेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं पेंड्रा से पूरन छावरिया, अश्वनी छावरिया, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी उमा तिवारी। इसी गीत को सुनना चाहा है हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव। आप हैं डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग। दुर्राबांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव, नवीन, युवराज साहू। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अबान। आप हैं खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति।

सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। तेलंगाना से हैं शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया। राजकोट से राजेश कृष्णा स्वाति और ख्याति कुमारी। बड़सिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार। लगान पंडरिया से हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल। राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल और पूजा परिहार। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी और मालती चौधरी। भाटापारा से बचका मल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कुमारी। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डाली, पूर्वेश साहू। महाराष्ट्र से पी एस ननवाकर, निर्मला और विशाल। फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला देवी, इंदु, हिमांशु गोदारा। रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। आप हैं यवतमाल से जयराम सिगणकर, दिशांत और अर्पिता। राजकोट से जूली, जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण गुजराती। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

कार्यक्रम में अगले गीत के लिए मेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं कतियापारा जूना बिलासपुर से, सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष देवांगन, रवि, शनि, रेवांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत और कमल। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र सेन, रौनक सेन। सराहनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग। चनहेटी बरेली कैंट से विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान। सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन वर्मा, पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लाभ्या, आरव खुराना, एस के पप्पी। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, नीरज रावत, शुभम, सौरभ रावत। बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता श्रीवास, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। बोरसरा नैला से प्रमोद साहू, भीमा वैभव, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। भिलाई तीन चरौदा से नौशाद अहमद, सिद्दकी और हमिदून, जिशान अहमद और शाहनवाज। खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार। छोटी बलिया मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी, सदब आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, आमना नसरीन, आसमा परवीन, राबिया मंतशा, आशु अहमद। दिल्ली से प्रमीला, हेमा और अंतरा सिंह। डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सोनम वली और आसमा अली। राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। आप हैं जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल। सराहनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम। गुजरात से पूजा, पायल, जगदीश जौहरी। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, आसमा श्याम कुमार। लूथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज। ठाकुरांवाला लोहगढ़ से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। लोहारेडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लिलेश्वरी, ललिमा, खुशान साहू और निशान साहू। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा, नवाज हसन, मिफरा नवाज और चाहत। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पुनावा राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। लूथरा खमरिया से अकरम, अमीन और अर्श अतिका। डोंडी लोहारा बालो से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, अल अबीर। सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा कौशल सेन। इसी गीत को सुनना चाहा है कुछ और श्रोता है। दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, आमना परवीन, वली भाई अंसारी। सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन और माही सेन। बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और अजबल मलिक। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, नंदा, हनुमान बोटके।

पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, तिरुपति साहू, लक्सर हरिद्वारा से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर शाही, मेहराज जहां, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांबी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वमिका और वाणी थांदी, मुंबई से अदीबा नाज, फतिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, पूर्णा जंक्शन मस्तानापुर से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत, बागपत से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा और पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे। आप सभी की पसंद पर आई सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

0: दीपा, प्रशांत, प्रियम थांदी, वमिका और वाणी थांदी। मुंबई से अदीबा नाज, फतिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी। पूर्णा जंक्शन मस्तानापुर से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत। बागपत से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा। और पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे। आप सभी की पसंद पर आई सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।
1: अरे अरे

इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का आज का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। श्रोताओं, एक सूचना हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। ये सूचना है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु पंजीयन और अंतिम तारीख है 24 जुलाई। श्रोताओं, शासकीय ITI नेवरा बिलासपुर और में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर हिंदी और द्विवर्षीय व्यवसाय में फीटर और इलेक्ट्रिशियन की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 24 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट cgiti.admission.nic.in पर पंजीयन करके आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व से पंजीकृत हैं और अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपने लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी सहमति प्रदान करके निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं या चॉइस फिलिंग में संशोधन या परिवर्तन भी कर सकते हैं कि किस ट्रेड में उन्हें ITI प्रशिक्षण प्राप्त करना है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित संस्था या वेबसाइट में प्रदर्शित हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकती हैं। ये थी सूचना। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। संध्या के 7:20 होने को ही है और समय श्रोताओं कार्यक्रम ग्राम सभा का, बैसाखू भाई तैयार हैं ग्राम सभा में आप सबके संग, आइए चलते हैं।

सबो संगवारी मल्ला बैसाखू के जय जोहार संगी हो पानी बादर के अगोरा रही से सबो संगवारी मन ला है ना। अब पानी तो गिरी से उत्ता धुर्रा बिलासपुर के कई ठेके जिन निचले वाला जगह है नाली वाली पूरा जाम हो गया है ना। गली गली में पानी पानी दिखा थे। संगे संग गांव घर के बात करी तो उहूं है ना खेत खार में पूरा पानी पानी दिखा थे। ऐसे लगा थे कि पूरा नदिया कस पुराने समंदर कस दिखा थे। संगे संग अभी जानकारी मिली

0: के गौरेला पिंडा मरवाही घलो मा अबड़े पानी गिरे हे तो सचेत हो के हमला ओती के रोड थोकन अन अभी बनत हवाए तो देख ताक के हमला रिंगना है और पानी के सदुपयोग करना है। पानी के सदुपयोग करबो संगी हो तो अवैया समय में पानी बर हाहाकार हमला अने हाहाकार नहीं मचिया ना तो पानी के कैसे कैसे उपयोग करना है यही ला बताबो है ना। तो पहली संदेशा सुन ली एक और बात बताबो।
1: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ। वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: हाँ संगी हो संदेशा के बात कहे हैं ना कि फिर मिलबो कई के तो आज बढ़िया आप मन बर जानकारी लेके आए हैं। होम हर्बल गार्डन एला कोनो छोट कुन जगह है कोला कोठार है वो मां लगा सका था। होम मतलब घर और हर्बल मतलब जड़ी बूटी और गार्डन मतलब बगीचा है ना। और जैसे जगह नहीं है कही वैसा को भैया जगह नहीं है तो आजकल तो लेंटर ऊपर घलो है ना लेंटर ऊपर घलो होम हर्बल गार्डन बना के फायदा लेवा थी है ना और बढ़िया उत्पादन लेवा थी कैजिक संगवारी मन। तो जैसे हमन जानथन के हमर पुरखा मन अपन घर के अंगना में तुलसी लगावें गिलोय लगावें जेला गुरुद कहें है ना एलोवेरा हरदी अदरक पुदीना लीम लेमन ग्रास और अजवाइन के अलावा कतको कन रहा है ना औषधि महात्म के पौधा। तो ये पौधा मन सिर्फ हरियाली नहीं बढ़ाते बल्कि परिवार के सेहत के रखवाली घलो करते फिर एक जानकारी रही तभी तो संगी हो है ना। और आजकल देखिए छोट छोट बीमारी हो जाते है ना सर्दी खांसी बुखार पेट पीड़ा घाव देह हाथ के घाव गोदर खसु कांदा ये सब पौधा जिन हवा है ना जे लगा रहते होम हर्बल गार्डन एकर से आप मन के यानी देह हाथ के घाव और कई प्रकार के बीमारी हिमारी की इलाज मतलब बहुत कम में हो जाते। तो जैसे तुलसी के पाना हम देखा था ना चाय पीबो तो डार देता चाय में और संगे संग हरदी कतको संगवारी मन आऊ कई ठीक जीनिसों में डार देती गिलोय डार देती एक से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते। और पुदीना का जाना था कि पुदीना हर पाचा के है ना समय के अनुसार पुदीना के सेवन करना चाहिए काबर के ठंडा घलो हुए और गर्मी में तो पुदीना के आप में सेवन करे हो कुसियार के संग में कुसियार रस के संग में। और आज के समय में रसायन वाला दवाई के संगे संग प्राकृतिक इलाज के महत्व घलो बढ़ जाते तो एकर सेहत के लाभ के संगे संग पर्यावरण संरक्षण में घलो योगदान मिलते और घर में हरियाली रहते हवा साफ रहते और परिवार स्वस्थ रहते। कोहो गांव के हर घर में कम से कम 5-10 औषधि पौधा लगाई तो गांव के वातावरण घलो बढ़िया दिखते और लोगन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक घलो होते और घरेलू उपचार की सुविधा घलो मिल जाते। तो चलो संगी हो आज ले ठान ली कि अपन घर में एक छोटकुन होम हर्बल गार्डन खचित बनाई एकर ले घर हर हरियर बनी और पर्यावरण घलो सुरक्षित रही और परिवार तको स्वस्थ रही। अब चलत हन फोन इन कार्यक्रम में है ना। फोन इन कार्यक्रम में है कि खरीफ फसल में खरपतवार नियंत्रण डॉक्टर राजेश कुमार साहू अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कोरबा है ना। और कार्यक्रम के संचालन नहीं करा था तो आप ध्यान लगा के सुना। संगी हो आज के फोन इन कार्यक्रम शुरू करत हन आज हमारे स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय कोरबा के अधिष्ठाता हमें डॉक्टर राजेश कुमार साहू और इंकर से हम जुड़त हन और किसान संगवारी से फोन लाइन के माध्यम से घलो जुड़बो। और आज के विषय है खरीफ फसल में खरपतवार नियंत्रण और फोन नंबर बता देते हैं आपन फोन लगा था बृहस्पत के 10:30 से 11 और 11 से 11:30 बजे के बीच और अलग अलग विषय होते। फोन नंबर हमारा रथ है 2665 92 एक टिकाऊ नंबर है 3100 2 6 1 पहली बिलासपुर के एसटीडी कोड लगा बर पड़ते 0775 2। कार्यक्रम शुरू करत हन आप मन के स्वागत है डॉक्टर साहब जय जोहर राम राम।
4: जय जोहर भैया राम राम।
0: संगी हो एक कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हवाए सिल्वेरियस लकड़ा मन के डॉक्टर साहब किसान संगवारी मन के एक ट्रिप फोन आ गए एक बाद गोट बात कर बू। फोन इन कार्यक्रम में आपन के स्वागत भैया जय जोहर।
5: जय जोहर भैया।
0: हाँ नाम बतावा अपन परिचय बतावा।
5: उमेंद कुमार निषाद जी
0: आप मन के जिन प्रश्न हो है हमारे पहुंचने से रख सकता खरीफ फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में।
3: खरपतवार के नियंत्रण

0: कैसे कर सकते हैं, एकरे बारे में जानकारी लेना है कौन कौन
1: अच्छा,
0: सी दवा।
1: खरीफ फसल में का का खरपतवार होते बता डॉक्टर साहब।
2: अभी अब खरपतवार है जैसे इसको घास है ना, ये भी बोलते हैं है ना, कचरा बन भी बोलते हैं कई जगह पे। तो खरपतवार ये होते हैं जो कि अनचाहे पौधे होते हैं, जो कि हम फसल लगाए हैं उसके अलावा जो अपने से उग जाते हैं और ये फिर कंपटीशन करते हैं हमारी मुख्य फसल के साथ में, और उसकी फसल की जो बढ़वार है उसको प्रभावित करते हैं और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। और खरपतवार नियंत्रण में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि शुरुआत में ही इसका नियंत्रण कर लिया जाए, क्योंकि इसकी जो बढ़वार होती, जो ग्रोथ होती है वो फसल की तुलना में ज्यादा तेजी से होती है।
1: हाँ।
2: और ये आगे चल के उसको कवर कर देती है, तो हमारी फसल जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
1: हाँ।
2: तो इसको शुरुआत में ही कर दिया जाए तो वो फिर आगे उतना दिक्कत नहीं होती, फिर पौधा अपना तैयार हो जाता है।
1: हाँ।
2: और हमारे छत्तीसगढ़ में जो अभी खरीफ का मौसम होता है इसमें पानी अच्छा गिरता है, अपने यहाँ ज्यादा गिरता है, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और मिट्टी में जो रहती है पर्याप्त नमी रहती है, ओल ज्यादा रहता है, तो खरपतवार बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। तो खरपतवार जो होता है वो एक तो सबसे पहले पौधे के साथ में हम जो भी उसको खाद वतु देंगे वो जो है उसके लिए उससे लड़ाई करता है, उससे प्रतिस्पर्धा करता है, तो उसमें जो भी रहता है हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम ऊपर से दे रहे हैं जो मिट्टी में भी है उसको वो ज़्यादा तेजी से खींचता है, हमारी फसल जो रहती है वो उतना नहीं ले पाती, उससे ज़्यादा जो ये खरपतवार है वो लेते हैं। पानी का भी ये बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, इनकी बढ़वार ज़्यादा होती है तो, और ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो ये जगह के लिए भी अपने फसल से ज़्यादा तेजी से फैलते हैं तो वो ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, उसको वो कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खरपतवार जो होते हैं कीड़े बीमारी भी जो होती हैं वो फैलाने का काम करते हैं, तब उसमें शरण लेते हैं जो, और उसके कारण जो है कि हमारी फसल को कीड़े बीमारी लग जाते हैं और उत्पादन में भी कमी होती है। धान में 30-70% तक खरपतवार से नुकसान हो सकता है, सोयाबीन में 20-50% तक, इसके अलावा मक्का और जो दलहनी फसलें हैं उसमें भी 20-60% तक उत्पादन कम हो जाता है ना। तो खरपतवार जो है उसको पहले हम यदि देखें कि कौन कौन से इसके प्रमुख खरपतवार हमारे यहाँ खरीफ मौसम में लगते हैं छत्तीसगढ़ में, तो इनको हम तीन कैटेगरी में कर सकते हैं। पहला होता है घास कुल के, जो ग्रास वाले रहते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है सांवा, जानते ही होंगे सांवा सब किसान भाई लोग, ये धान जैसा दिखता है। और फिर दूसरा होता है जंगली धान, ये धान की तरफ बढ़ता है। फिर दूब रहती है, दूबी जो है ये जमीन में फैलती है, कांस घास जो रहती है बहुवर्षीय होती है कई साल के लिए। इसके अलावा फिर चौड़ी पत्ती वाले रहते हैं जैसे कि जंगली चौलाई है, भांगरा, कनकौआ, हिरन खुरी वगैरह। और फिर आते हैं मोथा, तीसरा जो होता है ये छोटे पौधे जैसे रहते हैं, जैसे मोथा है, साइप्रस है, ये रहते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो जैसे पहले भी बात की हम कि शुरू का समय जो रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे धान में जो है हमारा रोपाई या बुआई के बाद में 15-45 दिन का जो समय रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बीच में यदि हमने खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो फिर आगे हमारे धान की फसल को दिक्कत नहीं होती है। वैसे ही सोयाबीन में भी 20-45 दिन महत्वपूर्ण होते हैं, मक्का में 15-40 दिन, दलहन फसलों में 20-50 दिन में। अगर इतने समय में यदि हम उसमें खरपतवार को नियंत्रित करके रखें तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होगा, उसमें फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब हम यदि हम आगे देखें कि खरपतवार नियंत्रण की विधियां क्या क्या होती हैं, तो उसमें जो है प्रिवेंटिव मेथड होता है, निवारक, कि खरपतवार आए ही ना तो उसको फिर आगे फिर हमको नियंत्रण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो इसमें जो है जैसे साफ बीज का उपयोग करें, और यदि संभव हो तो सर्टिफाइड सीड जो अपना बीज निगम से मिलता है उसका ही उपयोग करें। इसके अलावा खेत की जो मेड़ होती है उसको हम साफ रखें। क्या होता है किसान भाई उधर ध्यान नहीं देते, उधर इतना घास वास उगे रहता है, वही फिर वहाँ से पूरे बीज बीज वगैरह उसके खरपतवार के फैलते हैं, तो उसको साफ रखें। और यदि संभव हो तो वहाँ पे आप अरहर लगा सकते हैं, तिल लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा खरपतवार को वहाँ पे जगह ही नहीं मिलेगी और किसान भाई को कुछ अलग से कुछ फायदा भी मिल जाएगा, उत्पादन मिल जाएगा।
1: ठीक है
2: ना। और जो खरपतवार है उसको बीज बनने के पहले ही क्या होता है, हम थोड़ा लापरवाही कर देते हैं, बड़ा हो जाता है, बीज बन जाता है, उसके बाद उखाड़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा बीज बनाते हैं, लाखों में बीज बनते हैं एक पौधे में। तो बीज बनने के पहले जब वो छोटे हैं उसी समय उसको नष्ट कर दें। इसके अलावा जो हम खाद उपयोग करते हैं वो अच्छी तरह से सड़ी हुई हो, क्योंकि कच्ची खाद रहेगी कच्ची उसमें तो उसमें बीज जो रहते हैं वो जिंदा रहते हैं घास के और वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है नहीं

0: मेथड्स होते हैं, जैसे कि समय पे बुवाई। अक्सर क्या होता है, व्यवस्था करने में किसान भाई देरी कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन यदि समय पे बुवाई हो जाए तो उससे हमारी जो फसल है वो घास की, जो खरपतवार की फसल, जो पौधे उसके उगने के पहले ये बढ़ करके और अच्छे उसमें उनकी बढ़वार हो जाती है, तो खरपतवार को दबा देती है। इसके अलावा उचित पौध संख्या होना चाहिए। फसल लगा रहे हैं उसमें क्या होता है, कभी लापरवाही हो जाती है कि उसमें कम बीज डालते हैं, तो उसके कारण गैप बीच में आ जाता है, पौधों के बीच में जो दूरी है वो ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए उसको उचित संख्या उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा फसल चक्र अपनाना चाहिए कि जैसे एक ही फसल को हम बार बार ले रहे हैं तो वो साइकिल बन जाता है और उसमें जो है वही जो हमारी घास है वो उगने लगती है। जैसे धान के बाद में चना ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, सोयाबीन के बाद गेहूं ले सकते हैं, तो इससे जो है खरपतवारों का जीवन चक्र टूटता है। इसके अलावा मल्चिंग, मल्चिंग क्या है, जो मिट्टी है हमारी उसको जो फसल के अवशेष होते हैं उससे हम ढक दिए, पैरा वैरा वगैरह या फिर अपने और भी जो पौधों के अवशेष है उनसे ढक देने, तो इससे डबल फायदा होता है। एक तो क्या होता है कि जो हमारे खरपतवार हैं वो दब जाते हैं, उनको प्रकाश हवा नहीं मिलती तो वो बढ़ नहीं पाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हमारी मिट्टी से जो पानी जो है वो भाप बन के उड़ता है वो कंट्रोल हो जाता, कम हो जाता, ऊपर से ये ढक जाते हैं तो नमी बनी रहती है। इसके अलावा फिर अगला रहता है यांत्रिक मैकेनिकल वीट कंट्रोल, तो उसमें सबसे बढ़िया होता है हाथ से निराई करना, है ना, हाथ से निंदाई करना वो सबसे बढ़िया होता है। धान में जो होता है पहली निंदाई 20 से 25 दिन में करना चाहिए और दूसरी निंदाई 40 दिन में, यदि ये दो समय पे हो गई तो बहुत प्रभाव पड़ता है। सोयाबीन में पहली 20 दिन में, दूसरी 35 से 40 दिन में। फिर अगला आता है यंत्रों का उपयोग, जैसे कोनो वीडर है, ये रोपा धान में बहुत उपयोगी होता है। इससे लाभ ये होता है, एक तो जो घास है, जो खरपतवार है वो सब उखड़ जाते हैं, इसके अलावा जो ये बीच में चलता है तो मिट्टी में हवा का संचरण होता है, हवा जो है वो सर्कुलेशन होता है और जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है। धान की ही बात करें तो धान में जो रोपा की है तो उसमें सबसे पहले तो हम धान की खेत की तैयारी अच्छी थी तरीके अच्छा से करें।
1: आओ एक हथन उमेन भाई मन जुड़ी फोन लाइन ले, तो आप मन क्या कुछ समस्या थोड़े है?
2: नहीं ठीक, धन्यवाद जानकारी के बहुत बहुत।
1: हाँ हाँ, ले आप मन के धन्यवाद, हम गोड बात करत हन और आप मन ध्यान लगा के रेडियो ले सुनत रही।
0: धान में अपन बात कर रहे थे, तो धान में जैसे कि हमारा ये रोपा धान है ना, तो रोपा धान में सबसे पहले तो खेत की तैयारी अच्छे से करें, जुताई अच्छे से करें, है ना, समर प्लॉइंग बोलते हैं कि गर्मी के समय में उसको यदि हम जुताई कर दें एक बार तो मिट्टी खुल जाती है, तो जो सूर्य जो उस समय सूरज तेज रहती है गर्मी, तो उसमें जो कीड़े बीमारी भी जो है, इसके अलावा जो ये इनके की जो बीज रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और खेत को समतल रखें और पानी का उचित प्रबंधन करें कि पानी मेंटेन है, यदि खेत सूखा हो जाता है तो इनके पौधों को बढ़वा करने का मौका मिल जाता है, लेकिन यदि पानी एक लेवल तक भरा रहेगा तो हमारा धान का तो बढ़िया उगता है लेकिन ये खरपतवार जो है वो नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो है तो फिर रासायनिक नियंत्रण में रोपाई के 3 से 7 दिन के अंदर प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड जो होता है ना, जैसे कि ब्यूटा क्लोर है, प्रेटिला क्लोर है, इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब किसान संगवारी मन के एक ठीक फोन आ गए, एक बात फिर गोट बात कर बो। फोन इन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है भैया।
3: भैया मोर माया भरे राम राम।
1: हमरो माया भरे राम राम है।
3: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
1: हाँ तो वर्मा जी, आप मन अपन सवाल रख सका था हमारे पहुना से?
3: हाँ भैया, डॉक्टर भैया राम राम।
0: राम राम नारायण भैया।
3: का है दे धान पान के तो हमन है दे रोपा लगावा था वहाँ, और एक बाद में भैया दे दलहनी फसल में मैं कुछ मूंग डाल हूँ, समय हो ही तो बताओ भैया, और जैसे तिलहनी में कुछ अपन डालना है भैया, तो एकर लिए खर पतवार नियंत्रण पर मैं का का उपाय कर रहा हूँ, यही जम्मो बात ला आपने जानकारी ले लेते हैं तो हमने फिर बुवाई वुवाई काम चालू करते हैं भैया।
0: हाँ हाँ भैया।
1: हाँ तो आओ गोट का तो गोठिया डरे हैं, आप मन रेडियो ले जुड़ के सुनत रहा।
3: हाँ भैया
1: है ना, आओ बात ला बतावत हूँ हमारे पहुना मन बता डॉक्टर साहब।
3: हाँ भैया,
0: हमने पहले अच्छे से उसका खेत को तैयार कर लिया और रोपाई के बाद में एक हफ्ते के अंदर में, मतलब रोपाई के 3 दिन से 7 दिन के अंदर प्री इमरजेंसी डाल दिया, और उसके बाद यदि खरपतवार दिख रहे हैं तो 20 से 30 दिन में जो पोस्ट इमरजेंस होते हैं, जैसे बिस्पेरिपैक सोडियम होता है, इनका उपयोग किया जा सकता है आवश्यकता होने पे, है ना, और यांत्रिक उसमें 20 से 25 दिन में कोनो वीडर का उपयोग कर करें और 35 से 40 दिन में दूसरी निंदाई कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: है ना। और जी, और जो जहाँ पे रोपाई नहीं करते

0: हैं, सीधा छिड़काव करते हैं, सीधी बोनी, उसमें खरपतवार ज़्यादा होते हैं। तो उसमें
1: अच्छा अच्छा
0: नियंत्रण
1: ओके
0: के लिए
1: हाँ
0: बुआई के तुरंत बाद में, जैसा पेंडीमेथालिन है, इसका 50 cc 400 से 600 ml प्रति एकड़, और फिर 20 से 30 दिन के बाद में बिस्पेरीपैक सोडियम को 50 cc 800 से 1 लीटर प्रति एकड़ करें, और साथ में एक हाथ निंदाई कर दें, तो काफ़ी उस पर फ़र्क पड़ जाता है।
1: अच्छा अच्छा भैया
0: जी
1: हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप
0: जी
1: ला
0: आओ सुनत रही है, बहुत कन बात है ना।
1: हाँ भैया हाँ
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: ठीक
0: अब
1: वो
0: बताओ
1: अब
0: आप। खरीफ में हमारा धान के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण फसल आती है भैया, सोयाबीन। तो सोयाबीन में भी शुरुआती खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी रहता है। इसमें जो मुख्य खरपतवार आते हैं उसमें आता है मोथा, चौलाई, सावा। तो इसमें बुआई के बाद में पेंडीमेथिलिन का 30 cc एक
2: अच्छा
0: लीटर से 1200 ml प्रति एकड़ करें, तो ये घास और चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं
2: हाँ
0: उनको
2: हाँ
0: कंट्रोल करता है। और उसके बाद में यदि आवश्यकता दिखे तो 20 से 30 दिन में जो है उसमें जो पोस्ट इमरजेंस होता है इमाजेथ्रेपिन, इसका 10 SL का जो लिक्विड है वो 400 से 600 ml प्रति एकड़ उपयोग किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार से। और निंदाई जो है 20 दिन में पहली और 40 दिन में दूसरी गुड़ाई करें, तो उस पर
2: अच्छा
0: काफ़ी नियंत्रण होता है ना। इसी तरह से मक्का जो है इसमें भी जो मुख्य जो होते हैं वो सावा, मोथा और चौलाई होते हैं, जिसमें नियंत्रण के लिए अपना बुआई के बाद में एट्राजिन का पाउडर होता है 50 WP वेटेबल पाउडर, उसको 400 से 800 ग्राम प्रति एकड़ इसको उपयोग करें, और 25 से 30 दिन में फिर निंदाई करें और फिर मिट्टी चढ़ाने का काम करें।
2: ऐसे ने देखी आनी बानी की फसल है एम दलहनी फसल में राहेर के बाद बताहा एम कौन कौन निंदा थे कैसे नियंत्रण करिए डॉक्टर साहब।
0: देखिए राहर के का है कि इसकी बढ़वा थोड़ा धीरे होती, लंबे समय की है ये,
2: हाँ
0: है ना, तो इसमें खरपतवार की समस्या थोड़ा ज्यादा आती है।
2: डॉक्टर साहब किसान संगवारी मन के एक ठीक फोन आ गए एक बार फिर गोट बात कर बू फोन इन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है।
3: जय राम गा भैया
2: जय जोहार बतावा।
3: मैं नांद घाट कातल बोर्ड बोला था भागसी राजपूत
2: नांद घाट,
3: कातल बोर्ड
2: हाँ कौन के भैया ये यार?
3: ये है नांद घाट ये रायपुर रोड में पड़े भैया
2: अच्छा
3: रायपुर
2: अच्छा
3: बिलासपुर
2: हाँ। अभी आप मन के डहर पानी उनी कैसे है भैया?
3: पानी तो अच्छा गिर रही से अभी 2-3 दिन से हो
2: अच्छा, तो आऊ बने गिरा कहा था।
3: बने पानी कब जरूरत है भैया का है बाबू घलक मन बने जाम गए हैं
2: तो आज के विषय जेन हवे कैसे कैसे निंदा के नियंत्रण करना है, आनी बानी के फसल के बारे में है ना, निंदा के नियंत्रण करे के जिन विधि बतावा थी और कौन कौन दवाई डालना चाहिए। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार साहू अधिष्ठाता हो आप मन कृषि महाविद्यालय तो इनकर से
3: हाँ
2: सवाल आप
3: भैया
2: मन रख सका था राजपूत जी।
3: जय राम गा डॉक्टर भैया
0: जय राम राजपूत जी।
3: बुआरा में खरपत नियंत्रण पर जानकारी चाहे रही भैया
2: बोए है तेकर बाद धान भर ना।
0: धान में
3: हाँ
0: ना,
3: हाँ
0: हाँ
3: धान बोए तेकर बाद दे दे 8-10 दिन हो है बुआरा हो है
2: तो कुछ नींदा उंदा दिखत है?
3: हाँ निंदा उमा सावा उमा वे दिखत हवे भैया चौड़ा पत्ती
2: हाँ तब तो बतावत हमारे डॉक्टर साहब मन बने बेरा फोन करे है। हाँ बतावा।
3: हाँ भैया
0: तो ये इसकी तो हम चर्चा कर चुके हैं, है ना, तो इसमें आपका कितना दिन हो गया है? 1 हफ्ता हो गया करीब।
3: 8-10 दिन हुआ है भैया बुआरा
0: अच्छा
3: हुए
0: अच्छा हाँ। तो इसमें अभी तो आपको ब्यूटा क्लोर या प्रेटीला क्लोर का उपयोग कर सकते हैं,
3: हाँ
0: है ना,
3: भैया
0: और फिर 20 से 30 दिन बाद यदि फिर दिखते हैं, इसमें भी
2: हाँ
0: कंट्रोल हो जाएगा, फिर 20 से 30 दिन बाद यदि दिखते हैं रोपाई के बाद में,
3: हाँ
0: तो बिस्पेरीपैक सोडियम का उपयोग कर सकते हैं, इसका 50 cc 800 से 1 लीटर प्रति एकड़ में, और
3: ठीक
0: साथ
3: भैया
0: में फिर एक निंदाई भी।
2: हाँ असने हमारे कार्यक्रम में जुड़े रही है बहुत बहुत धन्यवाद आप मन सवाल पूछे हा और समस्या के समाधान हो गई सो है।
3: हाँ भैया धन्यवाद
2: हाँ बताहा वो जैसे
0: उड़द मूंग है ना, उड़द मूंग में भी बुआई के बाद में पेंडीमेथिलिन का उपयोग करें,
2: हाँ
0: 20 से 25 दिन बाद एक वो अपनी निंदाई करें और 40 दिन के बाद में दूसरी निंदाई करें,
2: अच्छा।
0: तो इसमें पूरा काफ़ी हो जाएगा। और फिर अगली जो अपने आप प्रमुख फसलों में आता है वो कोदो कुटकी और रागी।
2: अच्छा मोटा अनाज
0: हाँ मोटा
2: प्रमुख के
0: अनाज
2: कहा
0: जी,
2: हाँ।
0: और इसमें जो है बहुत ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि ये इसीलिए जानी जाती हैं,
2: ठीक कथा
0: तो इसमें प्रारंभिक उसमें रहता है कि 20 से 30 दिन में पहली निंदाई कर ले और 40 दिन में दूसरी निंदाई कर दे, इसमें केमिकल उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती
2: ठीक
0: है
2: कथा हाँ
0: ना।
2: हाँ
0: और फिर यदि हमारे कि खरपतवासी जो केमिकल्स रहते हैं उसका उपयोग करने की विधि
2: हाँ
0: पे,
2: अहिज बात है
0: हाँ
2: हाँ बड़े बातें हाँ
0: का होता है कि जो केमिकल रहते हैं वो किसी का 400 ml, किसी का 800 ml, किसी का 1200 ml, और आजकल तो इतने स्ट्रांग आने लगे हैं कि वो 30

0: एमएल 40 एमएल प्रति एकड़ में ही हो जाता है। और किसान भाई लोग एक ये गलती करते हैं कि उसका जो मेहनत को बचाने के लिए वो कम पानी का उपयोग करते हैं,
1: अच्छा
0: जबकि एक एकड़ में आपका 200 लीटर पानी के आसपास आपका उपयोग होना चाहिए, मतलब 12 से 15 टंकी आपका जो है एक एकड़ खेत में उपयोग होना चाहिए। और उस अनुपात पे आपको फिर अपना जो खरपतवार नाशी है उसको मिलाना चाहिए। और किसान भाई लोग क्या करते हैं, उसको 4-6 टंकी में ही निपटा के पूरा सींच देते, तो उससे वो उतना प्रभावी नहीं हो पाता है। तो सही मात्रा का उपयोग करें, और छिड़काव करने के लिए सुबह का या फिर शाम का समय उपयोग करें, दिन में ना करें, तो सुबह और शाम में ये ज़्यादा प्रभावी हो रहता है। और खेत में जो है पर्याप्त नमी रहे, एकदम सूखा ना रहे, जिससे कि उसको काम करने के लिए इंसेक्टिसाइड वो वीडीसाइड को थोड़ा दिक्कत होती है। इसके अलावा हवा तेज होने पे छिड़काव नहीं करना चाहिए। हवा तेज होने पे
1: अच्छा
0: क्या होता है कि वो इधर उधर फैलता है हमारा, और हमको हमारे ऊपर भी नुकसान करता है।
1: देवहा ताखी मुंह सब में पड़ जाते
0: हाँ
1: का।
0: हाँ और ये तो खैर वैसे नियम ही है कि आप कुछ भी करें, अपना खरपतवार नाशी है या कीटनाशी है, उपयोग करते समय मुंह कान पूरा अच्छे से बंद रखना
1: हाँ
0: चाहिए।
1: हाँ हाँ मास्क लगा के।
0: जी हाँ, और उपयोग करने के बाद में अब अच्छे से साबुन से हाथ मुंह चेहरा सब धो लेना चाहिए, और स्प्रे करते समय फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्लैट फैन जो नोजल रहती है उसका कवरेज ज़्यादा अच्छा होता है, और वो पूरा उसका नियंत्रण पूरा वो तरीके से हो पाता है, स्प्रे पूरा सब जगह पहुंच पाता है। अब इसके बाद में भी है जो आता है हमारा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट होता है, समेकित
1: अच्छा
0: खरपतवार प्रबंधन।
1: अच्छा काय बतावा नहीं ला।
0: हाँ, इसमें क्या होता है कि जो जितना जरूरी है उसका प्रयोग करें, सभी चीज़ों का जिसकी आवश्यकता है, जैसे कि बुआई के पहले गहरी जुताई करें, खेत की अच्छे से तैयारी करें, बुआई के बाद में प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी जैसे
1: अच्छा
0: अपना 3 से 7 दिन के भीतर जो हमने अलग अलग फसलों में चर्चा की वो किए करें, और फिर 20 से 30 दिन में निंदाई गुड़ाई करें। आवश्यकता लग रही तब फिर पोस्ट इमरजेंस जो हमारे खरपतवार नाशी वीडीसाइड है उनका वो करें। तो जो समेकित खरपतवार प्रबंधन या इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है कि वैज्ञानिक पद्धति जिसमें कि सभी प्रकार की विधियां हैं, जैसे कि कल्चरल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, जैविक है, ये सबको उपयोग किया जाता है। और इसका उद्देश्य सिर्फ खरपतवार को नष्ट करना नहीं होता है, मतलब तात्कालिक उपचार नहीं, इसका ये रहता है कि लंबे समय तक खरपतवारों की संख्या वृद्धि को कंट्रोल करें। और इसके जो उद्देश्य होते हैं सबसे पहले तो ये रहता है कि शुरुआती 30 से 45 दिन तक खेतों को खरपतवारों से मुक्त रखना। ज़्यादातर फसलों में क्या होता है कि पहले जब फसल छोटी रहती है उस समय उसमें उसकी तुलना में जो खरपतवार रहते हैं उनकी वृद्धि ज़्यादा तेजी से होती है, उस समय उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, जिससे खरपतवार जो हैं वो उस समय कंट्रोल रखे। तो ज़्यादातर फसलों में 1 से 1.5 महीने तक यदि हमने कंट्रोल कर लिया तो उससे हमारे उत्पादन में बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद फिर पौधे फसल इतनी मजबूत हो जाती है कि उतना नुकसान नहीं होता है, लागत कम करना रहता है। इसके अलावा जो मिट्टी की उर्वरता है, पर्यावरण है, उसको सुरक्षित रखना, और खरपतवार जो रहते हैं उस जो हम एक ही केमिकल को बार बार उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे उसमें रेसिस्टेंस आते जाता है।
1: तो एक बार कुछ पहली ले हम सचेत हो जाए तो कौन
0: जी
1: कौन
0: जी
1: बात का ध्यान रखना
0: जी
1: चाहिए
0: जी
1: बता।
0: जी बिल्कुल, ये जो है निवारक उपाय आपने बोला कि जिसमें जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कुछ बीमारी हो गई उसका इलाज करने के पहले ऐसी हम परिस्थिति करें कि बीमारी हो ही ना, तो खरपतवार को अपने खेत में आने से ही रोकें। तो सबसे पहले तो हम प्रमाणित बीज, साफ बीज का उपयोग करें, है ना, जो बीज यदि हम घर का उपयोग करें तो एकदम साफ रहे और बेहतर हो, यदि संभव हो उपलब्ध हो तो सर्टिफाइड बीज बीज निगम से उपयोग करें। खेत की मेड़ और नालियां जो हैं उनको एकदम साफ सुथरा रखें, और जैसा पहले चर्चा की ये जो खरपतवार है उसमें बीज आने से पहले ही उसको नष्ट कर दें, और गोबर खाद जो है उसको अच्छी सड़ी हुई उपयोग करें, और जो किसी यंत्र हम जो भी उपयोग करते हैं उसको एक खेत से दूसरे खेत जब ले जाते हैं तो उसको हम पहले अच्छे से साफ कर लें, जिससे एक खेत से जो भी यदि वहाँ पे कुछ बीज बीज वगैरह खरपतवार के तो वो वहाँ ना चलें। हम जो चारा खेत में डालते हैं, जो अवशेष डालते हैं उसमें हम ये देखें कि जो भी पैरा वैरा वगैरह है उसमें से खरपतवार वगैरह को हटाकर हम वो करें, समय पर बुआई करें। यदि हम समय पर उसको करेंगे तो हमारी फसल जो है वो तेजी से बढ़ती है, और खरपतवार जो रहती है उसको बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है।
1: अच्छा अच्छा
0: है ना, उचित बीज दर और पौध संख्या रखें और फसल चक्र अपनाएं, है ना, जिससे कि उनका चक्र टूट जाए और मल्च

0: करें।
1: अच्छा, तो बढ़िया बात बताया हमारे बीच में आके डॉक्टर साहब कि खरीफ फसल में खरपतवार के नियंत्रण कैसे करी। एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही से काली बृहस्पत के 11 ले 11:30 बजे के बीच और आप मन हमला रिकॉर्डिंग में सहयोग करे हा। आप हो कृषि महाविद्यालय कोरबा के अधिष्ठाता डॉक्टर राजेश कुमार साहू। साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जय जोहार, सभी किसान भाइयों को जय जोहार।
1: संगी हो एक कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही से सिल्बेरियस लकड़ा मन के। तो संगी हुए तो रही से फोन इन कार्यक्रम। अब फोन इन कार्यक्रम में आज चर्चा करें खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। विशेषज्ञ पहुना रही डॉक्टर राजेश कुमार साहू। आप हो अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कटघोरा जिला कोरबा के। और कार्यक्रम के संचालन में ही करें संगी हो और दिन भर तो गुठिया था आप मन से है ना। अब गोठ बाद फेर करबो है ना, थोड़ बहुत बेरा हवा है। तो एक ठीक बढ़िया गीत सुन ले जाए, जुमना गीत है। अब एक गीत ला सुनिया तो आपो मन आनंद से भर जाहा। जयंती यादव की स्वर्मा।

हाँ संगी हो आप मन सुना था आकाशवाणी बिलासपुर ले ग्राम सभा कार्यक्रम आओ जेकर अब तीर मा कहो रेडियो नहीं तो मोबाइल घलो ले सुन सका था मोबाइल एप घलो आते न्यूज ऑन AIR NEWSONAIR आओ गूगल ले घलो छू देहा अने टच कर देहा तब शुरू होते आओ गूगल में लिखिया AIR मतलब एयर अब बिलासपुर बिलासपुर की स्पेलिंग आप मन जाना था और सर्च करिया फिर शुरू हो जाते कार्यक्रम है ना जैसे रोजे बताथन और मौसम के जानकारी बताबो और एक गीत आप मन सुने हा जयंती यादव के शर्मा जुमना गीत ला है ना बढ़िया लगी सो है आप मन ला आज के बिलासपुर के न्यूनतम जिन तापमान रही से 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम गई से 28 डिग्री सेल्सियस पानी रुक रुक के गिर सकत है संभावना मौसम विभाग बतावत है ना और गौरेला पिंडा मरवाही सहित कई ठीक जिला में अवैया 24 घंटा में भारी ले भारी वर्षा के ऑरेंज चेतावनी जारी करे गए है तो देख रेख के एक चीज आओ की वो के जैसे पानी गिरते तो कई जिक संगवारी मन है ना छेरिया चरावत है चाहे कुछ बूता करते तो जाके का करते बिजली के खंभा न और कतको संगवारी मन पेड़ के उद्धम लुका जाते के पानी नहीं पड़ी गई के और जिन गरज चमक होते है ना वो हर एंटीना पावत है फिर वही माँ गाज गिर जाते तो नुकसानी हो जाते छेरिया है ना और संगे संग गरुआ बछरू मन के कई ठीक जीव चिड़ई चुरगुन घलौला अभी गाज मारे रही से तो सावधानी बरतना चाहिए अब ये कहो जुलाई के महीना में कई ठीक बात के ध्यान रखे बर पड़ते जैसे कि पानी भरे है आज देखे हन लबालब खेतर भरे है तो धान की रोपाई बर हमला चेत करना है पानी निकाले के व्यवस्था करना है खेत में कहो ज्यादा पानी हुआ थे तो निकाल दी है ना और जैसे आज के फोन इन कार्यक्रम में पुनः मन बताए नहीं खरपतवार नियंत्रण के बारे में तो जतका ज्यादा हो सके देसी माध्यम ले खरपतवार के नियंत्रण अने निंदा के नियंत्रण करी काबर के कीटनाशक के उपयोग करवो है ना कल के फोन इन कार्यक्रम में बताए रहे कीटनाशक हर मनखे के संग पूरा पर्यावरण जीव नामा के नुकसानी करते संगे संग दलहन तिलहन जैसे राहेर है उरीद है मूंग है सोयाबीन तिली ये सब के को हम बोवाई नहीं करे पार वार मा है ना तो कर डालिया बढ़िया बढ़िया किस्म घलव है जोंधरी मा नाइट्रोजन के पहली टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए जरूरत के हिसाब में है ना कतको संगवारी मन के जेन मीठ वाला गुरतुर वाला जोंधरी बोरी हिन ओमन बढ़िया कीमत में बेचत हिन और बढ़िया फायदा घलो मिलत है ना बिलासपुर के कोनी के तीर तीर में देखिया बेचत हवे तो उसने किसम आप मन लगा ज्यादा फायदा होत

अउ जेन लगातार पानी गिरत हे एकर कारण फसल म कीट हो जाथे, रोग हो जाथे, तो बात के ध्यान रखना है। संगे संग एमा कीड़ा बीमारी होते फसल लगे हे तो फेरोमेन ट्रेप है, है ना, लाइट ट्रेप है, एकर उपयोग करना चाहिए। खेत में पानी झन भरे दही, खास के जेन सब्जी लगाए हैं तो दलहनी फसल एमा नुकसानी हो सकत है। अउ पानी रुकाए तभे हमन ला खातू माटी और पौध संरक्षण जिन दवाई लगते है ना, निंदा नाशक दवाई लगते, एकर उपयोग करना चाहिए। पानी भरे है तो नुकसानी हो सकत है। संगे संग कई प्रकार के बात के हम ध्यान रखे पर पड़ी। जिन गरुआ बछरू है ओकरो चेत करा को हो, ओकर रहे के स्थान कोठा उठा नहीं बनाया है तो ओला छा डरिया बढ़िया, काबर के कई प्रकार के है ना बघर्रा रोग है, एक टंगिया, कई प्रकार के रोग होते, अन्य पशु मन के नुकसानी हो जाते, और एकर टीकाकरण कराना अब बड़े जरूरी है। तो आप मन के जिन है ना पशु औषधालय वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करा। संगे संग हरियर चारा के व्यवस्था करना चाहिए गरुआ बछरू मन पर, है ना, कांदी कब तक लुवत रहे संगी हो, सब तो घेट डारी हिन, तो कहो हरियर चारा आप मन लगा दे तो बढ़िया गोरस देवैया पशुधन मन बढ़िया गोरस देते, बढ़िया पीहा तो स्वस्थ रहिहा। कस के पानी गिरत है और जैसे कहे हैं है ना आंधी उंधी चला थे, तूफान खलऊ चलते, तो खेत के मेड़ ला मजबूत करना चाहिए। कृषि उपकरण ला आप मन धो मांझ के सफा रखा, जंग उंग लग जाते, कोनो प्रकार नट बुलूट ट्रैक्टर के कई प्रकार के खराब हो जाते तो नुकसानी हो सकत है। सब्जी और बागवानी फसल में जल निकासी पर हमन ला विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकर से का होते जरी में सड़न रोग होते, ध्यान रखी है ना, पानी ज्यादा भरे रहते था धान घलो में कई प्रकार के रोग होते। और पानी तो गिर ही के बताए हैं, मौसम पूर्वानुमान बताए हैं आप मल्ला। संगे संग एक ठीक और सूचना बता देते हैं, आईटीआई कहाँ बिलासपुर नेवरा में एक साल के कोपा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा में स्टेनोग्राफर है, कोपा है हिंदी वाला, और 2 साल के कोर्स है फीटर और इलेक्ट्रीशियन, तो रिक्त सीट है यहाँ, आप मन यहाँ फार्म डाल सका था 17 जुलाई लेके 24 जुलाई तक। और वेबसाइट पता है https करके है ना cgitiadmissions.nic.in, एमा पंजीयन बार आवेदन कर सका था। जिन पहली ले पंजीयन हमें वो हर अवैया चरण में अने राउंड में भाग ले सका थी, वो अपन लॉगिन आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके कंसेंट प्रदान करत निर्धारित शुल्क अने पैसा जमा कर सकत है। जरूरत पड़े में च्वाइस फिलिंग में संशोधन परिवर्तन कर सकत है। और ज्यादा जानकारी लेना है तो अभ्यर्थी जिन संबंधित संस्था है वहाँ के वेबसाइट और जिन हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आप मन के जिन सूचना रही से है ना, आप मन भाग ले है 17 जुलाई ले 24 जुलाई आईटीआई नेवरा बिलासपुर में सूचना सिराई से। और संगी हो आज के ग्राम सभा आप मन ला कैसे लगी, तो बढ़िया लगी सो है ना, बढ़िया बढ़िया जानकारी बताए हैं। एक रे संग सिरा थे आज के ग्राम सभा पैसाकू के। राम राम, जय जोहार।

कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायक कलाकार मिताली सिंह के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमों को। पेश है इस अंक का ये पहला नगमा।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं श्रोताओं, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार मिताली सिंह के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमों को। कार्यक्रम के समापन में पेश है ये नगमा।

इसी गीत के साथ ही सुगम संगीत का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसमें आज हमने आपको सुनवाए गायक कलाकार मिताली सिंह के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमों को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, बूंदों की सरगम जब धरती पर गुनगुनाती है, तपती धरती के संग हर डाल मुस्काती है। बरसात का ये मौसम देता है ऐसा पैगाम कि उम्मीद की कली फिर से खिल जाती है। श्रोता मित्रों, बारिश केवल पानी की बूंदे नहीं है बल्कि प्रकृति का सबसे खूबसूरत संगीत है। जब काले बादल आसमान में छा जाते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, तो सौंधी सी महक दिल को सुकून दे जाती है। तन मन पेड़ पौधे जीव जंतु सभी में नव जीवन का संचार होने लगता है। बड़े इंतजार के बाद अंचल में ये बारिश, आज की बारिश आई है।

श्रोताओं, कवि रचनाकारों का प्रमुख विषय रहा है बादल, मेघ, बारिश, सावन। सैकड़ों रचनाएं इसी पर की जा चुकी हैं। कहानी, उपन्यास, कथा अभी भी लिखे जा रहे हैं। यदि बात फिल्मों की करें तो हर भाषा में बरसात पर केंद्रित फिल्में, बरसात के दृश्य और गीत मौजूद हैं। और हो भी क्यों नहीं, ये कि सिर्फ एक विषय नहीं है बल्कि जीवन गाथा है। कहा भी गया है कि बिन पानी सब सून। खेतों के लिए तो ये अमृत वर्षा है। हालांकि अतिवृष्टि, बाढ़, सड़क दुर्घटना, तेज बहाव, उफान भी बरसात के साथ आते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बारिश, बारिश की झड़ी का इंतजार सभी को रहता ही रहता है। बरखा की हर बूंद में जीवन का संदेश है, हरियाली का सुंदर सा मधुर परिवेश है। जो मुस्कुराकर हर मौसम को अपना ले, असल में वही खुशी सबसे विशेष है।

मित्रों, जैसा कि हमने कहा कि बाढ़, नदियों के उफान जैसी दुर्घटनाएं तो बरसात के साथ रहती ही हैं, साथ ही सांप, बिच्छू, कीट पतंगों को भी पनपने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। जंगलों में कई तरह की वनस्पति पौधे भी दिखते हैं, कुछ तो हानिकारक भी होते हैं, खासकर मशरूम की कुछ जंगली प्रजातियां, ये बेहद जहरीली होती हैं, इनसे बचे। सर्पदंश की घटनाओं की खबरें मिलती हैं। इसके अतिरिक्त भोजन का खराब होना, कपड़ों का न सूख पाना, छतों का टपकना, नमी युक्त वातावरण का लगातार बने रहना, ये सब भी बरसात के मौसम के साइड इफेक्ट हैं, या कहें कि बरसात इन्हें अपने साथ समेट लाता है। फिर भी बरसात की, बारिश की उपयोगिता, आवश्यकता, उम्मीद हमेशा बनी रहती है। कहते हैं ना कि बरसात की बूंदें कहती हैं, मुस्कुराते रहो, जीवन के हर पल को गुनगुनाते रहो, बादल चाहे कितने भी घने क्यों न हो, उम्मीद की धूप हमेशा दिल में जलाते रहो।

श्रोताओं, आसमानी बारिश केवल गिरने वाले पानी की बूंदें नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की पाठशाला है जहां हर बूंद हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, बतला कर जाती है, जता कर जाती है। जब बादल अपना सब कुछ धरती पर लुटा देते हैं, तब कहीं जाकर धरती हरी भरी होती है। ये बात हमें सिखाता है कि जीवन की असली खुशी पाने में नहीं बल्कि बांटने में है। बारिश ये भी बताती है कि परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है। तेज धूप के बाद बादल आते हैं, बादलों के बाद बारिश होती है और फिर खिली हुई धूप। ठीक वैसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, इसलिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखना ही समझदारी है। बूंद बूंद मिलकर दरिया बन जाती है, छोटी सी कोशिश भी दुनिया बदल सकती है। हार मत मानना कभी हालात के डर से, बारिश की हर बूंद चट्टानों को भी घिसा जाती है। श्रोताओं, एक अकेली बूंद भले ही छोटी सी हो, लेकिन लाखों बूंदें मिलकर नदियां भर देती हैं, खेतों को सींच देती हैं और जीवन को नया आकार देती हैं। इसी तरह हमारे छोटे छोटे अच्छे प्रयास एक दिन बड़ी सफलता का कारण बनते हैं।

बारिश का एक और सुंदर संदेश हमें ये सिखलाता है कि अहंकार छोड़कर विनम्र बनना। अब देखिए ना, बादल जितने ऊंचे होते हैं उतना ही झुककर धरती को सींचते हैं। इंसान भी जितना बड़े बने उतना ही विनम्र होना ही चाहिए। वर्षा ने हर दिल को जीना सिखा दिया, गिरकर भी मुस्कुराना सिखा दिया। जो झुक गया वही बादल बन गया, और जो बांट गया उसने संसार सजा दिया। तो आइए श्रोताओं, इस बरसात में हम भी प्रकृति से कुछ सीखें, जैसे जीवन में उदार बने, कठिन समय में उम्मीदें बनाए रखें, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, और प्रेम, अपनापन, सहयोग से दूसरों का जीवन भी खुशहाल बनाएं। इसलिए मौसम के हर रूप का आनंद लीजिए, बारिश का भी। सुरक्षित रहिए और जीवन में हमेशा उम्मीदों की हरियाली बनाए रखें।

और इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा के इस अंक से दे अनुमति अपने साथी महावीर वर्गा को नमस्कार। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे समाचार संध्या और ठीक 9 बजे अंग्रेजी में समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की

0: विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री

0: मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
1: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है।

0: समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए चितलकर और लता मंगेशकर की आवाजों में।

कार्यक्रम का अगला गीत है हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार है साहिर लुधियानवी, संगीतकार है सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है जाल।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नगमा निगार है जानिसार अख्तर, संगीतकार है ओपी नैयर, फिल्म का नाम है छू मंतर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

श्रोताओं नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थीं बेआवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

कानन देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आई, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की धड़कन।

देवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र से ही कर ली। वो दौर मूक फिल्मों का था। मूक फिल्मों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई, जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी ऐसी अभिनेत्रियों में भी अग्रिम पंक्ति में आती हैं, जो पर्दे पर खुद के लिए गाया भी करती।

तकरीबन 4 दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में करती रहीं। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कानन देवी ने उस समय कोलकाता के मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया।

कि पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रही, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।

0: da da da da da da da da da da da da
1: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
2: यहाँ कानन देवी के सफलता के किस्से सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया। 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

इतनी छोटी सी उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रहीं जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमी नोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थीं।

आनन देवी अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और अपना एक बैनर शुरू किया जिसका नाम रखा श्रीमती पिक्चर्स।

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रही। उनकी कुछ ऐसी ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्य। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ, जिनके साथ उनकी कई फिल्में आईं।

आनंद देवी संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थीं। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्लाह रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

आनंद देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक और लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

कानन देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रहीं। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थीं, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थीं, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

रामानंद देवी ने अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ, तो उन्होंने उस ओर कोई न कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त, प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

बता सकते हैं कि जब 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

आनंद देवी को फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कई सम्मान पाती रहीं। कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपनी बहुमूल्य विरासत और सशक्त सोच।

0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका कानन देवी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम का संपादन सौरव घारू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
1: संगीतकार नौशाद।
0: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूँ विधि प्रवीण जैन। हर एक ख्वाब में बसती है तेरी नजर, मेरे हर ख्याल को छूती है तेरी नजर। दिल भी अजीब है मानता ही नहीं, कितनी बार समझाया फिर ढूंढे तेरी नजर। वो लफ्ज क्या कहें जो जुबां तक ना आए, सब राज बयां करती है तेरी नजर। मैं खो गई हूँ जैसे किसी गहरे समंदर में।

वो चेहरा मानो प्रकृति की सबसे कोमल और रमणीय रचना हो, जहां हर रेखा में सौंदर्य की मधुर छाया बसी हुई है। कपोलों पर झलकती हल्की लाली संध्या की अंतिम आभासी प्रतीत होती है, और उसकी गहरी भावपूर्ण आंखें किसी अनंत कथा का मौन आमंत्रण देती हुई मन को बांध लेती हैं। अधरों पर सजी मृदुल मुस्कान ऐसे खिलती है जैसे किसी नव प्रभात में कली पहली बार मुस्कुराई हो, जिसमें ना कोई आडंबर है ना बनावट, केवल निष्कलुष आकर्षण। उसके चेहरे का एक समग्र सौंदर्य किसी एक अंग में नहीं, बल्कि उस अद्भुत समन्वय में है, जहां प्रत्येक भाव और प्रत्येक आभा मिलकर एक ऐसी मोहक छवि रचते हैं जो केवल देखी नहीं, बल्कि गहराई से अनुभूति की जाती है।

बंद पलकों से तुझे पढ़ लेना हुनर हो जैसे, बिन नजर के भी तेरा मिलना असर हो जैसे, तेरी आहट ही मेरे दिल में उतर जाती है, हुई खामोश दुआ रूह का सफर हो जैसे। यूं तो आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती, रूह से रूह का मिलना ही नजर हो जैसे।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। तेरी नजर से ही पहली वो मुलाकात हुई, दिल को खामोश थी एक मीठी सी बात हुई, एक पल ठहरी जो आंखें हैं तेरी आंखों पे, जिंदगी जैसे वहीं से नई शुरुआत हुई। हम तो वाकिफ भी ना थे इस अजब एहसास से, एक नजर क्या मिली रूह में बरसात हुई, तेरी पलकों की झपक में कोई जादू था, हर खुशी जैसे मेरे नाम की सौगात हुई। कभी किसी की नजर शरारत से मुस्कुराती है तो लगता है जैसे उसमें कोई राज छुपा हो, एक ऐसा राज जिसे कहना तो वो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, और कभी वही नजर इतनी गहरी हो जाती है कि उसमें डूब जाने का मन करता है बिना ये सोचे कि लौट पाएंगे या नहीं।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

मोहब्बत अगर लफ्जों में बयां होती तो शायद इतनी खूबसूरत होती नहीं। असल जादू तो बस इसी में है कि उनकी नजर चुपचाप उनके दिल को छू लेती है, बिना आवाज, बिना इजाजत, और फिर सब कुछ अपना सा महसूस होता है। अगर वही नजर खफा हो जाए तो जज्बात दम तोड़ देते हैं।

दिल की नजर से तेरा ही नूर दिखता है, हर एक ख्वाब में बस तेरा सुरूर दिखता है। तेरी खामोशी भी जैसे कोई गजल कहे, हर लफ्ज में छुपा हुआ एक गुरूर दिखता है। जब से तेरी चाहत ने छुआ है रूह को, हर दर्द में अब एक सुकून दिखता है। तेरी आंखों की गहराई में डूब कर देखा, वहीं कहीं मेरा मुकद्दर लिखता है। अब दिल की नजर को और कुछ भाता नहीं, हर तरफ बस तेरा ही हुजूर दिखता है।

नजर, निगाहें, आंखें बस जज्बात बयां करती हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ देती हैं। निगाहें वो कह देती हैं जो जुबान नहीं कह पाती, और निगाहें निगाहों की बातों को कह देती हैं। आज के कार्यक्रम छाया गीत में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाद कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझ

0: ढलती जाए रात।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, समाचारों के लिए जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से।

0: محمد زبیر. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया. उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया. इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं. श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया. ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है. श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है. पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है.
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है. श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की.
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है. खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है. आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है. इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है. मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए. हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है.
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख

क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।